आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM शिमला केंद्र 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की छठी तिथि, तदनुसार 27 मई सन 2026। इस वक्त प्रातः के 8:05 और 40 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की ये प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: आइए अब सुनते हैं हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ 17वें विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। भारत और रोमानिया ने कल नई दिल्ली में रक्षा सहयोग पर संयुक्त समिति की दूसरी बैठक की। इसमें दोनों देशों के बीच जारी रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के बारे में बातचीत की गई। दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा, सैन्य चिकित्सा सहयोग, संयुक्त प्रशिक्षण, क्षमता विकास और रक्षा औद्योगिक सहयोग पर आपसी रक्षा सहयोग योजना को अंतिम रूप दिया। भारत ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में चीन और पाकिस्तान के अवांछित संदर्भों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक के लिए अगले 6 महीने में ड्रोन रोधी प्रणाली स्थापित करेगी। राजस्थान में बीकानेर की सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कल ये घोषणा की।
2: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
1: सरकार ने प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये वृद्धि राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें कल से लागू हो गई। अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेलगाड़ी के संचालन को मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी। इसकी कुल क्षमता 1200 किलोवाट होगी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव होंगे। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक

ईश्वर पर भरोसा रखें, जब कोई साथ नहीं देता तब वही मार्ग दिखाता है। जिसके मन में सच्ची श्रद्धा होती है उसके जीवन में ईश्वर स्वयं प्रकाश बन जाते हैं।

ईश्वर कभी भी हमारी परीक्षा बिना कारण नहीं लेते। प्रार्थना शब्दों से नहीं, सच्चे मन से होती है। जहां प्रेम, दया और सत्य है, वहीं ईश्वर का वास है। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं मिला है उसके लिए धैर्य रखें।

ईश्वर पर भरोसा रखो, सही समय आने पर सब बदल जाता है और ईश्वर की कृपा से असंभव भी संभव बन जाता है। भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि दुख भी छोटा लगने लगता है और ईश्वर को पाने का मार्ग प्रेम और सेवा से होकर जाता है।

विलास करुण काक प्रसूरी से ज्ञान और भक्ति का निरूपण सुनकर वैकुंठ को जा चुकी है। भगवान श्री गरुण काक प्रसूरी संवाद की कथा पार्वती को सुनाते हुए उसका समापन करते हैं। हे उमा, वो कुल भूमि है जिसमें श्री राम के अनन्य भक्त का जन्म होता है। तुम्हारा अनुराग देखकर मैंने ये कथा तुम्हें सुनाई है। ये आख्यान दूर व्यक्ति को नहीं सुनाना चाहिए, न ही उन हठधर्मियों को जो प्रभु लीलाओं का गान मन लगाकर और श्रद्धा के साथ नहीं सुनते। ये कथा लोभी, क्रोधी तथा कामी लोगों को भी

तुम्ही मातेचे जन्म मरण की व्याधि सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है। जो इसे कहते सुनते और इसकी प्रशंसा करते हैं उन्हें भव सागर पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। भरद्वाज मुनि को शिव पार्वती के माध्यम से राम कथा याज्ञवल्क्य जी ने सुनाई। कथा शंभ और उमा का ये कल्याणकारी संवाद शोक का नाश कर जन्म मरण से मुक्ति दिलाने

ਸੇਵਕ ਅਧਿਕਾਰ

अभी आपने सुना मानस गान। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM शिमला केंद्र। 6:50 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं देशगान।

साहिब भजन मन कर

0: देशगान के पश्चात आइए अब सुनते हैं एफएम न्यूज हेडलाइंस।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं पुष्पा ठाकुर। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के पहले चरण का चुनाव कल शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। पहले चरण में प्रदेश की 1293 पंचायतों और जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्य के लिए वोट डाले गए। पहले चरण में रिकॉर्ड 78% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कुल्लू जिला में 84% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। सिरमौर जिला में 82% जबकि सोलन जिला में लगभग 81% मतदाताओं ने अपने मताधिकार को प्रयोग किया। ऊना जिला में 79% और बिलासपुर जिला में 70% मतदान हुआ। हमीरपुर जिला में 73% मतदान दर्ज किया गया। 28 मई को होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के दूसरे चरण के लिए सक्रिय चुनाव प्रचार कल दोपहर 3 बजे समाप्त हो गया। दूसरे चरण में 1274 पंचायतों में वोट डाले जाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निर्देश दिए हैं कि मंडी मध्यस्थता योजना के तहत खरीद पर बागवानों को भुगतान के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की संभावनाएं तलाशी जाएं। भारत सरकार ने अवैध अप्रवास और अन्य असामान्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने और जनसांख्यिकीय परिवर्तनों से निपटने के उपायों पर सुझाव देने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के राजनीतिक सलाहकार सुनील बिट्टू ने कहा है कि हमीरपुर शहर के व्यापारियों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा। सुनील बिट्टू ने कल उनसे मिलने आए हमीरपुर व्यापार मंडल के एक प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी समस्याओं को मुख्यमंत्री के सामने रखकर उनका समाधान निकाला जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कार्यवाहक मुख्य सचिव संजय गुप्ता को इस पद पर नियमित नियुक्ति दे दी है। संजय गुप्ता को मुख्य सचिव पद पर ये नियमित नियुक्ति उनकी सेवानिवृत्ति से 5 दिन पूर्व दी गई है। वे 31 मई को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अधिकारियों के हाथों की खटपुतली बन चुके हैं और पूरी तरह कंप्रोमाइज्ड है। जयराम ठाकुर ने कल सरकार द्वारा वर्तमान कार्यवाहक मुख्य सचिव को स्थायी नियुक्ति दिए जाने के फैसले की आलोचना की। एफएम न्यूज हेडलाइंस में अभी बस इतना ही। नमस्कार।
2: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: सात बजने को हैं, आइए अब चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, सुनते हैं हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ. शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
1: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
0: विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ विदेश मंत्रियों की 17वें द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की। भारत और रोमानिया ने कल नई दिल्ली में रक्षा सहयोग पर संयुक्त समिति की दूसरी बैठक की। इसमें दोनों देशों के बीच जारी रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने के बारे में बातचीत की गई। दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा, सैन्य चिकित्सा सहयोग, संयुक्त प्रशिक्षण, क्षमता विकास और रक्षा औद्योगिक सहयोग पर आपसी रक्षा सहयोग योजना को अंतिम रूप दिया। भारत ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में चीन और पाकिस्तान के अवांछित संदर्भों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑनस्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। बोर्ड ने कहा कि ऑनस्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेलगाड़ी के संचालन को अपनी मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी और इसकी कुल क्षमता 1200 किलोवाट होगी। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में शुरू होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

युधिष्ठिर ने एक बार पितामह भीष्म से पूछा कि आशा क्या है और इसका स्वरूप कैसा है। प्रायः देखा जाता है कि सभी पुरुष महान आशा लेकर प्रवृत्त होते हैं, परंतु जब उनकी आशा बीच में ही टूट जाती है तो प्राणी बहुत निराश हो जाता है, कभी कभी तो वो आत्महत्या तक कर लेता है। इस पर भीष्म ने युधिष्ठिर को राजऋषि सुमित्र तथा ऋषभ की कथा सुनाई। राजा सुमित्र एक बार शिकार खेलने गया, वहां उसने एक हरिन को देखा और उस पर बाण छोड़ दिया। अमित विक्रम मृग बाण लेकर भागा और राजा सुमित्र ने भी उसका पीछा किया। ऊंचे नीचे स्थानों से होकर नदी नालों को पार करते हुए पल्लवों वनों तथा सम विषम भागों से होकर वो हरिन भागता ही चला जा रहा था। राजा भी पूरी शक्ति लगाकर उसका पीछा कर रहा था। बहुत देर तक पीछा करने पर भी वो राजा के हाथ नहीं आया। अंत में एक घनघोर अरण्य में भटकते भटकते राजा सहसा तपस्वियों के आश्रम में पहुंच गया। थके मांदे भूख प्यास से व्याकुल धनुर्धारी राजा को देखकर तपस्वियों ने उसका यथोचित सम्मान किया। तत्पश्चात वहां आने का कारण पूछा। राजा ने अपना परिचय देने के पश्चात सारा वृतांत तपस्वियों को सुना दिया। राजा बोला, मैं हताश श्रमार्थ एवं भ्रष्ट मार्ग हो गया हूं, इससे बढ़कर अब मेरे लिए और क्या कष्ट हो सकता है। यद्यपि मैं इस समय छत्र चामर आदि समस्त राज लक्षणों से हीन हूं, घर नगर और समस्त प्रकृति मंडल से भी अलग हूं, फिर भी मुझे इन सब का इतना दुख नहीं है जितना कि मृग का हाथ से निकल जाने का है। हे महाभाग, आप लोग सर्वज्ञ हैं, मैं ये जानना चाहता हूं कि इस दुरंत आशा का जो समुद्र हिमालय और अनंत आकाश से भी बड़ी मालूम होती है, कैसा स्वरूप एवं लक्षण है। इस पर उन तपस्वियों में से ऋषभ नामक ऋषि बोले, राजन, एक बार मैं तीर्थ यात्रा करता हुआ नर नारायण के आश्रम बद्री वन की ओर निकला। आश्रम के समीप ही मैं किसी निवास की खोज कर रहा था कि एक चिराजिनधारी कृष्णनु नामक मुनि मुझे दिखाई दिए। ये बहुत दुबले थे। राजन, मैंने वैसी कृष्णता कहीं भी नहीं देखी। उनका शरीर कनिष्ठिका उंगली जैसा पतला था तथा सभी अंग भी वैसे ही थे, लेकिन उनकी वाणी और चेष्टा सामान्य थी। मैं उन ब्राह्मण देवता को देखकर डर ही गया था और अत्यंत उदास भी हुआ था। मैंने उन्हें प्रणाम किया और धीरे से उनके दिए हुए आसन पर बैठ गया था। कृष्ण मुनि धर्ममयी कथा सुनाने लगे। उसी समय वीर द्युम्र नामक राजा भी वहां पहुंच गया। उसका एकमात्र पुत्र भूरि द्युम्र कहीं शिकार में खो गया था। उसने मुनि से अपने पुत्र के संबंध में अपनी महती आशा तथा चिंता व्यक्त की और उसकी जानकारी चाही। कृष्ण मुनि ने कहा कि उसने एक ऋषि की अवहेलना की थी, आशा भंग की थी, अतएव उसकी ये दशा हुई है। ये सुनकर राजा बहुत निराश हो गया। कृष्ण मुनि ने तभी उससे कहा, राजन, दुराशा छोड़ो, मैंने ये निश्चय किया है कि जो आशा से जीत लिया गया है वही दुर्बल है, जिसने आशा को जीत लिया वास्तव में वही पुष्ट है। इस पर वो राजा बोला, महाभाग, क्या ये आशा आपसे भी कृष्णतर दुबली है। इस पर मुनि बोले, राजन, शक्ति होने पर भी जो दूसरे का उपकार नहीं करता, योग्य पुरुषों का सत्कार नहीं करता, उस परमाशक्त पुरुष की आशा मुझसे भी दुबली है। किसी इकलौते पुत्र वाले पिता को पुत्र के विदेश जाने या भूल जाने अथवा पता ना लगने पर जो उसकी आशा होती है वो मुझसे भी दुबली है। जो आशा नृशंस आलसी तथा अपकारी पुरुषों में संसक्त है वो आशा भी मुझसे दुबली है। अतएव अत्यंत दुर्बल दुराशा सर्वथा त्याग करने योग्य है।

अब से कुछ देर बाद यानी कि 7:15 पर पेश होगा गुड मॉर्निंग शिमला प्रोग्राम, और 7:57 पर आप सुन सकेंगे एफएम न्यूज़ हेडलाइन, जिन्हें कि आप 8:30 पर और 9:57 पर भी सुन सकेंगे। 8 बजे आपको लेकर चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, आप सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज़।

लोक संगीत 8:32 पर शुरू होगा और फिल्म संगीत आप सुनेंगे 8:45 से, और 9:15 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के प्राइमरी चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 9:20 पर, और दिन में 11:00, शाम 3:00, शाम 6:00 और शाम 7:45 पर।

प्रोग्राम कुदरत के रंग फिल्म म्यूजिक प्रोग्राम आप सुनेंगे सुबह 9:31 से और ठीक 10 बजे आप सुनेंगे प्रोग्राम गीत गाता चल। 11:05 पर पेश होगा प्रोग्राम पुरानी फिल्मों से। पहाड़ी संगीत का समय रहेगा 11:30 से लेकर ठीक 12 बजे तक। 12 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और उसके बाद 12:20 का समय रहेगा महिला सम्मेलन का। दिन में 1:10 पर आप सुन सकेंगे प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती और सबरंग का समय रहेगा ठीक 2 बजे। 3:10 पर आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत ओल्ड हिट्स और युववाणी कार्यक्रम युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम आप सुनेंगे 3:30 पर। फिल्म संगीत ठीक 4 बजे।

हिमाचली बोलियों के कार्यक्रमों में स्पीति कार्यक्रम शुरू होगा 4:20 से और महासवे कार्यक्रम 4:50 पर शुरू होगा और 5:20 पर आप सुनेंगे किन्नौरी कार्यक्रम लोकगीत 5:50 पर। शाम 6:06 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम बिलासपुरी और कुलवी कार्यक्रम 6:35 पर शुरू होगा और 7:10 से आप सुनेंगे किसान और बागवान भाइयों का पसंदीदा कार्यक्रम कृषि जगत। 8:00 आप सुनेंगे भूले बिसरे गीत।

शाम 8 बजे 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, और 9:15 पर पेश होगा एक फिल्म से कार्यक्रम। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे दिल की आवाज़ भी सुन कार्यक्रम, और गज़लों का समय रहेगा ठीक 10 बजे, और आखिर में 10:30 से लेकर ठीक 11 बजे तक आप सुनेंगे सदाबहार नगमे।

0: ये थी एफएम शिमला पर आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।
1: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: एफएम शिमला सुनने वाले तमाम श्रोताओं को संजय कुमार का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा एफएम स्टेशन आकाशवाणी एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर।

संघर्ष जितना कठिन होगा जीत उतनी ही शानदार होगी, और हार जिंदगी में कभी भी मत मानो। शुरुआत हमेशा सबसे कठिन होती है, और जो अपने कदमों की काबिलियत पर भरोसा रखते हैं वही मंजिल तक पहुंचते हैं। और समय और मेहनत हर सपने को सच बना सकते हैं। अगर आज मेहनत करोगे तो कल खुद पर आपको गर्व महसूस होगा, क्योंकि मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं।

तो साथियों, ये था कार्यक्रम का पहला गीत, कुछ खोना है कुछ पाना है। जी हाँ बिल्कुल, ज़िंदगी का नाम तो बस ज़िंदगी को जीते जाना है, हर पल को भुनाते जाना है। साथियों, आज 27 मई और करते हैं कुछ ऐतिहासिक घटनाओं की बात। और 2006 में आज के दिन 27 मई के दिन जो है विनाशकारी भूकंप आया था, जिसमें जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था और सैकड़ों की तादाद में जो है लोग काल के ग्रास हुए थे। और 2010 में भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर में बालसोरा ज़िले में परमाणु तकनीक से लैस धनुष और पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। और 2011 में ग्लोबल इंटरनेट सर्च इंजन गूगल जो है भारतीय शहरों की हर गली नुक्कड़ की तस्वीर इंटरनेट पर दिखाना शुरू की। और गूगल अर्थ के जरिए जहां अब तक धरती के विभिन्न हिस्सों की सैटेलाइट तस्वीरें देख सकते थे, वहीं गूगल के नए फीचर स्ट्रीट व्यू से गली नुक्कड़ तक को जो है वो देखना शुरू किया गया। और बात करते हैं 27 मई को जन्मे कुछ फेमस पर्सनैलिटी की, जिनमें कि भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी त्रिशा जॉली और चिराग जैन जाने माने कवि, पत्रकार और लेखक, ख्याति प्राप्त आलोचक निबंधकार के रूप में पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, जिनका जन्म 1894 को 27 मई के दिन हुआ था, और हिंदी के कवि, पत्रकार और पत्रकारिता के प्राध्यापक हेमंत जोशी, इनका जन्म 1954 को हुआ था। और इसके अलावा भारतीय मराठी लेखक, उपन्यासकार, कवि और समीक्षक भालचंद्र नेमाड़े, 1938 में 27 मई के दिन का भी जन्म हुआ था। और प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी और कमेंटेटर रवि शास्त्री का भी आज जन्मदिन है।

0: हिमाचल के युवाओं, अब सिर्फ सोशल मीडिया पर ओपिनियन देने का नहीं, वोट देने का भी वक्त आ गया है।
1: इस पंचायत इलेक्शन में 50 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने मत का अधिकार इस्तेमाल करेंगे और हजारों फर्स्ट टाइम वोटर्स भी बनेंगे इस बदलाव का हिस्सा। 26 मई, 28 मई और 30 मई, याद रखिए ये तारीखें।
0: आपकी एक वोट, आपके गाँव की सोच।

0: विकास और लीडरशिप को तय करेगी। तो निकलिए घर से और बनिए जिम्मेदार नागरिक। पंचायत चुनाव 2026 वोट जरूर करें।
1: चलिए साथियों, बात करते हैं शिमला के मौसम की। और आज शिमला में मौसम थोड़ा गर्म और ज़्यादातर साफ रहने की संभावना। दिन का तापमान लगभग 31 डिग्री तक जा सकता है और रात में तापमान करीब 18 डिग्री के आसपास रहेगा। और बारिश की बात करें तो आज बारिश की जो संभावना है वो काफ़ी कम है, लेकिन आने वाले 2-3 दिनों में हल्की बारिश और गरज चमक हो सकती है, जिससे जो है तापमान में गिरावट आ सकती है और मौसम और भी कूल कूल हो सकता है।

0: हिमाचल में फिर से सज गया है लोकतंत्र का महापर्व, पंचायत चुनाव 2026।
1: 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में होने जा रहे हैं पंचायत इलेक्शंस, जहां आपकी एक वोट तय करेगी आपके गांव का कल।
0: सड़क, पानी, सफाई, रोजगार और गांव के विकास से जुड़े फैसलों में आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है।
1: इस बार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और चुनिएगा ईमानदार, योग्य और जिम्मेदार प्रतिनिधि। हिमाचल पंचायत इलेक्शंस 2026, मजबूत पंचायत, मजबूत हिमाचल।
2: साथियों, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग शिमला में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम बात करने वाले हैं फॉरेस्ट फायर की। जी हाँ साथियों, हमारे भारत के जंगल देश की प्राकृतिक संपत्ति है और ये हमें शुद्ध हवा, वर्षा जल स्रोत, औषधियाँ और वन्य जीवों का घर प्रदान करते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में देखो तो भारत के बहुत सारे राज्यों में जो है, जिसमें हमारा हिमाचल भी पीछे नहीं है, जंगलों में जो है आग की घटनाएँ बहुत बड़ी है और इसका सीधा असर जलवायु और पर्यावरण पर पड़ रहा है। और आपने ये परिवर्तन हमारे राज्य में तो देखा ही होगा। और सबसे पहले बात करते हैं फॉरेस्ट फायर की, जिसमें कि सूखी सतही सरफेस फायर जिसे कहते हैं, सूखी घास और पत्तियां जलती हैं, और ग्राउंड फायर मिट्टी के नीचे मौजूद जैविक पदार्थ जलते हैं, और ग्राउंड फायर पेड़ों की ऊपरी शाखाएं और पूरा जंगल तेज़ी से जलने लगता है और ये सबसे विनाशकारी होता है। और भारत में वनाग्नि बढ़ने के जो कारण है, जिसमें कि तापमान, जलवायु परिवर्तन भी है, तापमान बढ़ने और बारिश कम होने से जंगल सूख जाते हैं और सूखी घास और पत्तियां जल्दी आग पकड़ लेती है। और मानव लापरवाही की बात करें तो चाहे वो फिर बीड़ी या सिगरेट का फेंकना हो, या फिर आग जलाकर करना हो, या फिर ये सोच रखना हो कि आग जलाने के बाद जो है नई घास आती है, या फिर प्लास्टिक या कांच फेंक देना, या शिकार या खेती के लिए आग लगा देना। और भारत में जो है वो लगभग 90% जो फॉरेस्ट फायर है वो मानव गतिविधियों से जुड़ी हैं। अत्यधिक गर्मी और सूखा, गर्मियों में तापमान बहुत बढ़ जाता है और कम नमी के कारण जो है आग तेज़ी से फैलती है और जंगल में सब कुछ सर्वनाश कर देती है। अत्यधिक गर्मी और सूखा, बिजली गिरना जो है कभी कभी प्राकृतिक कारणों से भी होता है, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता और ये अधिकतर जो कारण है वो जो है मानव की लापरवाही ही है।

0: गांव की पहचान होती है उसकी मजबूत पंचायत से, और पंचायत मजबूत बनती है आपके एक वोट से।
1: क्योंकि ईमानदारी और बिना किसी के प्रभाव में आए दिए गए आपके वोट ही तय होते हैं गांव और बनती है सड़क, पानी, स्वच्छता और रोजगार संबंधी नीतियाँ।
0: इसीलिए 26 मई, 28 मई और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपनी भागीदारी निभाएं।
1: अपने परिवार और गांव वालों को भी जागरूक बनाएं और 100% मतदान के संकल्प को हासिल करने का लक्ष्य बनाएं।
0: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
2: FM शिमला पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग शिमला, और इस वक्त हम बात कर रहे हैं फॉरेस्ट

0: अपने परिवार और गांव वालों को भी जागरूक बनाए और 100% मतदान के संकल्प को हासिल करने का लक्ष्य बनाए।
1: राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
2: एफएम शिमला पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग शिमला और इस वक्त हम बात कर रहे हैं फॉरेस्ट फायर की। जी हाँ, और गर्मियों में लगने वाली वनों की जो आग है वो सबसे ज़्यादा नुकसान करती है, क्योंकि जंगल जो है वो पूरी तरह से सूखे होते हैं और जिससे कि जो है पूरी तरह से जंगल का सर्वनाश हो जाता है और उसका हमारे जलवायु में जो है क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में कुछ बातें करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की, और जंगल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं। जब जंगल जलते हैं तो यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वातावरण में जो है घुल जाती है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, गर्म हवाएं बढ़ती है और जलवायु का जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने वाले जंगल जब नहीं रहेंगे तो पृथ्वी का तापमान और हवा तो गर्म होगी ना, और ऑक्सीजन में भी कमी आती है क्योंकि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। जंगल जलने से जो है वो ऑक्सीजन उत्पादन कम हो जाता है और वर्षा में भी कमी आती है। पेड़ वातावरण में जलवाष्प भी छोड़ते हैं जिससे बादल बनते हैं। जंगल कम होने से बारिश का चक्र प्रभावित होता है और उसका परिणाम क्या होता है, जिसमें कि सूखा, पानी की कमी और खेती पे भी असर होता है। वायु प्रदूषण की बात करें तो वनाग्नि से निकलने वाला धुआं वातावरण को जहरीला बनाता है, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, सूक्ष्म कण और मीथेन गैस जैसी हानिकारक चीज़ें होती है, जिससे सांस की बीमारी, आँखों में जलन, दमा और हृदय रोग जो है वो बढ़ सकते हैं। और हिमालय क्षेत्रों पर इसका प्रभाव क्या है, हिमालय क्षेत्र में जंगलों की आग से ग्लेशियरों के पिघलने की भी गति बढ़ती है और धुएं और कालिख के कारण जो है बर्फ अधिक गर्मी सोखती है।

और जलवायु के साथ साथ पर्यावरण और जीव जंतुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, जिसमें वन्य जीवों की मृत्यु है, जिसमें कई जानवर आग में फंस जाते हैं, हिरण, पक्षी, सांप, छोटे जीव, उनका प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाता है और मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है, आग से मिट्टी के पोषक तत्व नष्ट होते हैं, खेती प्रभावित होती है और पेड़ों की कमी से नदियाँ और झरने धीरे धीरे कमज़ोर होने लगते हैं, क्योंकि जंगल में जितनी नमी होगी तो उसके आसपास पानी के जो स्रोत हैं वो उतने ज़्यादा जिंदा रहेंगे। भारत की अर्थव्यवस्था पे भी असर पड़ता है, खेती को नुकसान होता है, पर्यटन कम हो जाता है, लकड़ी और वन उत्पादों की बहुत हानि होती है और आग बुझाने में भी करोड़ों रुपए का जो है वो खर्च होता है। और इसके अलावा जो है हम बचाव के लिए क्या कर सकते हैं, आधुनिक तकनीक का उपयोग, सैटेलाइट निगरानी की जा सकती है, ड्रोन कैमरे की हेल्प ली जा सकती है, सेंसर सिस्टम से आग का जल्दी पता लगाया जा सकता है।

और फायर लाइन भी बनाई जा सकती है, जिससे कि जंगलों में कुछ खाली क्षेत्र बनाए जाते हैं ताकि आगे आग जो है आगे ना फैल सके। और वृक्षारोपण की बात करें तो अधिक पेड़ लगाने से नमी बनी रहती है और तापमान में भी नियंत्रण रहता है, और कानून का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। जानबूझकर आग लगाने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ ऐसे कानूनों से ही जो है इस पर अंकुश लगाया जा सकता है, क्योंकि प्रकृति के बिना, पर्यावरण के बिना हमारा कुछ भी नहीं है। और स्थानीय समुदाय की भागीदारी, गांव के लोग और वन समितियां मिलकर जंगलों की रक्षा जो है बड़ी बेहतरीन तरीके से कर सकती हैं। इसमें सभी का मेलजोल बहुत ज़रूरी है।

खेती और अर्थव्यवस्था से जुड़ा गंभीर संकट है, और यदि जंगल सुरक्षित रहेंगे तो जलवायु संतुलित रहेगी और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि पर्यावरण है तो फिर तभी हमारा वजूद है। इसके बगैर हम चांद पे भी पहुंच जाएं तो हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए अपने आसपास के जंगलों को जो है वनों से बचाएं, और अपने आसपास अपने साथी दोस्तों और गांव वालों को और अपने आस पड़ोस में सभी लोगों को जो इसके प्रति जो है जागरूक कराएं, उन्हें ये महसूस कराएं कि इससे वास्तव में नुकसान होता क्या है और वास्तव में हो क्या रहा है।

तो साथियों, फॉरेस्ट फायर और क्लाइमेट चेंज एक दूसरे को बढ़ाने वाले संकट बन चुके हैं, जिसमें बढ़ती गर्मी, जंगलों का सूखना और आग जल्दी लगना और इससे अत्यधिक कार्बन गैस निकलती है, जिससे पृथ्वी और भी गर्म होती है और इस चक्र को जो है वो दुष्चक्र कहा जाता है।

0: इसी गीत के साथ ही प्रोग्राम गुड मॉर्निंग शिमला यहीं पर संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम शिमला केंद्र। आइए अब सुनते हैं एफएम न्यूज हेडलाइंस।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं पुष्पा ठाकुर। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के पहले चरण का चुनाव कल शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। पहले चरण में प्रदेश की 1293 पंचायतों और जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्य के लिए वोट डाले गए। पहले चरण में रिकॉर्ड 78% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कुल्लू जिला में 84% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। सिरमौर जिला में 82% जबकि सोलन जिला में लगभग 81% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ऊना जिला में 79% और बिलासपुर जिला में 77% मतदान हुआ। हमीरपुर जिला में 73% मतदान दर्ज किया गया। जनजातीय जिला किन्नौर में पंचायती राज संस्थाओं के पहले चरण में 27 पंचायतों में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हुआ। कल्पा में कुल मतदान प्रतिशत 72.74%, निचार में सबसे अधिक 79.79% और पूह में 70.21% रहा। अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव इस बार नए तेवर, व्यापक स्वरूप और जनभागीदारी के बड़े विजन के साथ नजर आएगा। शिमला के उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव की तिथियों में इस बार बदलाव किया गया है और इसका आयोजन 8 से 12 जून तक होगा। रेणुका बांध विस्थापित संघर्ष समिति ने वन विभाग से बांध प्रभावित क्षेत्र में निष्पक्ष तरीके से पेड़ों की गिनती रुक करवाने की मांग की है। रेणुका बांध विस्थापित संघर्ष समिति के प्रेस सचिव योगी ठाकुर ने कल नाहन में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि यदि इस कार्य में पारदर्शिता नहीं बरती गई तो समिति मामले को न्यायालय में ले जाएगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का 12 वर्ष कार्यकाल सेवा, सुशासन और संकल्प सिद्धि का प्रतीक है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को धरातल पर उतारते हुए अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास की किरण पहुँचाई है। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। राज्य के ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर जिला के कई हिस्सों में आज भी लू जैसे हालात बने रहेंगे। मौसम विभाग के अनुसार कल से हिमालय क्षेत्र में ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिससे 28 मई को राज्य के 5 जिलों में मौसम विभाग ने ओलावृष्टि, अंधड़, आसमानी बिजली गिरने की आशंका जताई है। एफएम न्यूज हेडलाइंस में अभी बस इतना ही। नमस्कार।
2: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: आइए सुनते हैं समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
2: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा।

0: मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। CBSE ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही उन अफवाहों को खारिज किया जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई थी। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया। और IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नवलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व IAS अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व IPS अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
1: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठी मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
0: इस समिति के कार्यों के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
2: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ 17वें विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय विश्वास पर आधारित होगा जिससे दोनों देशों की साझा समृद्धि सुनिश्चित होगी। कनाडा में आयोजित मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास से व्यापक आर्थिक साझेदारी के अंतर्गत नए व्यापार और निवेश के अवसरों पर कार्य हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता पर श्री गोयल ने कहा कि भारत अगले 3 दशकों तक विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज निर्णय सुनाएगा। ये याचिकाएं बिहार में पिछले साल जून में SIR प्रक्रिया शुरू करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद दायर की गई थीं। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। एक रिपोर्ट।
3: याचिकाओं में SIR प्रक्रिया की वैधता को चुनौती दी गई थी। इसमें कहा गया था कि SIR प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326, जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 और इनके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्वाचन आयोग को दी गई शक्तियों के दायरे से बाहर थी। याचिकाकर्ताओं की ये भी दलील थी कि SIR प्रक्रिया ने बड़ी संख्या में गरीब और विस्थापित लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया। सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR प्रक्रिया से प्रभावित मतदाताओं के बीच पारदर्शिता

0: को बढ़ावा देने और कठिनाई को कम करने के लिए अंतरिम निर्देश जारी किए थे। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने 1983 में बिहार में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा बरकरार रखते हुए कहा है कि इस घटना की क्रूरता न्यायिक अंतरात्मा को झकझोर देती है। न्यायमूर्ति संजय करोल और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कल कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय दोनों ने सही कहा है कि इस मामले में किसी भी तरह की सहानुभूति या नरमी की गुंजाइश नहीं है। न्यायालय ने कहा कि घटना मार्च 1983 में मुजफ्फरपुर जिले के एक गांव में हुई थी, जहां कम से कम 58 लोगों की भीड़ ने चंद्रशेखर चौधरी के घर में आग लगा दी, जिसके बाद 5 लोगों की बेरहमी से हत्या की गई और कई लोग घायल हो गए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने सोशल मीडिया पर किए गए इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। बोर्ड ने कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं के वास्तविक मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पोर्टल पूरी तरह से एक अलग URL पर काम करता है। एक रिपोर्ट।
2: CBSE बोर्ड ने कहा है कि cbse.onmarks.co.in केवल एक टेस्टिंग साइट है जिसमें सैंपल डाटा होता है, जिसका इस्तेमाल पूरी तरह से आंतरिक टेस्टिंग और समीक्षा के उद्देश्यों के लिए किया जाता है और इसमें परीक्षा से संबंधित कोई भी वास्तविक जानकारी नहीं होती है। बोर्ड ने कहा है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन NASA ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। मार्च में NASA ने वर्ष 2032 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर परमाणु और सौर ऊर्जा से संचालित एक स्थायी अड्डा बनाने के लिए $20 अरब के कार्यक्रम की घोषणा की थी। जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन को इन मशीनों का निर्माण करने के लिए चुना गया है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: कोलकाता की एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हुए हमले के मामले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की हिरासत में भेज दिया है। इन आरोपियों को केंद्रीय एजेंसी द्वारा सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। भारतीय वायुसेना ने अधिकारी काडर के तकनीकी शाखा में भर्ती के लिए अभियांत्रिकी स्नातक अभिक्षमता परीक्षा GATE के अंकों के आधार पर चयन करने की योजना बनाई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि GATE के अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को वायुसेना चयन बोर्ड में परीक्षा के लिए सीधे चयनित किया जाएगा। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली 10 डब्बों वाली DEMU रेलगाड़ी को चलाने की स्वीकृति दे दी है। ये निर्णय रेलवे क्षेत्र में हरित और टिकाऊ परिवहन को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाइड्रोजन रेलगाड़ी के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कृष्णकांत शर्मा।
4: यह रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी। इसमें 2 ड्राइवर पावर कार और 8 पैसेंजर कोच शामिल हैं, जिनकी कुल क्षमता 2500 यात्रियों की है। इसकी कुल विद्युत क्षमता 1200 किलोवाट है। यह ट्रेन शून्य कार्बन उत्सर्जन करती है। इसकी परिचालन गति 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसमें यात्रियों के लिए आधुनिक डिजिटल डिस्प्ले, ऑटोमेटिक दरवाजे और एयर कंडीशनिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम की यात्रा के दूसरे दिन आज नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति नाथुला में तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी उन्हें क्षेत्र में जारी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देंगे। राष्ट्रपति बाबा हरभजन मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी।

0: अमरीकी सीनेटर लिंडसे ग्राम ने अमरीका और ईरान के बीच मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान की भूमिका की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध के कारण उसे तटस्थ नहीं माना जा सकता। श्री ग्राम ने दावा किया कि ईरानी सैन्य विमान पाकिस्तानी हवाई अड्डे का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल के बारे में पाकिस्तानी नेताओं की टिप्पणियां चिंताजनक हैं। ये टिप्पणियां पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में अब्राहम समझौते में पाकिस्तान के शामिल होने से इनकार के बाद आई हैं। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है और अगले 2 से 3 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका व्यक्त की है। वहीं केरलम में मॉनसून 1 या 2 दिन की देरी से आ सकता है। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 255 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस 162 रन पर सिमट गई। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल राजस्थान के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और लीजिए अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने क्वाड समूह की एकजुटता और सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए सख्ती को सुर्खियों में जगह दी है। साथ ही कई स्थानीय मुद्दे भी मुख्य पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित किए गए हैं। वीर अर्जुन की सुर्खी है, क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ाएगा निगरानी। पत्र ने भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्रियों की तस्वीरों को भी समाचार के साथ प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने घुसपैठ से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन संबंधी अमित शाह के ऐलान को सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है, धर्मशाला नहीं है भारत। पत्र लिखता है, जनसांख्यिकी संरचना बदल जाने से स्थानीय समुदायों में ये भावना बढ़ रही है कि घुसपैठिए सरकारी योजनाओं और राजनीतिक संरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, जिससे भाषा और भूमि को लेकर तनाव बढ़ रहा है। जनसत्ता ने दिल्ली में CNG के दाम 2 रुपये प्रति किलोग्राम और बढ़ाए जाने को पहली खबर बनाया है। अमर उजाला ने भी इस खबर को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर जगह दी है, जबकि दैनिक ट्रिब्यून ने दिल्ली रेस क्लब को राहत न मिलने और जिमखाना पर सरकार के कुछ नर्म रुख को पहली खबर बनाया है।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। CBSE ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन अफवाहों को खारिज किया है जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया। महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी। और IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am VC Pramod, the headlines. Center forms high-level committee to study demographic change caused by infiltration and other reasons. Supreme Court to deliver its verdict today on petitions challenging special intensive revision of electoral rules. CBSE rejects claims circulating on social media about breach of its on-screen marking system, saying it was only testing site and not actual platform. IMD issues red alert for severe heat wave conditions in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Vidarbha today.

0: 1274 पंचायतों में वोट डाले जाएंगे। भारत सरकार ने अवैध अप्रवास और अन्य असामान्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने और जनसांख्यिकीय परिवर्तनों से निपटने के उपायों पर सुझाव देने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को इस कार्य के लिए हाई पावर डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की थी। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने प्रदेश में एक समर्पित धार्मिक पर्यटन सर्किट विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि इस सर्किट के माध्यम से प्रदेश के प्रसिद्ध मंदिरों, शक्तिपीठों, मठों और धार्मिक स्थलों को बेहतर सड़क, आधुनिक सुविधाओं और मजबूत संपर्क व्यवस्था से जोड़ा जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपये से बढ़ाकर 1,580 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें कल से लागू हो गई हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के राजनीतिक सलाहकार सुनील बिट्टू ने कहा है कि हमीरपुर शहर के व्यापारियों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा। सुनील बिट्टू ने कल उनसे मिलने आए हमीरपुर व्यापार मंडल के एक प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी समस्याओं को मुख्यमंत्री के सामने रखकर उनका समाधान निकाला जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कार्यवाहक मुख्य सचिव संजय गुप्ता को इस पद पर नियमित नियुक्ति दे दी है। संजय गुप्ता को मुख्य सचिव के पद पर ये नियमित नियुक्ति उनकी सेवानिवृत्ति से 5 दिन पूर्व दी गई है। वे 31 मई को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। एफएम न्यूज हेडलाइंस के संक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। 8:32 हुए हैं। आइए सुनते हैं लोक संगीत।

लोक संगीत में अभी आपने सुना रणजीत कुमार की आवाज़ में ये लोकगीत। आइए इसके बाद सुनते हैं अगला लोकगीत कृतिका तन्वर की आवाज़ में।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का शिमला केंद्र। 8:45 हुए हैं एफएम शिमला पर। लीजिए पेश फिल्म संगीत।

तो साथियों, ये था कार्यक्रम का पहला गीत सिर्फ तुम फिल्म से। इसे गाया था कुमार सानू और अलका याग्निक ने। इस गीत को लिखा था समीर ने और संगीत दिया था नदीम श्रवण ने। इसके बाद चलिए सुनते हैं अगला गीत सिलसिला है प्यार का फिल्म से। उदित नारायण की आवाज़ में ये गीत है, गीतकार समीर और संगीतकार जतिन ललित।

अभी आपने सुना शान की आवाज़ में ये गीत फ्रॉम द मूवी प्यार में कभी कभी। इसके बाद फिल्म संगीत में आइए सुनते हैं मन फिल्म का गीत उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में। इस गीत को लिखा है समीर ने और संगीत दिया है संजीव दर्शन ने।

कार्यक्रम के आखिर में ये सुनते हैं हम तुम पे मरते हैं फिल्म का ये टाइटल सॉन्ग। इसे गाया है लता मंगेशकर, उदित नारायण और साथियों ने। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार उत्तम सिंह।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM शिमला। 9:15 हुए हैं, आइए सुनते हैं आकाशवाणी के प्राइमरी चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के मुख्य आकर्षण। अब से कुछ देर बाद 9:31 से आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरबेला। ठीक 10 बजे विषय आधारित प्रोग्राम रिम झिम और 11:05 पर आप सुनेंगे लोक संगीत। पर आप सुनेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग और 12:10 पर फिल्म संगीत और महिला सम्मेलन आप सुन सकेंगे 12:20 पर। दिन में 1:10 से आप सुनेंगे कार्यक्रम सैनिकों के लिए सुनहरी किरणें आप सुनेंगे ठीक 2 बजे, जिसमें आज का विषय रहेगा कार्नेशन की खेती।

ठीक 2:30 पर आप सुनेंगे हिम गुंजन लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम और 2:45 पर फिल्म संगीत। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 3 बजे, शाम 6 बजे और शाम 7:45 पर। हिमाचली बोलियों के कार्यक्रमों में आप सुनेंगे स्पीति कार्यक्रम 4:20 पर, महासवी कार्यक्रम 4:50 पर और 5:20 पर आप सुनेंगे किन्नौरी कार्यक्रम। शाम 6:06 से शुरू होगा बिलासपुरी कार्यक्रम, कुल्लूई कार्यक्रम का समय रहेगा 6:35 और कृषि जगत कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:10 पर, जिसमें आज का विषय रहेगा गुठलीदार फलों के रोग, कीट और उपचार। ठीक 8 बजे धारावाहिक गीत पेश होगा, जिसमें कि राकेश चंद्र, कमला रानी, सीताराम और साथी के द्वारा गाए लोकगीत आप सुनेंगे। फिल्म संगीत 8:15 पर और सुगम संगीत का समय रहेगा 8:30। गजलों पर आधारित कार्यक्रम गुलदस्ता पेश होगा 9:15 पर, चर्चा का विषय है 9:30 पर और ठीक 10 बजे आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत और आखिर में 10:30 पर आप सुन सकेंगे पुरानी फिल्मों पर आधारित कार्यक्रम सुरबहार। साथियों ये थे आकाशवाणी के प्राइमरी चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के मुख्य आकर्षण। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM शिमला केंद्र। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर और एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र भी रिले करेंगे। ये डीटीएच सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुने जा सकते हैं।
1: गांव की पहचान होती है उसकी मजबूत पंचायत से, और पंचायत मजबूत बनती है आपके एक वोट से,
2: क्योंकि ईमानदारी और बिना किसी के प्रभाव में आए दिए गए आपके वोट ही तय होते हैं गांव और बनती है सड़क, पानी, स्वच्छता और रोजगार संबंधी नीतियाँ।
1: इसीलिए 26 मई, 28 मई और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपनी भागीदारी निभाएं।
2: अपने परिवार और गांव वालों को भी जागरूक बनाएं और 100% मतदान के संकल्प को हासिल करने का लक्ष्य बनाएं।
1: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में पंचायती राज चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न, 78.85% रहा मतदान। कल 28 मई को पंचायती राज संस्थाओं के दूसरे चरण का मतदान होगा। 1274 पंचायतों में डाले जाएंगे वोट। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने प्रदेश के लिए एक विशेष और सुव्यवस्थित धार्मिक पर्यटन सर्किट बनाने पर दिया बल। और मैदानी क्षेत्रों में भीषण गर्मी के चलते पर्यटकों ने भारी संख्या में किया प्रदेश का रुख। कुल्लू के होटलों में 90% हुई ऑक्यूपेंसी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में पंचायती राज चुनाव के पहले चरण का मतदान कल संपन्न हुआ, जिसमें 1293 ग्राम पंचायतों में चुनाव प्रक्रिया पूरी हुई। निर्वाचन आयोग के मुताबिक पहले चरण में 78.85% मतदान दर्ज किया गया, जो

0: वर्ष 2021 में हुए पंचायत चुनावों से ज्यादा है। वर्ष 2021 में पहले चरण में 70% मतदान हुआ था। अधिक ब्यौरा इस रिपोर्ट में।
1: पंचायती राज चुनाव के पहले चरण में प्रदेश भर में मतदाताओं में भारी उत्साह देखा गया। मतदान 78% से अधिक दर्ज किया गया। सबसे ज्यादा 84% मतदान कुल्लू जिला और सबसे कम 69% लाहौल स्पीति में दर्ज हुआ। सिरमौर के कमरऊ ब्लॉक की तिलोधार ग्राम पंचायत कुनेर धमौन में सबसे ज्यादा 97% वोट पड़े। 10 जिलों में महिला मतदाताओं का प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा रहा। कुल्लू में 85% महिलाओं ने वोट डाला। नए मतदाताओं के साथ 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग भी उत्साह के साथ अलग अलग स्थानों पर मतदान करने पहुंचे। प्रधान, उपप्रधान और वार्ड सदस्य के नतीजे देर रात घोषित किए गए हैं। इस बीच शिमला जिला के रामपुर में नारायण पंचायत के वार्ड नंबर 1 में मतदान प्रक्रिया के दौरान गंभीर त्रुटि के चलते मतदान स्थगित किया गया। यहां 30 मई को दोबारा मतदान होगा। उपायुक्त शिमला ने गंभीर लापरवाही को देखते हुए पोलिंग पार्टी के 4 अधिकारियों को निलंबित किया है। इधर मंडी जिला के करसोग पंचायत समिति के वार्ड नंबर 12 मेहड़ी में थाच धर्मा व परलोक पंचायतों का बीडीसी सदस्य का मतदान स्थगित किया गया। यहां मतपत्र पर चुनाव लड़ रहे एक प्रत्याशी का नाम नहीं लिखा गया था। इस वार्ड का चुनाव कल 28 मई को दोबारा करवाया जाएगा। इसके अलावा चंबा जिला की चंबी पंचायत के वार्ड नंबर 3 में उम्मीदवार की मृत्यु के कारण चुनाव स्थगित हुआ। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं पुष्पा ठाकुर।
0: इस बीच 28 मई को होने वाले पंचायती राज चुनाव के दूसरे चरण के लिए सक्रिय चुनाव प्रचार बीते कल दोपहर 3 बजे समाप्त हो गया। इन क्षेत्रों में अब प्रत्याशी व्यक्तिगत रूप से ही प्रचार कर रहे हैं। चुनाव के दूसरे चरण में 1274 पंचायतों में वोट डाले जाएंगे। तीसरे व आखिरी चरण में 30 मई को मतदान होना है, जिनमें 1187 पंचायतों में चुनाव होगा। हिमाचल प्रदेश की अपार आध्यात्मिक और पर्यटन क्षमता पर जोर देते हुए राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने देवभूमि हिमाचल के लिए एक विशेष और सुव्यवस्थित धार्मिक पर्यटन सर्किट बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि ऐसी पहल न केवल राज्य की आध्यात्मिक पहचान को मजबूत करेगी बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी, स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी और हिमाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को संरक्षित करेगी। राज्यपाल ने ये बात कल कांगड़ा जिला में मां ज्वाला देवी मंदिर के दर्शन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कही। राज्यपाल ने कहा कि धार्मिक पर्यटन में हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख स्तंभ बनने की क्षमता है। उन्होंने राज्य सरकार, पर्यटन मंत्रालय और सभी संबंधित हितधारकों से आह्वान किया है कि वे इस पवित्र स्थलों की पवित्रता और धार्मिक सार को बनाए हुए तीर्थयात्रियों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं विकसित करने की दिशा में मिलकर काम करें। भारतीय जनता पार्टी द्वारा कांग्रेस सरकार पर लगाए गए आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में पूर्व में भी आचार संहिता के बीच कैबिनेट की बैठकें होती रही है, इसलिए भाजपा को इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वहीं प्रदेश में पर्यटन सीजन को देखते हुए 24 घंटे दुकानें खुली रखने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कारोबारियों को पर्यटन सीजन का पूरा लाभ मिल सके, इसलिए ये निर्णय लिया गया है। प्रदेश भाजपा मुख्य प्रवक्ता और विधायक राकेश जम्वाल ने कहा है कि केवल 4-5 दिनों के लिए मुख्य सचिव की नियुक्ति करना राज्य सरकार की गलत कार्यशैली और प्रशासनिक अस्थिरता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि संजय गुप्ता पिछले 1 वर्ष से अतिरिक्त कार्यभार के रूप में कार्यवाहक मुख्य सचिव की जिम्मेदारी निभा रहे थे और अब सेवानिवृत्ति से कुछ दिन पहले इनकी मुख्य सचिव के रूप में नियमित नियुक्ति करना सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा है कि इस महत्वपूर्ण पद पर अल्पकालीन नियुक्ति अधिकारियों के मनोबल पर प्रभाव डालेगी। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार हमारे DTH सेवा और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुने जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। मैदानी क्षेत्रों में बढ़ रही तपिश के चलते पर्यटकों ने भारी संख्या में हिमाचल का रुख किया है। कुल्लू जिला में इन दिनों पर्यटक सीजन अपने चरम पर है। यहां होटलों की ऑक्यूपेंसी 90% तक पहुंच चुकी है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे कुल्लू जिला संवाददाता।
2: कुल्लू जिला में इन दिनों पर्यटन सीजन अपने चरम पर है तथा मनाली सहित जिला के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर प्रतिदिन सैलानियों की संख्या बढ़ती जा रही है। मैदानी इलाकों में झुलसा देने वाली पड़ रही गर्मी से निजात पाने के लिए काफी संख्या में लोगों ने पहाड़ों की ओर रुख किया है। पर्यटक जहां पर

0: रोहतांग पास में जाकर जहां बर्फ का दीदार कर रहे हैं, वहीं अटल टनल होते हुए लाहौल की तरफ भी जा रहे हैं। पर्यटक कुल्लू में जहां रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, जिप लाइन व अन्य गतिविधियों का आनंद ले रहे हैं, वहीं जिला के ग्रामीण इलाकों में स्थित झरनों और प्राकृतिक जल स्रोतों पर भी इनकी भारी भीड़ देखी जा सकती है। सैलानियों की बढ़ती आवाजाही से पर्यटन कारोबार को भी बढ़ावा मिला है तथा मनाली के होटलों की ऑक्यूपेंसी लगभग 90% तक पहुँच चुकी है। यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए मनाली में 25 SDRF के जवान भेजे गए हैं तथा पंचायत चुनाव समाप्त होते ही और भी जवानों की तैनाती की जाएगी। आकाशवाणी के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा।
1: HPCL स्टेडियम धर्मशाला में बीती रात हुए IPL क्वालिफायर 1 मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 255 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस 162 रन पर ही सिमट गई। रजत पाटीदार को नाबाद 93 रन की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। लाहौल और स्पीति को जोड़ने वाली लोसर ग्रामफू चंद्रताल सड़क हल्के वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल कर दी गई है। प्रशासन की ओर से जारी सूचना के अनुसार बीते वर्ष दिसंबर माह से बर्फबारी के चलते बंद इस मार्ग को फिलहाल 4x4 वाहनों की आवाजाही के लिए खोला गया है। अगले कुछ दिनों में सड़क के पूरी तरह तैयार हो जाने पर यहाँ भारी वाहनों की आवाजाही शुरू की जाएगी। जिला प्रशासन ने यात्रियों से प्रशासन द्वारा जारी दैनिक एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है। इस सड़क पर यातायात बहाली से लाहौल स्पीति में चंद्रताल तक पर्यटकों की आवाजाही फिर शुरू हो जाएगी। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने पहले चरण में पंचायत चुनाव से जुड़ी खबरों को सचित्र प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, हिमाचल में लू के बीच रिकॉर्ड 78.83% मतदान, 1293 पंचायतों में चुनी गांव की सरकार। दैनिक जागरण के शब्द है, ग्रामीण संसद के लिए जमकर पड़े वोट। हिमाचल दस्तक लिखता है, कुल्लू में सबसे अधिक 84 और लाहौल स्पीति में सबसे कम 69% मतदान। पंजाब केसरी ने खबर दी है, शिपकी ला दर्रे से 1 जून से फिर शुरू होगा भारत चीन सीमा व्यापार। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, रिटायरमेंट से सिर्फ 5 दिन पहले IAS संजय गुप्ता बने CS, अभी था CS का अतिरिक्त कार्यभार। दैनिक सवेरा टाइम्स की एक खबर है, धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने लिया IPH मुकाबले का आनंद। मौसम पर दिव्य हिमाचल के शब्द है, हिमाचल में भीषण गर्मी, 6 जिलों में लू, 28 मई से राहत के आसार। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में पंचायती राज चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न, 78.85 रहा मतदान प्रतिशत। कल 28 मई को पंचायती राज संस्थाओं के दूसरे चरण का मतदान होगा, 1274 पंचायतों में डाले जाएंगे वोट। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने प्रदेश के लिए एक विशेष और सुव्यवस्थित धार्मिक पर्यटन सर्किट बनाने पर दिया बल। और मैदानी क्षेत्रों में भीषण गर्मी के चलते पर्यटकों ने भारी संख्या में किया प्रदेश का रुख, कुल्लू के होटलों में 90% हुई ऑक्यूपेंसी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
2: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला FM शिमला, हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र से प्रसारित किए जा रहे थे। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
3: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज, 103.7 MHz FM शिमला।
4: हर खुशी अब लगे नमी,
3: मस्त चुनो मस्त सुनो, जानकारी और मनोरंजन के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए FM।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM शिमला केंद्र 103.7 MHz पर। इस वक्त 9:31 हो चुके हैं और कार्यक्रम की इस कड़ी में आइए सुनते हैं कार्यक्रम कुदरत के रंग।

जी हाँ साथियों, और प्रोग्राम कुदरत के रंग में आज हम आपकी सैर करवाने वाले हैं जिला मंडी के जंजहली। साथियों, प्रकृति हमारे जीवन का सबसे सुंदर उपहार है। हरी भरी वादियाँ, कल कल कहती बहती नदियाँ, रंग बिरंगे फूल, चहचाते पक्षी और विशाल पर्वत, ये सभी कुदरत के अनमोल रंग ही तो हैं। और आज का ये कार्यक्रम बड़ा खास रहने वाला है, क्योंकि हम इसमें गीत संगीत के साथ साथ जंजहली की सैर करने वाले हैं।

हिमाचल प्रदेश राज्य के मंडी जिले की हरी भरी गोद में बसा है जंजैहली और एक मनमोहक घाटी जो आधुनिक जीवन के शोरगुल से अछूती है। ज़रा कल्पना कीजिए कि एक ऐसी जगह जहाँ नीले आसमान के नीचे हरे भरे मैदान कालीन की तरह बिछे हों और जहाँ झरनों की मधुर ध्वनि आपकी इंद्रियों को मंत्रमुग्ध कर दे और जहाँ बर्फ़ से ढकी चोटियाँ बादलों को चीरती हुई शांत झीलों में अपनी भव्यता का प्रतिबिंब बिखेरें। यही है वो जंजैहली, एक ऐसी जगह जो हर आगंतुक को एक अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करती है।

साथियों, ये था कार्यक्रम का पहला गीत और आज हम सैर कर रहे हैं जंजैहली घाट की। जी हाँ, भले ही जंजैहली में प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक ना हो, लेकिन इसकी प्राकृतिक सुंदरता और अछूते वन्य जीवन में भी

इसकी शान है और लाखों वर्ष के भूवैज्ञानिक विकास ने इस भूभाग को एक उत्कृष्ट कृति में ढाला है, जहाँ प्रकृति का बोलबाला है। और इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विविधता भले ही अपेक्षाकृत नई हो, लेकिन उतनी ही जीवंत है। हर साल 15 अगस्त को आयोजित होने वाले जंजैहली घाटी महोत्सव के आनंदमय उत्सव को आप देख सकते हैं, जो स्थानीय रीति रिवाजों, पारंपरिक पोशाकों और उमंग भरे उत्साह का एक जीवंत प्रदर्शन है। और साथ रोमांच की बात करें तो रोमांच के शौकीनों के लिए जंजैहली किसी सपने के सच होने जैसा है। ट्रैकर्स के स्वर्ग के रूप में प्रसिद्ध ये घाटी सभी अनुभव स्तरों के लिए उपयुक्त सुव्यवस्थित पगडंडियों के जाल से सजी है, सुसज्जित है, और अनुभवी पर्वतारोहियों के लिए चुनौतीपूर्ण ट्रैक कौशल और सहन शक्ति की सच्ची परीक्षा लेता है और उन्हें हिमालय के भव्य नज़ारों का अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है। इन रास्तों पर चलते हुए क्षेत्र की अनूठी वनस्पतियों और जीव जंतुओं पर भी आप नज़रें रख सकते हैं।

साथियों, जंजहली प्रकृति की लय से धड़कता है और झरनों की मधुर ध्वनि यहाँ खूब गूंजती है। और गर्मी के दिनों में यानी कि आजकल उनकी ठंडी पुहार आपको खूब राहत देगी। और कल्पना कीजिए शांत पानी पर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बर्फ़ से ढकी चोटियों का प्रतिबिंब पानी में दिखाई दे रहा हो, और जो किसी अजब शांति का दृश्य प्रस्तुत करता है। हरे भरे घास के मैदान आराम से पिकनिक मनाने और प्रकृति की सैर के लिए जो है आपको आमंत्रित करते हैं। और किसी विशाल देवदार के पेड़ की छाया में आप आराम से जो है बिछा सकते हैं, और पहाड़ों की ताज़ी हवा में सांस ले सकते हैं, और पास की बहती धारा की मधुर ध्वनि आपको पूर्ण शांति की अवस्था में ले जाएगी। और मनमोहक प्राकृतिक दृश्यों से परे जाकर स्थानीय धरोहरों की खोज आप कर सकते हैं, और प्राचीन शिकारी देवी मंदिर जैसी स्थापत्य कला की अद्भुत कृतियों का अन्वेषण आप ज़रूर करें जब भी आपका जाना हो, और जहां की जटिल नक्काशी बीते युग की कहानियां बयां करती है। किसी शांत गांव में होम स्टे का विकल्प चुनकर स्थानीय संस्कृति में आप डूब सकते हैं, और यहाँ आपका हार्दिक स्वागत होगा। और यहाँ के निवासी आपको अपने पारंपरिक जीवन शैली की झलक दिखाएंगे, और उनकी सदियों पुरानी परंपराओं के बारे में आपको जानने का मौका मिलेगा, और स्थानीय गतिविधियों में भी आप भाग ले सकते हैं, और सच्चे संबंध बनाने के इस अवसर का आप भरपूर आनंद लें, और इस क्षेत्र के पारंपरिक व्यंजनों से अपने स्वाद को तृप्त करना बिल्कुल ना भूलें।

FM शिमला पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कुदरत के रंग, और हम बात कर रहे हैं जंजैहली क्षेत्र के। जंजैहली हर तरह के यात्रियों के लिए उपयुक्त है और रोमांच पसंद करने वालों के लिए तारों से भरे आसमान के नीचे कैंपिंग करने जैसा अनुभव कहीं और नहीं मिल सकता। जहां आकाशगंगा काले आसमान में फैली होती है और पक्षी प्रेमी इस क्षेत्र में पाए जाने वाली विविध पक्षी प्रजातियों को देखने के लिए यात्रा पर निकल सकते हैं, जिनमें राजसी, हिमालयन ग्रिफॉन गिद्ध से लेकर रंगीन कोकलास तीतर तक शामिल हैं। और पहाड़ों के बीच बसा जंजैहली सड़क मार्ग से सबसे आसानी से पहुंचा जा सकता है। निकटतम हवाई अड्डा चंडीगढ़ 278 किलोमीटर और शिमला 220 किलोमीटर के गैप में है, और जबकि निकटतम रेलवे स्टेशन जोगिंदरनगर जो कि वहां से 152 किलोमीटर की दूरी पे है। और साहसिक यात्रा के शौकीनों के लिए दिल्ली 580 किलोमीटर या मनाली 180 किलोमीटर जैसे प्रमुख शहरों से सड़क यात्राएं मनोरम दृश्यों का आनंद लेने का अवसर भी आपको प्रदान करेंगे, जिससे आप जंजैहली पहुंचते ही हिमालय की सुंदरता में डूब सकते हैं। और वहां पहुंचने पर घाटी के आकर्षक गांव और प्राकृतिक अजूबों को देखने के लिए टैक्सी या जीप जैसे स्थानीय परिवहन विकल्प भी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। जब बात ठहरने की आती है तो जंजैहली में हर बजट और पसंद के अनुरूप कई विकल्प वहाँ पे मौजूद हैं, और जंजैहली घूमने का सबसे अच्छा समय आपकी यात्रा शैली और पसंद पे निर्भर करता है। गर्मियों की बात करें तो यहाँ मौसम सुहावना रहता है और औसतन 20 से 30 डिग्री का टेम्परेचर यहाँ पे अप्रैल से जून के बीच में रहता है, जो ट्रैकिंग और बाहरी गतिविधियों के लिए एकदम सही है। और मानसून की बात करें तो हरियाली छा जाती है और कभी कभी भारी बारिश भी होती है, जिससे पूरा इलाका एक जीवंत दृश्य में बदल जाता है। और सर्दियों में दिसंबर से फरवरी में जंजैहली एक जादुई दुनिया में बदल जाता है, जब तापमान शून्य से नीचे भी चला जाता है और चोटियां बर्फ से ढक जाती है। ये मौसम उन लोगों के लिए एक शांत और सुखद अनुभव प्रदान करेगा जो एकांत और मनमोहक शीतकालीन दृश्यों की तलाश में होते हैं। मार्च, अप्रैल और सितंबर नवंबर के बीच का समय सभी गतिविधियों के लिए आरामदायक तापमान प्रदान करता है और व्यस्त मौसमों की तुलना में भीड़ भी कम होती है। और पहाड़ों का मौसम अप्रत्याशित हो सकता है, और ऐसे कपड़े पैक करना सुनिश्चित करें जिन्हें तापमान में बदलाव के अनुसार आसानी से समायोजित किया जा सकता है। और वाटरप्रूफ कपड़े बेहद ज़रूरी है, खासकर मॉनसून के मौसम में। स्थानीय शिष्टाचार और सांस्कृतिक मानदंडों का सम्मान करें, और धार्मिक स्थलों पर जाते समय शालीन कपड़े पहनें और लोगों की तस्वीरें लेने से पहले हमेशा अनुमति ले लें। तो साथियों, जब भी आपको मौका मिले तो जिला मंडी के जंजैहली क्षेत्र आप ज़रूर जाएं और वहां के मनोरम दृश्यों का आनंद लें।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला। आइए सुनते हैं एफएम न्यूज हेडलाइंस।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं पुष्पा ठाकुर। प्रदेश में पंचायती राज चुनाव के पहले चरण का मतदान कल संपन्न हुआ, जिसमें 1293 ग्राम पंचायतों में चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई। निर्वाचन आयोग के मुताबिक पहले चरण में 78.85% मतदान दर्ज किया गया, जो वर्ष 2021 में हुए पंचायत चुनाव से ज्यादा है। चुनाव के दूसरे चरण में 1274 पंचायतों में वोट डाले जाएंगे। तीसरे व आखिरी चरण में 30 मई को मतदान होना है, जिसमें 1187 पंचायतों में चुनाव होगा। प्रदेश की अपार आध्यात्मिक और पर्यटन क्षमता पर जोर देते हुए राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने देवभूमि हिमाचल के लिए एक विशेष और सुव्यवस्थित धार्मिक पर्यटन सर्किट बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि ऐसी पहल न केवल राज्यों की आध्यात्मिक पहचान को मजबूत करेगी, बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा कांग्रेस सरकार पर लगाए गए आचार संहिता के उल्लंघन के आरोपों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में पूर्व में भी आचार संहिता के बीच कैबिनेट बैठकें होती रही है, इसलिए भाजपा को इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। एचपीसीए स्टेडियम धर्मशाला में बीती रात हुए आईपीएल क्वालिफायर 1 मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 255 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस 162 रन पर ही सिमट गई। रजत पाटीदार को नाबाद 93 रन की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। लाहौल और स्पीति को जोड़ने वाली लोसर ग्रामफू चंद्रताल सड़क हल्के वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल कर दी गई है। प्रशासन की ओर से जारी सूचना के अनुसार बीते वर्ष दिसंबर माह से बर्फबारी के चलते बंद इस मार्ग को फिलहाल 4x4 हल्के वाहनों की आवाजाही के लिए खोला गया है। रेणुका बांध विस्थापित संघर्ष समिति ने वन विभाग से बांध प्रभावित क्षेत्र में निष्पक्ष तरीके से पेड़ों की गिनती करवाने की मांग की है। रेणुका बांध विस्थापित संघर्ष समिति के प्रेस सचिव योगी ठाकुर ने कल नाहन में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि यदि इस कार्य में पारदर्शिता नहीं बरती गई तो समिति मामले को न्यायालय में ले जाएगी। केंद्र सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1270 रुपये से बढ़ाकर 1580 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें कल से लागू हो गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का 12 वर्ष कार्यकाल सेवा, सुशासन और संकल्प सिद्धि का प्रतीक है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को धरातल पर उतारते हुए अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचाई है। एफएम न्यूज़ हेडलाइंस में आज बस इतना ही। नमस्कार।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का एफएम शिमला केंद्र 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। दस बजे हैं, एफएम शिमला पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीत गाता चल।

0: चुनाव सिर्फ एक शब्द नहीं, ये है सच्चे लोकतंत्र की नींव, और मतदान है एक जागरूक नागरिक की पहचान, जिसे इस्तेमाल कर वो तय करते हैं अपने क्षेत्र, राज्य और देश की दशा व दिशा।
1: तो आइए अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आगामी पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लें और गांव के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।
0: आपका एक एक वोट तय करेगा पंचायत का भविष्य। तो निर्धारित तिथि को अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर सोच समझ कर और बिना किसी प्रभाव के मतदान जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी ही नहीं अधिकार है।
1: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: चलिए साथियों, गीत गाता चल में आइए अब सुनते हैं तेजाब फिल्म का गीत, अनुराधा पौडवाल, अमित कुमार और साथियों की आवाज़ों में। इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: आपका गांव है आपका गर्व, इसको विकसित बनाने के लिए आइए मिलके मनाएं लोकतंत्र का पर्व।
1: हो चुकी है देवभूमि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा। ये मतदान 3 चरणों में 26, 28 और 30 मई को होगा। ऐसे में आए एक सच्चा नागरिक बनकर मिलकर निभाएं जिम्मेदारी और भारी संख्या में मतदान देकर दिखाएं अपनी भागीदारी।
0: आपका हर एक कीमती वोट आपके गांव की दशा और दिशा तय करेगा, तो अपने मताधिकार का प्रयोग करना ना भूलें। राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

अभी आपने सुना संतोष आनंद का लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया प्रेम रोग फिल्म का गीत। इसे गाया था लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर ने। इसके बाद आइए सुनते हैं परदेश फिल्म का गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में, गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार नदीम श्रवण।

0: हमारा गांव है हमारी पहचान, हमारा गांव है हमारा अभिमान। आइए मिलकर दें इसके विकास में अपना योगदान।
1: हम सब ने ठाना है कि 100% मतदान के लक्ष्य को पाना है।
0: पंचायत चुनाव आ रहे हैं, जहां आपका हर ईमानदारी से दिया गया वोट तय करता है गांव की दशा और दिशा, साथ ही बनता है गांव के विकास का आधार।
1: तो 26, 28 और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और अपने परिवार और आस पास के हर वोटर को मतदान के लिए प्रेरित करे।
0: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।

साथियों, अभी आपने सुना प्यार किया तो डरना क्या फिल्म का गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में। इसके बाद आइए अब सुनते हैं अगला गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में, ऐतराज़ फिल्म से। इस गीत को लिखा है समीर ने और संगीत से सजाया है हिमेश रेशमिया ने।

0: हिमाचल के युवाओं, अब सिर्फ सोशल मीडिया पर ओपिनियन देने का नहीं, वोट देने का भी वक्त आ गया है।
1: इस पंचायत इलेक्शन में 50 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने मत का अधिकार इस्तेमाल करेंगे और हजारों फर्स्ट टाइम वोटर्स भी बनेंगे इस बदलाव का हिस्सा। 26 मई, 28 मई और 30 मई, याद रखिए ये तारीखें।
0: आपकी एक वोट आपके गाँव की सोच, विकास और लीडरशिप को तय करेगी। तो निकलिए घर से और बनिए जिम्मेदार नागरिक। पंचायत चुनाव 2026, वोट जरूर करें।

0: प्रदेश के सशक्त प्रचार प्रसार माध्यम आकाशवाणी पर आप अपने कारोबार में ला सकते हैं बढ़ोतरी।
1: यदि आप जुड़े हैं किसी स्टार्टअप या मेक इन इंडिया या किसी पंजीकृत सेल्फ हेल्प ग्रुप से, तो आप आकाशवाणी पर सस्ते दामों में विज्ञापनों के माध्यम से अपनी मेहनत को जन जन तक पहुँचाकर अपने सपने साकार कर सकते हैं। शुभवाणी, लाभ वाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
0: नियम और शर्तें लागू।
2: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: सरकारी विभाग हो या बैंक या फिर कोई सार्वजनिक उपक्रम यानी PSU,
1: आप सस्ते दामों पर आकाशवाणी के माध्यम से सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का आकाशवाणी के माध्यम से विज्ञापनों द्वारा प्रचार प्रसार कर जन जन तक पहुंचा सकते हैं।
0: आकाशवाणी की पहुंच प्रदेश के दूर दराज ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों तक है
1: और आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर ये सेवाएं उपलब्ध हैं।
0: शुभवाणी।

0: ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। अब प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला, DTH सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुना जा सकता है।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में पंचायती राज चुनाव के पहले चरण का मतदान कल संपन्न हुआ, जिसमें 1293 ग्राम पंचायतों में चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई। निर्वाचन आयोग के मुताबिक पहले चरण में 78.85% मतदान दर्ज किया गया, जो वर्ष 2021 में हुए पंचायत चुनावों से ज्यादा है। वर्ष 2021 में पहले चरण में 77% मतदान हुआ था। अधिक ब्यौरा इस रिपोर्ट में।
2: पंचायती राज चुनाव के पहले चरण में प्रदेश भर में मतदाताओं में भारी उत्साह देखा गया। मतदान 78% से अधिक दर्ज किया गया। सबसे ज्यादा 84% मतदान कुल्लू जिला और सबसे कम 69% लाहौल स्पीति में दर्ज हुआ। सिरमौर के कमरऊ ब्लॉक की तिलोधार ग्राम पंचायत कुनेर धमौन में सबसे ज्यादा 97% वोट पड़े। 10 जिलों में महिला मतदाताओं का प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा रहा। कुल्लू में 85% महिलाओं ने वोट डाला। नए मतदाताओं के साथ 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग भी उत्साह के साथ अलग अलग स्थानों पर मतदान करने पहुंचे। प्रधान, उपप्रधान और वार्ड सदस्य के नतीजे देर रात घोषित किए गए हैं। इस बीच शिमला जिला के रामपुर में नरेन पंचायत के वार्ड नंबर 1 में मतदान प्रक्रिया के दौरान गंभीर त्रुटि के चलते मतदान स्थगित किया गया। यहां 30 मई को दोबारा मतदान होगा। उपायुक्त शिमला ने गंभीर लापरवाही को देखते हुए पोलिंग पार्टी के 4 अधिकारियों को निलंबित किया है। इधर मंडी जिला के करसोग पंचायत समिति के वार्ड नंबर 12 मेहड़ी में थाच, धर्मा व परलोक पंचायतों का BDC सदस्य का मतदान स्थगित किया गया। यहां मतपत्र पर चुनाव लड़ रहे एक प्रत्याशी का नाम नहीं लिखा गया था। इस वार्ड का चुनाव कल 28 मई को दोबारा करवाया जाएगा। इसके अलावा चंबा जिला की चंबी पंचायत के वार्ड नंबर 3 में उम्मीदवार की मृत्यु के कारण चुनाव स्थगित हुआ। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं पुष्पा ठाकुर।
1: इस बीच 28 मई को होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के दूसरे चरण के लिए सक्रिय चुनाव प्रचार बीते कल दोपहर 3 बजे समाप्त हो गया। इन क्षेत्रों में प्रत्याशी व्यक्तिगत रूप से ही प्रचार कर रहे हैं। चुनाव के दूसरे चरण में 1274 पंचायतों में वोट डाले जाएंगे।

0: तीसरे व आखिरी चरण में 30 मई को मतदान होना है, जिसमें 1187 पंचायतों के लिए चुनाव होगा। हिमाचल प्रदेश की अपार आध्यात्मिक और पर्यटन क्षमता पर जोर देते हुए राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने देवभूमि हिमाचल के लिए एक विशेष और सुव्यवस्थित धार्मिक पर्यटन सर्किट बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि ऐसी पहल न केवल राज्य की आध्यात्मिक पहचान को मजबूत करेगी, बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी, स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी और हिमाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को संरक्षित करेगी। राज्यपाल ने ये बात कल कांगड़ा जिला में ज्वाला देवी मंदिर के दर्शन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कही। राज्यपाल ने कहा कि धार्मिक पर्यटन में हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख स्तंभ बनने की क्षमता है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा कांग्रेस सरकार पर लगाए गए आचार संहिता के उल्लंघन के आरोपों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में पूर्व में भी आचार संहिता के बीच कैबिनेट बैठकें होती रही है, इसलिए भाजपा को इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वहीं प्रदेश में पर्यटन सीजन को देखते हुए 24 घंटे दुकानें खुली रखने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कारोबारियों को पर्यटन सीजन का पूरा लाभ मिल सके, इसके लिए ये निर्णय लिया गया है। लाहौल और स्पीति को जोड़ने वाली लोसर ग्रामफू चंद्रताल सड़क हल्के वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल कर दी गई है। प्रशासन की ओर से जारी सूचना के अनुसार बीते वर्ष दिसंबर माह से बर्फबारी के चलते बंद इस मार्ग को फिलहाल 4x4 वाहनों की आवाजाही के लिए खोला गया है। अगले कुछ दिनों में सड़क के पूरी तरह तैयार हो जाने पर यहां भारी वाहनों की आवाजाही भी शुरू हो जाएगी। जिला प्रशासन ने यात्रियों से प्रशासन द्वारा जारी दैनिक एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है। इस सड़क पर यातायात बहाली से लाहौल स्पीति में चंद्रताल तक पर्यटकों की आवाजाही फिर शुरू हो जाएगी। मैदानी क्षेत्रों में बढ़ रही तपिश के चलते पर्यटकों ने भारी संख्या में हिमाचल का रुख किया है। कुल्लू जिला में इन दिनों पर्यटन सीजन अपने चरम पर है। यहां होटलों की ऑक्यूपेंसी 90% तक पहुंच चुकी है। पर्यटकों के लिए रोहतांग दर्रा मुख्य आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वहीं अटल टनल से होते हुए लाहौल घाटी भी भारी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित कर रही है। रोहतांग में बर्फ का आनंद लेने के अलावा पर्यटक विभिन्न साहसिक पर्यटन गतिविधियों सहित ग्रामीण इलाकों के अनछुए पर्यटन स्थलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। पर्यटकों की आमद बढ़ने से प्रभावित हो रही यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए मनाली में 25 SDRF के जवान तैनात किए गए हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 3:00 PM। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
2: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 MHz FM शिमला। हंसने हंसाने, आपको गुदगुदाने और कुछ गुनगुनाने के लिए
3: हम तो मोहब्बत करेगा, दुनिया से नहीं डरेगा, चाहे ये जमाना कहे हमको दीवाना, आज हम तो मोहब्बत

स्वागत करते हैं आप सभी का 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला पर। 11:06 हुए हैं और अब समय हो गया है आपके अपने ही कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से का। कार्यक्रम के सफर में आज आपके साथ मैं हूं सुमन और लेकर आए हैं आपके लिए बेहतरीन सिनक में इस कार्यक्रम में। तो चलिए सबसे पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं आशा भोंसले के गाए हुए इस गीत के साथ, जिसे हमने लिया है फिल्म सावन की घटा से। गीत को लिखा है HS बिहारी ने और संगीत दिया है OP नैयर ने।

कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको सुना रहे हैं आशा भोसले और निम्मो की आवाज़ों में ये गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म ये रात फिर ना आएगी। गीत को लिखा है कश्मीरी ने और संगीत दिया है ओपी नैयर ने।

0: हिमाचल में फिर से सज गया है लोकतंत्र का महापर्व पंचायत चुनाव 2026।
1: 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में होने जा रहे हैं पंचायत इलेक्शंस, जहां आपकी एक वोट तय करेगी आपके गांव का कल।
0: सड़क, पानी, सफाई, रोजगार और गांव के विकास से जुड़े फैसलों में आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है।
1: इस बार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और चुनिएगा ईमानदार, योग्य और जिम्मेदार प्रतिनिधि। हिमाचल पंचायत इलेक्शंस 2026, मजबूत पंचायत, मजबूत हिमाचल।
2: FM शिमला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। कार्यक्रम के सफर में आगे बढ़ते हुए अब आपको सुना रहे हैं समाधि फिल्म का गीत आशा भोंसले की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं और आरती बर्मन का संगीत है।

0: गांव की पहचान होती है उसकी मजबूत पंचायत से, और पंचायत मजबूत बनती है आपके एक वोट से।
1: क्योंकि ईमानदारी और बिना किसी के प्रभाव में आए दिए गए आपके वोट ही तय होते हैं गांव, और बनती है सड़क, पानी, स्वच्छता और रोजगार संबंधी नीतियाँ।
0: इसीलिए 26 मई, 28 मई और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपनी भागीदारी निभाएं।
1: अपने परिवार और गांव वालों को भी जागरूक बनाएं और 100% मतदान के संकल्प को हासिल करने का लक्ष्य बनाएं।
0: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
2: कार्यक्रम में अब आपको सुना रहे हैं ललकार फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। हसरत जयपुरी के बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है।

0: हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु वचनबद्ध है। आइए सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का संदेश।
1: नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाने का महत्वपूर्ण अवसर है। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने सुंदर पहाड़, साफ पानी और शुद्ध हवा का अनमोल उपहार दिया है। आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति की रक्षा में अपना योगदान दें। स्वस्थ पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए प्रकृति से प्रेम करें और हिमाचल को हरियाली और स्वच्छता का आदर्श बनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनहित में जारी।

0: तो आज के इस कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से फिलहाल इतना ही। सुनते रहिए FM शिमला।
1: चुनाव सिर्फ एक शब्द नहीं, ये है सच्चे लोकतंत्र की नींव, और मतदान है एक जागरूक नागरिक की पहचान, जिसे इस्तेमाल कर वो तय करते हैं अपने क्षेत्र, राज्य और देश की दशा व दिशा।
2: तो आइए अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आगामी पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर भाग लें और गांव के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।
1: आपका एक एक वोट तय करेगा पंचायत का भविष्य। तो निर्धारित तिथि को अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर सोच समझ कर और बिना किसी प्रभाव के मतदान जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी ही नहीं अधिकार है।
2: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: सिंह सुखू का संदेश।
1: नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाने का महत्वपूर्ण अवसर है। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने सुंदर पहाड़, साफ पानी और शुद्ध हवा का अनमोल उपहार दिया है। आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति की रक्षा में अपना योगदान दें। स्वस्थ पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए प्रकृति से प्रेम करें और हिमाचल को हरियाली और स्वच्छता का आदर्श बनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनहित में जारी

0: आपका गांव है आपका गर्व, इसको विकसित बनाने के लिए आइए मिलके मनाएं लोकतंत्र का पर्व।
1: हो चुकी है देवभूमि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा। ये मतदान 3 चरणों में 26, 28 और 30 मई को होगा। ऐसे में आए एक सच्चा नागरिक बनकर मिलकर निभाएं जिम्मेदारी और भारी संख्या में मतदान देकर दिखाएं अपनी भागीदारी।
0: आपका हर एक कीमती वोट आपके गांव की दशा और दिशा तय करेगा, तो अपने मताधिकार का प्रयोग करना ना भूलें। राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: FM शिमला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम पहाड़ी संगीत। कार्यक्रम के सफर को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको सुना रहे हैं राज प्रभाकर की आवाज में ये लोकगीत।

0: हमारा गांव है हमारी पहचान, हमारा गांव है हमारा अभिमान। आइए मिलकर दें इसके विकास में अपना योगदान।
1: हम सब ने ठाना है कि 100% मतदान के लक्ष्य को पाना है।
0: पंचायत चुनाव आ रहे हैं, जहां आपका हर ईमानदारी से दिया गया वोट तय करता है गांव की दशा और दिशा, साथ ही बनता है गांव के विकास का आधार।
1: तो 26, 28 और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और अपने परिवार और आस पास के हर वोटर को मतदान के लिए प्रेरित करे।
0: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।

0: हिमाचल के युवाओं, अब सिर्फ सोशल मीडिया पर ओपिनियन देने का नहीं, वोट देने का भी वक्त आ गया है।
1: इस पंचायत इलेक्शन में 50 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने मत का अधिकार इस्तेमाल करेंगे और हजारों फर्स्ट टाइम वोटर्स भी बनेंगे इस बदलाव का हिस्सा। 26 मई, 28 मई और 30 मई, याद रखिए ये तारीखें।
0: आपकी एक वोट आपके गाँव की सोच, विकास और लीडरशिप को तय करेगी। तो निकलिए घर से और बनिए जिम्मेदार नागरिक। पंचायत चुनाव 2026, वोट जरूर करें।

तो आज के इस कार्यक्रम पहाड़ी संगीत में फिलहाल इतना ही। आप सभी यूं ही सुनते रहिए FM शिमला। वन जीरो 3.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। बारह बजने को है और अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे हिंदी व अंग्रेजी में समाचार। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत SIR करवाने की शक्ति रखता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल इसलिए अमान्य नहीं किया जा सकता क्योंकि यह नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। सरकार ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस के संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इबोला के मामलों के मद्देनजर स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सूत्रों के अनुसार युगांडा से हाल ही में लौटे एक व्यक्ति को बंगलुरु के सरकारी महामारी रोग अस्पताल में जांच और चिकित्सा के लिए अलग रखा गया। जांच में उसकी रिपोर्ट नकारात्मक आई है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे घबराएं नहीं, गलत सूचना न फैलाएं और जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज टोरंटो में कनाडा में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस बातचीत के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में आए आर्थिक बदलावों पर प्रकाश डाला। उन्होंने भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के माध्यम से व्यापार, निवेश, नवाचार और लोगों के बीच आपसी सहयोग के क्षेत्रों में उभर रहे अपार अवसरों पर भी जोर दिया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट UG 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। CBI ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में

0: बढ़ते तापमान के बीच लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा कि इन मुश्किल दिनों में वे पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखें। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आज महाराष्ट्र के अमरावती, वर्धा और चंद्रपुर जिलों के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। नागपुर, गढ़चिरौली और अकोला जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस वर्ष मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने आज खजुराहो में आयोजित योग महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 25 दिन पहले आयोजित बैठक में भाग लेते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था में स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से योग का अभ्यास अनिवार्य है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में आज अपने कैबिनेट की बैठक करेंगे। पूर्व राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड सहित कैबिनेट के सभी सदस्यों के इस बैठक में शामिल होने की संभावना है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के अनुसार इस बैठक के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप और उनके शीर्ष अधिकारी विदेशी और घरेलू दोनों ही मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। ये बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब ईरान ने अमेरिका पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक का सेंसेक्स 69 अंक बढ़कर 76,079 पर था। निफ्टी 50 27 अंक की वृद्धि के साथ 1,941 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. The Supreme Court today upheld the legality of the Special Intensive Revision SIR of the electoral rolls done by the Election Commission of India and observed that electoral SIR advances the constitutional imperative of free and fair elections. The court said that the Election Commission has the power to conduct SIR under Article 324 of Representation of the People Act 1950 and the rules made thereunder. The judgment pronounced by CJI Suryakant held that when the statute itself authorizes a special revision at any time for reasons to be recorded and in such manner as the Election Commission may deem fit, the impugned exercise cannot be invalidated merely because it does not conform in every respect to the ordinary modalities contemplated for routine revision. Therefore, it cannot be said that the Commission has acted in excess of its statutory powers. The Central Bureau of Investigation, CBI, has arrested two more accused in NEET UG 2026 examination paper leak case. The agency has arrested 13 accused so far in this case from Delhi, Jaipur, Gurugram, Nasik, Pune, Latur and Ahilyanagar. An accused, namely Dr. Manoj Shirure, a Latur-based doctor, has been arrested in the NEET UG 2026 questions leak case. According to CBI, he played key role in facilitating three students, including the son of an accused coaching center owner, in getting the chemistry questions from the accused P.V. Kulkarni. Another arrested accused is Tejas Harshad Kumar Shah, who is a physics faculty at Dr. Abhang Prabhu Medical Academy, a Pune-based coaching center. He got the leaked physics questions of NEET UG 2026 exam from arrested accused Manisha Havaldar. Amid rising temperatures in different parts of the country, Prime Minister Narendra Modi has urged citizens to take as many precautions as possible. In a social media post, Mr. Modi advised all to keep themselves hydrated and carry water when stepping out of homes, stressing about increasing difficulties caused by the heat in daily life. Mr. Modi said that in such a weather, sensitivity becomes a great source of support. He further directed placing a small vessel filled with water outside homes, balconies, rooftops, shops or offices, keeping in mind the animals and birds. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal held a series of high-level meetings

0: एफएम शिमला से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। अगला गीत आपको सुनाएंगे इस कार्यक्रम में नेहा कक्कड़ की आवाज़ में दिल जंगली फिल्म से, लेकिन आइए उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: हिमाचल में फिर से सज गया है लोकतंत्र का महापर्व, पंचायत चुनाव 2026।
2: 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में होने जा रहे हैं पंचायत इलेक्शंस, जहां आपकी एक वोट तय करेगी आपके गांव का कल।
1: सड़क, पानी, सफाई, रोजगार और गांव के विकास से जुड़े फैसलों में आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है।
2: इस बार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और चुनिएगा ईमानदार, योग्य और जिम्मेदार प्रतिनिधि। हिमाचल पंचायत इलेक्शंस 2026, मजबूत पंचायत, मजबूत हिमाचल।

0: तो आज के इस कार्यक्रम
1: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। अब पेश है कार्यक्रम महिला सम्मेलन।

कार्यक्रम महिला सम्मेलन सुनने वाली सभी बहनों को स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस सफर में मैं हूँ आपके साथ नीना, आप सभी को मेरा नमस्कार। मधुर शब्द से बोल हों उत्तम हो व्यवहार, मधुर शब्द से बोल हों उत्तम हो व्यवहार, वह प्राणी बिन युद्ध ही जीते यह संसार। जी बहनों, किसी ने क्या खूब कहा है कि मीठी वाणी बोलकर हम बिना किसी वाद विवाद के या झगड़े के ही विजय हासिल कर सकते हैं, क्योंकि बहनों मीठी भाषा में बात करना ही एक समझदार इंसान की पहचान होती है। तो चलिए आज बहनों से इसी विषय पर बात करते हैं कि आपकी वाणी ही आपका व्यक्तित्व है, क्योंकि बहनों जीवन में एक व्यक्ति की पहचान उसकी बोली से ही होती है। उसकी वाणी ही उसके व्यवहार और शिक्षा के बारे में बता देती है। इसीलिए हमें बोलने से पहले सोच लेना चाहिए कि हमारे द्वारा बोले गए शब्द किसी को ठेस ना पहुंचाए, क्योंकि शारीरिक चोट तो बहनों कुछ दिनों में भर जाती है, लेकिन बुरे शब्द से लगी चोट आजीवन भर वैसी की वैसी ही बनी रहती है। तो इसीलिए हमें अपनी वाणी में मधुरता और पूरा नियंत्रण रखने की कोशिश करनी चाहिए। और जो बहनों मधुर भाषा में बोलना सीख जाता है वो समाज में सम्मान उसे मिलता है। तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम सबके साथ प्रिय बोलें, और प्रिय ऐसा बोलें कि जो हमें खुद को भी अच्छा लगे, ऐसे शब्द हमें बोलने चाहिए। और इसके साथ साथ हमें ये ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है बहनों कि ज़रूरत से ज़्यादा बात ना करें, जितना ज़रूरी हो उतना ही बोलें, क्योंकि बेकार की बातें सुनना भी कोई पसंद नहीं करता है। क्योंकि बहनों देखिए, जो व्यर्थ बोलने की अपेक्षा हमें चुप रहना ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। जो बेमतलब की

बातें करते हैं उन्हें भी लोग पसंद नहीं करते हैं। तो इसलिए बहनों, जो इंसान का व्यवहार कैसा है घर परिवार और समाज में, उसकी स्थिति कैसी है, ये सब बहुत हद तक हमारी वाणी पर ही निर्भर करता है। सामने वाले से बात करते समय हमें किन शब्दों का प्रयोग और किस लहजे से बात करते हैं, ये सब ही हमें समाज में मान सम्मान प्रदान करवाता है। तो बहनों, अगर हम बात करते समय कुछ एक बातों का ध्यान रखें तो सामने वाले के साथ अपनी वाणी के जरिए एक अच्छा रिश्ता हम कायम कर सकते हैं। इसीलिए हमें अपनी वाणी को तराशते रहना चाहिए और हर शब्द में मिठास और शालीनता का रंग भरकर दूसरों के बीच रखना चाहिए, क्योंकि आपकी वाणी ही ऐसी होनी चाहिए कि जो भी आपकी बात सुने या जो भी आपसे बात करे वो सब कहे कि क्या बात है, बोलने का ढंग कितना अच्छा है, इनका व्यवहार कैसा है। क्योंकि कहा भी गया है बहनों कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। यानी कि मनुष्य को ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे मन में जो राग द्वेष भरे हैं वो मिट जाएं और दूसरों को शालीनता प्रदान करें। और वास्तव में बहनों, वाणी को संयम में रखने वाला व्यक्ति ही जो है वो शिखर पर पहुंचता है। ऐसे व्यक्तित्व सदैव अनुकरणीय और प्रेरणादायक होते हैं। और बहनों, हम ये भी जानते हैं कि हमारी प्रिय बोली हमारी तमाम उलझनों को सुलझा भी सकती है, और इसके विपरीत अगर हम कठोर शब्दों का, कठोर भाषा का प्रयोग करते हैं तो हमारी जो समस्याएं हैं वो और अधिक गहरी भी हो सकती हैं। तो इसीलिए हमें सदैव मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए, और इससे जो हमारे शुभ चिंतक हैं उनका दायरा बढ़ता है और हमारे जो मित्र रिश्तेदार हैं उनके बीच में हमारा मान सम्मान बढ़ता है। तो बहनों, वाणी की शालीनता और शीतलता मनुष्य के व्यक्तित्व का आकर्षण बढ़ाती है और ये हमारे बिगड़े काम भी बना देती है और सफलता के द्वार भी खोल देती है। क्योंकि वाणी व्यक्ति का आभूषण है, वाणी से ही व्यक्ति छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कार्य बहुत आसानी से करवा सकते हैं, और वे केवल वाणी के माधुर्य से ही अपना कोई भी मुश्किल काम निकलवा सकते हैं। तो मधुर वाणी का बहनों सबसे बड़ा उदाहरण कोयल और कौवा है। दोनों का रंग काला होते हुए भी मधुर वाणी की वजह से कोयल को सभी प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं और शुभ मानते हैं, जबकि कौवे की कर्कश वाणी के कारण उसे अशुभ मानते हैं। तो बहनों, मधुर वाणी मनुष्य के सौंदर्य में चार चांद लगा देती है, क्योंकि इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही उसके नाम से होती हो लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान उसकी वाणी, विचार और कार्य से होती है। शब्द सहारे बोलिए शब्द के हाथ ना पाओ, शब्द सहारे बोलिए शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषधि करे एक शब्द करे घाव। तो चलिए बहनों, अब सुन लेते हैं एक गीत।

बहनों, हमारा जीवन हमें ईश्वर द्वारा दिया गया एक अनमोल उपहार है। अगर हम अपने जीवन को परेशान होकर व्यतीत करते हैं तो हम इस अनमोल उपहार की अवहेलना करते हैं। इसीलिए जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो और हमें चाहे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े, हमें हमेशा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि बहनों, देखिए, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते जाते रहते हैं, धूप के बाद छांव और दुख के बाद सुख, यही जीवन का सार है। ये बात तो हम सभी अच्छी तरह से जानते ही हैं कि जीवन में कोई भी चीज़ हमेशा एक समान नहीं रहती है, वक्त के साथ सब कुछ बदलता है। किसी भी परिस्थिति में हमें धैर्य नहीं खोना है, क्योंकि अगर आज आपके पास दुखों का पहाड़ है, टूटा है आपके ऊपर, तो भी वक्त चला जाएगा। और अगर आज आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ही खुश हैं तो ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो इसीलिए बहनों, हमेशा खुद को एक समान रखने की कोशिश करें, ज़िंदगी में कभी हार ना माने, बस

आगे बढ़ने की कोशिश करते रहें और अडिग होकर जीवन की राह में कदम बढ़ाते रहें। क्योंकि बहनों देखिए, ज़िंदगी में किसी भी मंजिल या मुकाम को पाने के लिए सबसे ज़रूरी है आपकी मेहनत और आपका धैर्य। क्योंकि अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हुए और कभी भी धैर्य ना खोते हुए अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत या कोई भी अड़चन आपको सफल होने से नहीं रोक सकती है। तो बहनों, इस दुनिया में मौजूद क्योंकि हर किसी इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ दुख तो ज़रूर हैं। हमारे आसपास जितने भी चेहरे हमें नज़र आते हैं, उन सभी को कुछ ना कुछ तकलीफ़ या परेशानी ज़रूर होगी। लेकिन यानी कि वह हर इंसान जो है किसी न किसी परेशानी से आज के समय में जरूर जो है वो जूझ रहा है। लेकिन बहनों, असल मायने में वही अपनी ज़िंदगी जीना जानता है जो दुख को नज़रअंदाज करके सदैव जीवन में आगे बढ़ने का हुनर रखता हो, और वो कभी भी अपने दुख का रोना जो है किसी के पास भी नहीं रोता। कभी कभार अगर तकलीफ़ होने पर कदम आपके कुछ डगमगा भी जाते हैं, तो भी आपको कभी भी अपने कदम रुकने नहीं देने हैं। क्योंकि बहनों, हालात चाहे कैसे भी हों, वक्त के साथ चलते रहना ही ज़िंदगी है। तो क्योंकि जीवन के सफ़र में चाहे कितने भी कांटे हो, ये हम सभी जानते हैं, या फिर कितने ही फूल हों, सबको पार करते हुए हमें आगे बढ़ते रहना है। और ये जो जीवन के कांटे हैं या फूल हैं, अड़चन हैं, या जो भी हमारी जीवन में कठिन विपरीत परिस्थितियां हैं, ये एक समान या एक हमेशा नहीं रहती है, ये समय के साथ निकल जाती है। तो हमें इसी बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते रहना है और अपने जीवन को अच्छे से जीते रहना है। अगर आज घनघोर अंधेरा है, तो जल्द ही बहनों सुबह भी होने वाली है, और फिर वो दिन दूर नहीं होता जब आपके रास्ते में आपको फूल बिखरे मिलेंगे। पर इन सब चीज़ों के पीछे, सब बातों के पीछे शर्त यही है कि रुकना नहीं है, हार नहीं माननी है, धीरे धीरे ही सही लेकिन समय के साथ साथ आगे बढ़ते रहना है। और क्योंकि मंजिल पाने के लिए आपको चलते रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रुक गए, तो आपकी जो सफलता है वो कहीं ना कहीं आप उसमें चूक कर जाओगे, और अगर आप चलते चलते एक दिन आप अपनी मंजिल को ज़रूर पा लेंगे। तो अपनी मेहनत पर भरोसा करते हुए जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना है, और बहनों हमेशा खुद को एक समान रखने की कोशिश भी करनी चाहिए। चाहे ज़िंदगी में कभी हार ना माने, हार अगर असफल आप हो भी जाते हैं, तब भी उसको आप अपने जीवन की आखिरी सीढ़ी ना माने। आप बस आगे बढ़ते रहने की कोशिश करते रहें, अडिग होकर जीवन की राह में कदम बढ़ाते रहें। क्योंकि बहनों, ज़िंदगी में किसी भी मंजिल या मुकाम को पाने के लिए ज़रूरी है आपकी मेहनत। तो आपकी मेहनत पर भरोसा, अपनी मेहनत पर भरोसा करते हुए जीवन में आगे बढ़ते रहना ही किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने का मूल मंत्र है। तो इसीलिए बहनों, हमें हर स्थिति में अपना काम करते हुए आगे बढ़ते जाना है। और कहते भी है ना कि कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, और मेहनत पे मेहनत करते जाओ तो तकदीर बन जाती है। यही जो मेहनत की सफलता की कुंजी यही है कि हमें हार नहीं माननी है और आगे बढ़ते रहना है, अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा करते हुए आगे चलते ही जाना है, तो एक दिन हम अपनी मंजिल को ज़रूर पा लेंगे। तो बहनों, ये तो हुई बातचीत, अब सुन लेते हैं गीत।

बहनों, गर्मी का मौसम आते ही तेज़ धूप, गर्म हवाएं और बढ़ता तापमान लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। इस मौसम में यदि सही तरीके से अपना ध्यान ना रखा जाए तो शरीर में

पानी की कमी, थकान, चक्कर आना और लू लगना जैसी कई प्रकार की जो बीमारियां हैं वो हो सकती हैं। तो इसीलिए गर्मियों में कुछ अगर विशेष सावधानी हम रखते हैं तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना कि तो मौसम में स्वस्थ और खुश हम रह सकते हैं। इसीलिए पहले हमें अपने शरीर को जो सबसे पहले है वो पानी की कमी नहीं होने देनी है, पानी की कमी से बचाना है। गर्मियों में अधिक पसीना आता है तो इस वजह से बहनों शरीर में पानी की कमी हो जाती है। इसीलिए दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। केवल पानी ही नहीं बल्कि नींबू पानी, नारियल पानी, छाछ, लस्सी और फलों का रस भी हमें जरूर लेना चाहिए। ये पेय पदार्थ जो है हमारे शरीर को ठंडक प्रदान करते हैं। तो इसीलिए बहनों हमें हमेशा जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं तो अपने साथ पानी की बोतल ले जाना ना भूलें। और इस तरह अगर हम अपना ध्यान रखते हैं तो हम पूरा दिन स्वस्थ रहते हैं, ऊर्जावान बने रहते हैं। और साथ ही गर्मी के मौसम में खान पान का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमें हल्का और पौष्टिक भोजन करना चाहिए और अधिक जो तेल वाला या मसाले वाले भोजन होते हैं उससे हमें बचना चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके साथ अगर हम ताजे फल, हरी पत्तेदार सब्जियां लेते हैं तो इससे भी हम काफ़ी हद तक स्वस्थ रहते हैं। और जो गर्मी का मौसम है इसमें जो भी मौसमी फल होते हैं जैसे तरबूज है, खरबूजा है, खीरा है, ककड़ी है, जैसे जो फल है वो शरीर को ठंडा रखते हैं और हमें ऊर्जा भी देते हैं। और बहनों हमें जो है इस मौसम में बासी भोजन खाने से बचना चाहिए, क्योंकि गर्मियों में जो है बासी भोजन जल्दी खराब हो जाता है और हमारे शरीर को ये नुकसान कर सकता है। तो इसलिए हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि हम बासा भोजन खाने से बचें। और साथ ही धूप से बचाव के लिए जरूरी है कि आप दोपहर के समय तेज़ धूप में घर से बाहर ना निकलें। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो आप घर पर ही रहें, और अगर आपको जाना आवश्यक हो तो अपने साथ छाता और अपनी टोपी को लेकर ज़रूर निकलें। और इसके साथ आपको हल्के रंग के और सूती कपड़ों को पहनना चाहिए, क्योंकि बहनों ये हमारे शरीर को ठंडक देते हैं। और इस मौसम में बच्चों और बुजुर्गों का ध्यान रखना विशेष रूप से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन पर गर्मी का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। तो गर्मी के मौसम में हम साफ़ सफाई का ध्यान भी रखना बहुत ज़रूरी है। हमारे घर के आसपास हमें सफाई रखनी चाहिए, क्योंकि घर के आसपास सफाई रखने से हमें जो है हम बीमारियों से बच सकते हैं। और जो खुले में रखी हुई चीज़ें हैं उसको खाने से भी हमें बचना है। तो बहनों अगर हम ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए हम बिल्कुल खुश रह सकते हैं। और साथ ही साथ बहनों देखिए दिन के समय में जो है आराम करना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अधिक मेहनत और धूप में लगातार काम करने से शरीर थक जाता है और फिर शरीर में कमजोरी आ सकती है। तो इसीलिए समय समय पर आराम भी करें और पूरी नींद भी लें। योग और हल्का व्यायाम भी शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए हमें अपने जीवन को खुशी खुशी आगे जीना चाहिए। तो बहनों हम यही कह सकते हैं कि गर्मी का मौसम कठिन तो अवश्य होता है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी और सही आदतों से हम इस मौसम में भी स्वस्थ रह सकते हैं। इसके लिए बस हमें पानी अधिक पीना है, पौष्टिक भोजन करना है और धूप से बचना है और साफ सफाई का ध्यान रखना है। यदि हम अपने स्वास्थ्य का सही तरीके से ध्यान रखें तो गर्मी का मौसम भी आनंददायक बन सकता है। तो बहनों बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन बीच में सुन लेते हैं ये गीत।

तो बहनों, अब चलते चलते आपसे बात करते हैं कि त्वचा से संबंधित होने वाली समस्याओं से निजात पाने के लिए कुछ घरेलू उपाय के बारे में। बहनों, आजकल जो है गर्मियों का मौसम है, आजकल के मौसम में बाहर निकलने पर कई तरह से जो है धूप से त्वचा प्रभावित हो जाती है, तो इससे बचने के लिए हम अपनी बहनों को कुछ घरेलू उपाय बता रहे हैं। जैसे बहनों, सनबर्न होने पर एलोवेरा का आप रस लगा सकती हैं, इससे भी आपकी त्वचा को ठंडक मिलेगी। और अगर धूप में निकलते समय आपको आपकी त्वचा में आपको जलन महसूस हो रही है, तो आप बर्फ़ का टुकड़ा लेकर भी अपनी प्रभावित स्थान पर उसको धीरे धीरे मल सकती हैं, इससे भी आपको जो है ठंडक मिलेगी और आपकी जो सनबर्न की समस्या है उससे आपको कुछ हद तक राहत मिलेगी। और साथ ही बहनों, टमाटर का टुकड़ा लेकर प्रभावित स्थान पर लगाएं, इस और कुछ देर के बाद इसे आप धो लें, तो इससे भी आहिस्ता आहिस्ता आपको समस्या से, त्वचा में जो आपकी सनबर्न की समस्या है उससे निजात मिलेगी। और इसके साथ ही सनबर्न से राहत पाने के लिए समान मात्रा में जो है दही और हल्दी का पेस्ट आपको बनाना है, और जहाँ भी आपको सनबर्न की समस्या है, जो भी प्रभावित स्थान है, उस पर कुछ देर के लिए आप इसे लगा लें और कुछ देर के बाद इसे ठंडे पानी से आप धो लें। और साथ ही चंदन का लेप लगाने से भी आपको सनबर्न से राहत मिलेगी। और यदि आपका जो सनबर्न है वो हल्का है, तो आप ऑलिव ऑयल में कॉटन को भिगोकर भी उस स्थान पर लगा सकती हैं जहां आपको गर्मी से जलन हो रही है, तो इससे भी आपको राहत मिलेगी। और साथ ही बहनों, मिलाई में नरम कपड़ा भिगोकर प्रभावित स्थान पर थोड़ी देर तक आप रखें, और कुछ दिन आप ऐसा करेंगी तो आपको इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। तो बहनों, ये तो हुए कुछ घरेलू टिप्स, तो चलिए अब सुन लेते हैं चलते चलते एक और गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे महिला सम्मेलन कार्यक्रम मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे, कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत SIR करवाने की शक्ति रखता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल इसलिए अमान्य नहीं किया जा सकता कि यह नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि ट्रांसजेंडर के अधिकारों के संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ उच्च न्यायालयों में उसकी कई याचिकाएं लंबित हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि स्थानांतरित की जाने वाली याचिकाओं को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को आज आंशिक राहत देते हुए पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उसकी सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने आसाराम को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। वो फिलहाल अस्थायी जमानत पर है जिसे सप्ताह की शुरुआत में 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट UG 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। CBI ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सरकार ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस के संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इबोला के मामलों के मद्देनजर स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सूत्रों के अनुसार युगांडा से हाल ही में लौटे एक व्यक्ति को बंगलुरु के सरकारी महामारी रोग अस्पताल में जांच और चिकित्सा के लिए अलग रखा गया। जांच में उसकी रिपोर्ट नकारात्मक आई है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे घबराएं नहीं, गलत सूचना न फैलाएं और जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा के अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और

0: गांव की पहचान होती है उसकी मजबूत पंचायत से, और पंचायत मजबूत बनती है आपके एक वोट से।
1: क्योंकि ईमानदारी और बिना किसी के प्रभाव में आए दिए गए आपके वोट ही तय होते हैं गांव, और बनती है सड़क, पानी, स्वच्छता और रोजगार संबंधी नीतियाँ।
0: इसीलिए 26 मई, 28 मई और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपनी भागीदारी निभाएं।
1: अपने परिवार और गांव वालों को भी जागरूक बनाएं और 100% मतदान के संकल्प को हासिल करने का लक्ष्य बनाएं।
0: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।

0: गांव की पहचान होती है उसकी मजबूत पंचायत से, और पंचायत मजबूत बनती है आपके एक वोट से।
1: क्योंकि ईमानदारी और बिना किसी के प्रभाव में आए दिए गए आपके वोट ही तय होते हैं गांव और बनती है सड़क, पानी, स्वच्छता और रोजगार संबंधी नीतियाँ।
0: इसीलिए 26 मई, 28 मई और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपनी भागीदारी निभाएं।
1: अपने परिवार और गांव वालों को भी जागरूक बनाए और 100% मतदान के संकल्प को हासिल करने का लक्ष्य बनाए।
0: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
2: एफएम शिमला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम म्यूजिक मस्ती। कार्यक्रम में अब आपको सुना रहे हैं 1-2 का 4 यस फिल्म से ये गीत लता मंगेशकर और सोनू निगम की आवाजों में।

0: हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु वचनबद्ध है। आइए सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का संदेश।
1: नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाने का महत्वपूर्ण अवसर है। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने सुंदर पहाड़, साफ पानी और शुद्ध हवा का अनमोल उपहार दिया है। आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति की रक्षा में अपना योगदान दें। स्वस्थ पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए प्रकृति से प्रेम करें और हिमाचल को हरियाली और स्वच्छता का आदर्श बनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनहित में जारी

0: चुनाव सिर्फ एक शब्द नहीं, ये है सच्चे लोकतंत्र की नींव, और मतदान है एक जागरूक नागरिक की पहचान, जिसे इस्तेमाल कर वो तय करते हैं अपने क्षेत्र, राज्य और देश की दशा व दिशा।
1: तो आइए अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आगामी पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर भाग लें और गांव के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।
0: आपका एक एक वोट तय करेगा पंचायत का भविष्य। तो निर्धारित तिथि को अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर सोच समझ कर और बिना किसी प्रभाव के मतदान जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी ही नहीं।

0: आपका गांव है आपका गर्व, इसको विकसित बनाने के लिए आइए मिलके मनाएं लोकतंत्र का पर्व।
1: हो चुकी है देवभूमि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा। ये मतदान 3 चरणों में 26, 28 और 30 मई को होगा। ऐसे में आए एक सच्चा नागरिक बनकर मिलकर निभाएं जिम्मेदारी और भारी संख्या में मतदान देकर दिखाएं अपनी भागीदारी।
0: आपका हर एक कीमती वोट आपके गांव की दशा और दिशा तय करेगा, तो अपने मताधिकार का प्रयोग करना ना भूलें। राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: हमारा गांव है हमारी पहचान, हमारा गांव है हमारा अभिमान। आइए मिलकर दें इसके विकास में अपना योगदान।
1: हम सब ने ठाना है कि 100% मतदान के लक्ष्य को पाना है।
0: पंचायत चुनाव आ रहे हैं, जहां आपका हर ईमानदारी से दिया गया वोट तय करता है गांव की दशा और दिशा, साथ ही बनता है गांव के विकास का आधार।
1: तो 26, 28 और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और अपने परिवार और आस पास के हर वोटर को मतदान के लिए प्रेरित करे।
0: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।

0: हिमाचल के युवाओं, अब सिर्फ सोशल मीडिया पर ओपिनियन देने का नहीं, वोट देने का भी वक्त आ गया है।
1: इस पंचायत इलेक्शन में 50 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने मत का अधिकार इस्तेमाल करेंगे और हजारों फर्स्ट टाइम वोटर्स भी बनेंगे इस बदलाव का हिस्सा। 26 मई, 28 मई और 30 मई, याद रखिए ये तारीखें।
0: आपकी एक वोट आपके गाँव की सोच, विकास और लीडरशिप को तय करेगी। तो निकलिए घर से और बनिए जिम्मेदार नागरिक। पंचायत चुनाव 2026, वोट जरूर करें।
2: कार्यक्रम का आखिरी गीत आपको सुना रहे हैं आशा भोसले, कुमार सानू और सोनू निगम की आवाजों में। फिल्म है प्यार तूने क्या किया।

आशा भोंसले, सुखविंदर सिंह और सोनू निगम के गाए हुए इस गीत के साथ अब आज का कार्यक्रम म्यूजिक मस्ती यहीं समाप्त होता है। आप सुनते रहिए FM शिमला। दोपहर के 2 बज चुके हैं और अब समय हो गया है कार्यक्रम सब रंग का। इस कार्यक्रम में आपको हम सुनाते हैं कुछ गैर फिल्मी नगमे। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं सोनू निगम के गाए हुए इस गीत के साथ।

0: हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु वचनबद्ध है। आइए सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का संदेश।
1: नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाने का महत्वपूर्ण अवसर है। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने सुंदर पहाड़, साफ पानी और शुद्ध हवा का अनमोल उपहार दिया है। आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति की रक्षा में अपना योगदान दें। स्वस्थ पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए प्रकृति से प्रेम करें और हिमाचल को हरियाली और स्वच्छता का आदर्श बनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनहित में जारी।

103.7 MHz पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। 2:15 होने को हैं, लिए चलते हैं आपको आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे दोपहर समाचार। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के चुनाव आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा, यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। मौसम विभाग ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। उन्होंने इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध का हवाला दिया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला होगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया का उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लक्ष्य को हासिल करना है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के विपरीत थी। न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि इस प्रक्रिया से मतदाता सूचियों में पहले से मौजूद व्यक्तियों की नागरिकता की अनुमानित मान्यता समाप्त हो जाती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी BLO 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे।
2: कमीशन की तरफ से दिल्ली में SIR टाइम शेड्यूल लॉन्च हो चुका है जो कि 20 जून से शुरू होगा और 7 अक्टूबर को हमारा फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा। तो इसमें जो हाउस टू हाउस विजिट है BLOs की वो हमारी 30 जून से शुरू होगी और 29 जून

0: तक चलेगी। इस हाउस टू हाउस शेड्यूल में BLO हर इलेक्टर के यहाँ जाएंगे, जो भी उनका एड्रेस इलेक्टोरल रोल में है, और दो फॉर्म लेके जाएंगे इनुमरेशन फॉर्म। एक फॉर्म में इलेक्टर ने अपनी डिटेल भरनी है और अपने पास रखना है, दूसरा फॉर्म भर के BLO को दे देना है, और दोनों फॉर्म पे BLO काउंटर साइन करेंगे एक्नोलेजमेंट के लिए।
1: दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि मतदाताओं को भरे हुए जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की सुविधा भी मिलेगी। श्री कुमार ने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच पड़ताल की व्यवस्था है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: SIR का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से न छूटे और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो। मतदाताओं की भागीदारी को सुगम बनाने के लिए जागरूकता अभियान और विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे, ताकि मतदाताओं को जनगणना प्रपत्र जमा करने में सहायता मिल सके। आम जनता की सुविधा के लिए दिल्ली में वर्ष 2002 में हुए अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इस प्रक्रिया में 1 अक्टूबर तक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच की व्यवस्था रहेगी और राजनीतिक दलों को बूथ स्तर के एजेंटों के माध्यम से इसमें शामिल किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि ट्रांसजेंडर के अधिकारों के संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ उच्च न्यायालयों में उसकी कई याचिकाएं लंबित हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि स्थानांतरित की जाने वाली याचिकाओं को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को आज आंशिक राहत देते हुए पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उसकी सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने आसाराम को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। वो फिलहाल अस्थायी जमानत पर है, जिसे सप्ताह की शुरुआत में 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लोगों से कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। उन्होंने सुझाव दिया कि जो भी प्यासा हो उसे एक ग्लास पानी जरूर पिलाएं। प्रधानमंत्री ने सभी से ये भी कहा कि वे अपने परिवार और प्रियजनों के संपर्क में रहें और उनका हालचाल पूछते रहें। दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचें और जितना हो सके आराम करें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से इन मुश्किल दिनों में पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखने का अनुरोध किया। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कुछ स्थानों और दिल्ली में भीषण लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कोंकण और गोवा, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कारिकाल में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच आज राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। एक रिपोर्ट।
3: झुलसाने वाली गर्मी से प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा प्रभावित है। जयपुर, कोटा, जोधपुर, नागौर, बीकानेर और दौसा सहित कई शहरों में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा गया। करीब 33 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ कोटा की रात सबसे गर्म रही। भीषण गर्मी और लू को देखते हुए प्रशासन की ओर से सड़कों पर पानी का छिड़काव करने, आश्रय स्थल बनाने और पीने के पानी की व्यवस्था लगातार की जा रही है। चिकित्सा संस्थानों में भी लू और तापघात के मरीजों के लिए बेड आरक्षित करने के साथ आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गंगटोक में होने वाले सिक्किम विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश

0: माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग भी इस समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नीट प्रश्न लीक मामले में लातूर के रहने वाले डॉक्टर मनोज शिरोडे को भी गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई के अनुसार उन्होंने एक कोचिंग केंद्र के मालिक के बेटे सहित 3 छात्रों को आरोपी पीवी कुलकर्णी से रसायन विज्ञान के प्रश्न दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। गिरफ्तार किया गया दूसरा आरोपी तेजस हर्षद कुमार शाह है, जो पुणे स्थित एक कोचिंग सेंटर डॉक्टर अभंग प्रभु मेडिकल एकेडमी में फिजिक्स का फैकल्टी है। उसे नीट परीक्षा के लीक हुए भौतिक विज्ञान के प्रश्न के आरोपी मनीषा हवलदार से मिले थे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने केरला में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर जांच शुरू कर दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज सुबह से तिरुवनंतपुरम में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर निरीक्षण शुरू कर दिया है। केरलम में 10 से अधिक जगहों पर तलाशी और निरीक्षण की कार्रवाई चल रही है। हालांकि ईडी की ओर से अब तक इन कार्रवाइयों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। इस बीच केरलम हाईकोर्ट ने कल प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। यह याचिका केरलम के कोच्चि स्थित एक निजी कंपनी के अधिकारियों द्वारा दायर की गई थी। ईडी की जांच उस निजी कंपनी के परिसरों में भी जारी है। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पुलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यान्वित क्षेत्रों में निवेश तथा तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस यात्रा के दौरान श्री गोयल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक $50 अरब तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत कनाडा व्यापार को मजबूत करने में कनाडा में रह रहे भारतीय प्रवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।
2: भारत और कनाडा के बीच साझेदारी की सबसे बड़ी ताकत उनकी मजबूत लोकतांत्रिक नींव है। दोनों देश इस बात पर विश्वास करते हैं कि जब सशक्त संस्थाएं कानून के शासन को मजबूती से कायम रखती है, तब दुनिया के सामने यह एक उदाहरण बनता है कि अच्छे मित्र और भरोसेमंद साझेदार किस तरह साथ मिलकर काम करते हैं। दोनों देशों की सरकारों, संस्थाओं, व्यवसायों और आम लोगों के बीच जो आपसी विश्वास और सहयोग है, वही इस रिश्ते को और अधिक मजबूत बनाता है।
0: संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। श्री हरीश ने कहा कि पाकिस्तान को यह स्वीकार करना होगा कि सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करने के परिणाम उसे भुगतने होंगे।
3: पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध, बिना उकसावे की आक्रामक कार्रवाइयों और लगातार सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देकर संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। हजार घाव देकर भारत को कमजोर करने की उसकी नीति आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता और भारत विरोधी गतिविधियों को लगातार बढ़ावा देने की उसकी सोच को दर्शाती है।
4: Anti-India rhetoric has continued unabated since its creation.
0: पाकिस्तान का अब्राहम समझौते में शामिल होने से इनकार करने की रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कड़ी आलोचना की है। रिपब्लिकन सेनेटर ग्राहम ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान से संबंधित किसी भी कूटनीति में पाकिस्तान की भूमिका अनुचित है। आईपीएल क्रिकेट में आज मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से खेलेगी। फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

0: सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा, ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। मौसम विभाग ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: वन जीरो थ्री पॉइंट सेवन मेगाहर्ट्स पर आप सभी सुन रहे हैं एफएम शिमला। 2:30 हुए हैं और अब समय हो गया है कार्यक्रम शिखरों के स्वर का। कार्यक्रम में हम आपको सुनाते हैं हिमाचली लोकगीत। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं यशोदा देवी के गाए हुए इस लोकगीत के साथ।

0: हिमाचल में फिर से सज गया है लोकतंत्र का महापर्व, पंचायत चुनाव 2026।
1: 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में होने जा रहे हैं पंचायत इलेक्शंस, जहां आपकी एक वोट तय करेगी आपके गांव का कल।
0: सड़क, पानी, सफाई, रोजगार और गांव के विकास से जुड़े फैसलों में आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है।
1: इस बार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और चुनिएगा ईमानदार, योग्य और जिम्मेदार प्रतिनिधि। हिमाचल पंचायत इलेक्शंस 2026, मजबूत पंचायत, मजबूत हिमाचल।

0: गांव की पहचान होती है उसकी मजबूत पंचायत से, और पंचायत मजबूत बनती है आपके एक वोट से।
1: क्योंकि ईमानदारी और बिना किसी के प्रभाव में आए दिए गए आपके वोट ही तय होते हैं गांव और बनती है सड़क, पानी, स्वच्छता और रोजगार संबंधी नीतियाँ।
0: इसीलिए 26 मई, 28 मई और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपनी भागीदारी निभाएं।
1: अपने परिवार और गांव वालों को भी जागरूक बनाएं और 100% मतदान के संकल्प को हासिल करने का लक्ष्य बनाएं।
0: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
2: FM शिमला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम शिखरों की स्वर। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए अब आपको सुना रहे हैं विपिन कुमार की आवाज में ये लोकगीत।

0: तो आज के इस कार्यक्रम शिखरों के स्वर में फिलहाल इतना ही। आप सभी यूं ही सुनते रहिए FM शिमला। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।
1: ये आकाशवाणी शिमला है। अब प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला, DTS

0: अलावा और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुना जा सकता है।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि भविष्य में बादल फटने की घटनाएं केवल हिमाचल तक सीमित नहीं रहेंगी और उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्य में इन घटनाओं के बढ़ने की संभावना है। उन्होंने कहा कि ये खुलासा केंद्र सरकार द्वारा करवाए गए एक अध्ययन में हुआ है। मुख्यमंत्री शिमला में नगर निगम के पूर्व उपमहापौर टिकेंद्र पंवर द्वारा संपादित पुस्तक सिटी लिमिट्स द क्राइसिस ऑफ अर्बनाइजेशन के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रकृति ने हिमाचल को स्वच्छ आबोहवा और पानी का उपहार दिया है और इन संसाधनों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए विकास को आगे बढ़ा रही है।
2: हमारे पास भगवान ने सब चीजें दी, प्राकृतिक सौंदर्य दिया है, पानी दिया है, हवा दी। हमारी 90% लैंड पहाड़ों से गिरी है, 90% हमारी पॉपुलेशन गांव में है, अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा हो और 2040 तक हिमाचल प्रदेश की 50% पॉपुलेशन अर्बनाइजेशन में रहनी शुरू कर। अब एक जो हमारी अर्बन है, अब सिटी बिगड़ चुकी है और जो सिटी बनाने जा रहे हैं उसको हमने कैसे सोचा? एक तो बिगड़ी सिटी जिसको आपने और हमने पूर्वजों ने बना दिया।
1: झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान ने इस मौके पर कहा कि लोगों को अपने आचरण में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पर्यटकों के लिए जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के साथ साथ लोगों को अपनी सामूहिक जिम्मेदारी को समझना चाहिए। राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार ने आज भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल से समीरपुर स्थित उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने इस मौके पर प्रोफेसर धूमल को मोदी युग में भारत का सशक्तिकरण नामक पुस्तक भी भेंट की। सिकंदर कुमार ने इस मौके पर कहा कि प्रोफेसर धूमल का राजनीतिक जीवन संगठन, सुशासन और जनसेवा का प्रेरणादायक उदाहरण रहा है। सिकंदर कुमार ने कहा कि प्रदेश के विकास, भाजपा संगठन के विस्तार और आम जन के हितों की रक्षा में प्रोफेसर धूमल का योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। इस मौके पर संग्रह पंचायत के नव निर्वाचित प्रतिनिधियों ने भी प्रोफेसर धूमल से शिष्टाचार भेंट की। प्रदेश में कल 28 मई को पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे शुरू होगा और दोपहर बाद 3 बजे तक चलेगा। मतदान के तुरंत बाद पंचायतों में प्रधान, उप प्रधान और सरपंचों के लिए पड़े वोटों की गिनती होगी, जबकि जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए हुए मतदान की गिनती 31 मई को होगी। 31 मई को ही प्रदेश के 4 नगर निगमों सोलन, मंडी, पालमपुर और धर्मशाला के लिए हुए चुनाव की मतगणना भी होगी। पंचायती राज संस्थाओं के दूसरे चरण के चुनाव के लिए कल 1274 पंचायतों में वोट डाले जाएंगे। राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के तीसरे और आखिरी चरण में 30 मई को 1187 पंचायतों में मतदान होगा। इस बीच कल होने वाले दूसरे चरण के चुनाव के लिए आज उम्मीदवारों ने भीषण गर्मी के बावजूद राज्य के विभिन्न हिस्सों में घर घर जाकर वोट मांगे और अपनी जीत पक्की करने का प्रयास किया। इससे पूर्व बीते रोज हुए पहले चरण के चुनाव में 78% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी के चलते राज्य में वनों में आग की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। राजधानी शिमला के आसपास वनों में आग की लगभग आधा दर्जन घटनाएं हुई हैं, जबकि सोलन जिला में भी कई स्थानों पर जंगलों में आग लगी हुई है। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कसौली के साथ लगते मनोन गांव, गिलबर्ट ट्रेल और अपर मॉल क्षेत्र में जंगलों में लगी आग को सेना, वायुसेना और कसौली व चंडीगढ़ प्रशासन के संयुक्त प्रयासों से काबू कर लिया गया। इस दौरान भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने चंडीगढ़ के सुखना लेक से लाए गए पानी से इस आग को काबू किया। इस दौरान पश्चिमी कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह ने जंगल की आग से प्रभावित क्षेत्र का दौरा भी किया। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। खासकर राज्य के मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सिरमौर, सोलन और मंडी जिलों में लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। ऊना जिला में तापमान के लगभग 44 डिग्री पहुंच जाने के चलते

0: छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है और भीषण गर्मी से बचने के लिए एहतियाती उपाय करने को कहा गया है। अत्यधिक गर्मी के कारण राज्य के मैदानी क्षेत्रों में बाजारों से रौनक गायब हो गई है। हालांकि शिमला, मनाली और डलहौजी जैसे शहरों में गर्मी से बचने के लिए पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार के बाद अब पेश है सामयिक चर्चा। विषय हैं ग्रामीण भारत में जल शासन। वाचक स्वर प्रभा शर्मा।
0: जल पर्यावरणीय समन्वयता और मानव कल्याण का एक मौलिक आधार है। विभिन्न क्षेत्रों में विकास की गति बरकरार रखने के लिए जल संसाधनों की उपलब्धता, वितरण और प्रबंधन महत्वपूर्ण है। केंद्रीय जल आयोग के अंतरिक्ष आदानों के उपयोग से भारत में पानी की उपलब्धता का पुनर्आकलन 2019 शीर्षक अध्ययन के अनुसार देश में औसतन सालाना लगभग 3,880 अरब घन मीटर वर्षा होती है। अगर वाष्पण और अन्य प्राकृतिक कारणों से नुकसान को निकाल दें तो देश में औसत सालाना जल उपलब्धता लगभग 2000 अरब घन मीटर रहने का अनुमान है। देश में जल की औसत सालाना उपलब्धता काफी हद तक जल मौसम वैज्ञानिक और भू वैज्ञानिक कारकों पर निर्भर करती है, लेकिन पानी की प्रति व्यक्ति उपलब्धता आबादी के आकार से भी निर्धारित होती है। आबादी में लगातार वृद्धि के साथ ही पानी की प्रति व्यक्ति उपलब्धता घट रही है। इसके परिणाम स्वरूप जल संसाधनों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। विश्व की 17.5% जनसंख्या और 11.6% मवेशी संख्या भारत में है। इससे देश जल संसाधनों पर दबाव काफी बढ़ जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में 80-90% जल का उपयोग कृषि में किया जाता है। सीमित जल संसाधनों पर बढ़ते दबाव के परिणाम स्वरूप भूजल के स्तर में गिरावट आ रही है। इससे जल की मौसमी तंगी होने के साथ ही पानी के आवंटन को लेकर टकराव भी बढ़ रहे हैं। ये चुनौतियां आपूर्ति संचालित दृष्टिकोण के बजाय मांग आधारित और योजनाबद्ध जल प्रबंधन प्रणालियों को अपनाने की जरूरत को रेखांकित करती हैं। इस संदर्भ में जल बजटिंग पानी की कमी वाले उन क्षेत्रों में संवहनीय विकास के महत्वपूर्ण साधन के तौर पर उभरी है, जहां तंगी और असमान वितरण से आर्थिक स्थिरता, खाद्य सुरक्षा और जलवायु अनुकूलनता को खतरा है। जल बजटिंग का मतलब नवीकरणीय उपलब्धता के साथ पानी के इस्तेमाल को संतुलित करने के मकसद से गांव, जल क्षेत्र, प्रखंड और जिला जैसी किसी परिभाषित भौगोलिक इकाई में जल की सुलभता और मांग का व्यवस्थित ढंग से आकलन है। जल बजटिंग के मूल में वाष्पण, बहाव और भूजल, भूमि पर प्रवाह, भूजल संचय समेत जल के सभी आदानों का आकलन है। बुनियादी गणना से आगे एक विस्तृत जल बजट प्राकृतिक परिवेश के अंदर जल के प्रवाह और वितरण को समझने में मदद करता है। इसमें सतही जल और भूजल प्रणालियों के बीच अंतःक्रिया, वर्षा और रिचार्ज में मौसमी परिवर्तन तथा कृषि, शहरीकरण और औद्योगिक उपयोग जैसी मानव गतिविधियां का प्रभाव शामिल है। जल बजटिंग को विभिन्न पैमानों पर व्यक्तिगत खेतों और गांवों से लेकर समूचे जल क्षेत्र और नदी घाटी तक लागू किया जा सकता है। इससे स्थानीय स्थितियों, संसाधनों की उपलब्धता और मांग की प्रकृति के आधार पर किसी खास स्थान के लिए जल प्रबंधन योजनाओं को तैयार करना संभव होता है। इस तरह का योजना निर्माण खासतौर से भूजल की कमी, मौसमी तंगी, बाढ़ या जलवायु से संबंधित अनिश्चितताओं का सामना कर रहे क्षेत्रों के लिए खासतौर से महत्वपूर्ण है। शासन के दृष्टिकोण से देखें तो जल बजटिंग सूचनाओं और साक्ष्यों पर आधारित निर्णय लेने में मददगार है। ये अधिकता और तंगी वाले क्षेत्रों की पहचान कर कृषि, घरेलू उपयोग, मवेशियों और उद्योगों के लिए जल के कुशल आवंटन को संभव बनाती है। राष्ट्रीय एकीकृत जल संसाधन विकास आयोग का अनुमान है कि उच्च मांग वाले परिदृश्य में वर्ष 2050 तक भारत में सिंचाई के लिए पानी की मांग 807 बिलियन क्यूबिक मीटर तक पहुंच सकती है। नाबार्ड द्वारा सहायता प्राप्त सहभागी जल बजटिंग पहलकदमियों के साक्ष्यों से पता चलता है कि पानी की उपलब्धता के अनुरूप चुनी गई फसलें जोखिम को कम करती हैं और उत्पादकता को बढ़ाती हैं। जल बजट एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाता है जिसमें मवेशी और मत्स्य पालन जैसे संबद्ध क्षेत्रों की जल आवश्यकताओं

0: को भी शामिल किया जाता है। मानक मानदंडों का उपयोग करके मवेशियों की पानी की मांग का अनुमान लगाना और इसे समग्र जल मूल्यांकन में शामिल करना अधिक संतुलित आवंटन सुनिश्चित करता है। सामयिक चर्चा समाप्त हुई, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे सामयिक चर्चा, ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
2: 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। 3:10 हुए हैं और अब समय हो गया है कार्यक्रम फिल्म संगीत ओल्ड हिट्स का। कुछ पुराने हिंदी गीत इस कार्यक्रम में हम आपको सुनाएंगे। तो शुरुआत कर रहे हैं इस कार्यक्रम की लता मंगेशकर के गाए हुए इस गीत के साथ, जिसे हमने लिया है फिल्म आकाशदीप से।

0: हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु वचनबद्ध है। आइए सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का संदेश।
1: नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाने का महत्वपूर्ण अवसर है। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने सुंदर पहाड़, साफ पानी और शुद्ध हवा का अनमोल उपहार दिया है। आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति की रक्षा में अपना योगदान दें। स्वस्थ पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए प्रकृति से प्रेम करें और हिमाचल को हरियाली और स्वच्छता का आदर्श बनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनहित में जारी।

0: चुनाव सिर्फ एक शब्द नहीं, ये है सच्चे लोकतंत्र की नींव, और मतदान है एक जागरूक नागरिक की पहचान, जिसे इस्तेमाल कर वो तय करते हैं अपने क्षेत्र, राज्य और देश की दशा व दिशा।
1: तो आइए अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आगामी पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर भाग लें और गांव के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।
0: आपका एक एक वोट तय करेगा पंचायत का भविष्य। तो निर्धारित तिथि को अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर सोच समझ कर और बिना किसी प्रभाव के मतदान जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी ही नहीं अधिकार है।
1: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

सभी युवा साथियों को दिव्या का नमस्कार। आप सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी एफएम शिमला, और मैं फिर हाजिर हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी लेकर, जहाँ बातें होती हैं नए सपनों की और नए जज्बों की। आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसा सफ़र जो आपको भारत के कोने कोने में ले जाएगा, लेकिन ट्रैवल नहीं बल्कि खेलों के ज़रिए। जी हाँ, हम बात करेंगे भारत के अलग अलग राज्यों के ट्रेडिशनल गेम्स की, उन खेलों की जिनमें बसती है हमारी मिट्टी की खुशबू, हमारी पहचान। तो चलिए शुरू करते हैं ये देसी गेम्स का धमाकेदार सफ़र और सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कबड्डी की, जो पंजाब में त्यौहारों पर खेली जाती है। फ्रेंड्स, कबड्डी सिर्फ एक गेम नहीं, ये दम, दिमाग और डिसिप्लिन का कॉम्बिनेशन है। चलिए अब बात करते हैं हमारे पहाड़ों के अनोखे खेल की, हिमाचल प्रदेश में खेले जाने वाला थोडा। इसे दो टीमें तीर कमान के साथ खेलती है। लक्ष्य होता है विरोधी के पैरों पर निशाना लगाना, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, एक सेफ डिस्टेंस से। इसमें डांस, म्यूजिक और खेल तीनों का मेल है। ये भी त्योहारों पर खेला जाता है। चलिए अब लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक और सुनते हैं ये गीत।

फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हरियाणा में खेले जाने वाले खेल कुश्ती की। यहाँ की मिट्टी में ही ताकत होती है। ये खेल शरीर की ताकत और टेक्निक का है। आज भी कई लोग जिम के बजाय अखाड़ा चुनते हैं। चलिए अब चलते हैं महाराष्ट्र की ओर, जहाँ मलखंब खेला जाता है। ये तो देसी जिम्नास्टिक है। इसमें खिलाड़ी लकड़ी के खंभे पर चढ़कर अलग अलग पोज और स्टंट करते हैं। इस खेल में फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ और बॉडी कंट्रोल का अल्टीमेट लेवल डेवलप होता है। अगर आप फिटनेस के शौकीन हैं, ये खेल आपके लिए परफेक्ट है। और अब फिर वक्त है एक और म्यूजिकल ट्रैक का।

अब बात करते हैं राजस्थान की, जहाँ गिल्ली डंडा खेला जाता है। तो फ्रेंड्स, बचपन की यादें ताज़ा हुई या नहीं? तो ये खेल क्रिकेट का ही देसी वर्जन है और ये खेल रिफ्लेक्सेस और टाइमिंग इम्प्रूव करता है। अब चलते हैं गुजरात की ओर, जहाँ खेला जाता है सतौलिया। ये टीम वर्क का अल्टीमेट टेस्ट है। इस खेल में 7 पत्थरों को स्टैक किया जाता है। एक टीम गेंद से गिराती है और दूसरी टीम उन्हें वापस जोड़ने से रोकती है। इस खेल में स्पीड, टीम वर्क, कोऑर्डिनेशन जैसे स्किल डेवलप होते हैं।

अब चलते हैं दक्षिण भारत में तमिलनाडु की ओर, जहाँ खेला जाता है जल्लीकट्टू। ये सिर्फ एक खेल नहीं, परंपरा है। इसमें खिलाड़ी बैल को पकड़कर उसे काबू में करने की कोशिश करते हैं। बहादुरी और साहस से जुड़ा हुआ ये खेल तमिलनाडु की परंपरा दर्शाता है। चलिए अब चलते हैं केरल के ओर, जहाँ खेला जाता है वल्लम कली यानी बोट रेस। ये तो पूरा फेस्टिवल वाइब है फ्रेंड्स। लंबी नाव में कई लोग बैठकर सिंक्रोनाइज रोइंग करते हैं। टीम वर्क का शानदार एग्जाम्पल है ये खेल। और अब सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत।

दोस्तों, आज आपने जाना कि कैसे हर राज्य का अपना एक खास खेल है और हर खेल के पीछे एक कहानी। तो अगली बार मोबाइल छोड़िए और दोस्तों के साथ कोई देसी खेल खेलिए। अब मैं दिव्या ठाकुर लेती हूँ आपसे विदा। आप सुनते रहिए 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी FM शिमला। नमस्कार।

तो आज के इस कार्यक्रम फिल्म संगीत में इतना ही। तो अब सुमन को दीजिएगा इजाजत और आप सभी यूं ही सुनते रहिए FM शिमला। वन जीरो 3.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।

मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्स और एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। ये पेश है हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम। आइए शुरुआत करते हैं स्पीति कार्यक्रम के साथ।

था इलुनियमपुई के गबला थिन थिरिंग की खास लोन डरेंगे ना हिन प्रदेश रो नांगमो मई की तरी निशु सबगे नेलो पंचायती राज चुनाव की दूसरा चरण हिंदोसिया वोट चुकना ला नांगमो थैरे की तने बजट धुनबा ने को सुखासिया तेन इनमी के बजट सोमवार बंद हिंदोसिया वोट के गप ला पंचायत के प्रधान छे उपप्रधान छे तेने सरपंच के भी वोट ला शुरू गिपकासिया तेने जिला परिषद छे जिला पंचायत की समिति के भी वोट की शुरू मई की तरी निशु मई की तरी सुमजु सौचिक्षा गिपकासिया मई की तरी सुमजु सौचिक्षा प्रदेश भी तेने चार नगर निगम सोलन छे मंडी छे पालमपुर छे धर्मशाला गे भी चुनाव हिंदूसिया पंचायती राज के चुनाव की तीसरा छे जितने आखिरी चरण मई की तरी सुमजु विशा चिकतों ग्यारंग गेचु केबदुन पंचायत हुई हिंदूसिया तेने नांगमो यंगन चुनाव की फिला तेने मी गे इजम छतपा लवा वोट रेड रोसिया तेने दांग अंशो शाह तेने गेचा गेचु दुंजु तबगे वोटर वोट चुकतु हिंदूसिया प्रदेश प्रदेश रो तेने शामो मांगबो जिनेलो ठनमो मीनांग थासिया तेने वटी फिला तेने राज्य की रिया मांगछे रो तेने मेल लैंड रूसिया तेने राजधानी शिमला भी तेने दोंगे मी भी रिया गे मांगछे रो मेल लैंड दूसिया यहाँ बोलो सोलन की जगह मांगछे रो व मेल लैंड दूसिया कसोली भी जगह मोलिन सेंदु मेल लैंड जिलो सेना गे छे तेने वायु सेना गे छे तेने कसोली छे चंडीगढ़ के प्रशासन गे यौ जिलो काबू चे सोसिया तेने वते सेने भारतीय युवा वायु सेना की सेना गे हेलीकॉप्टर ने लो चंडीगढ़ की तेने सुकना नेक ने लो छुख्यो जगह सोसिया प्रदेश रू नमशी मीनांग मध्य थोड़ू फूदे रासिया तेने खासकर राज्य की तेने योगी जगह उन्नत छे बिलासपुर छे हमीरपुर छे तेने कांगड़ा छे सिरमौर छे जलो सोलन छे मंडी गेरु ठासिया तेने उन्नर तापमान शिपचू शेपगे डिग्री जम मां दुपू चिलो तेने टू चुकुन गे मीना ना रूसिया तेने वती पिले स्वास्थ्य विभाग लो एडवाइसरी जारी जो रूसिया की प्रिकॉशन लेन से तेने सपल सपा लो तेने योग की बाजार गे रौनक वा केल जमी दूसिया तेने जन्मा जगह शिमला छे मनाली छे दलोजी गेरु तेने छिगल मांगबू जो खोटू यौ दूसिया तेने यम बोलो मौसम विभाग से ने मई की तरीक निशु सबगे ने लो हिमालय के क्षेत्र गेरु ताजा पश्चिम विक्षोभ यौज दूसिया अति फिला तेने मई की तरीक निशु सबगे शाह तेने राज्य की जिलंगा चंबा कांगड़ा कुल्लू मंडी शिमला रू तेने सेरा छे लोकमर छे जो तेने लुया मांगबू यौज दूसिया यम जी इन त इके कबला अन्य दिखे डोमे के लुन यम बोशिंग ना इन

अजकल इसे दा हमें के अपना खास ख्याल रखने री जरूरत हो। सभी का पहले तो देखो तो अंधेरे धड़े दा चीशा रे हर एक जीव जंतु हुए चाहे मानव हुए सभी के चीशा रे बहुत ज़्यादा जरूरत हो। और तो अंधेरे धड़े दा खास जो चीशियों सो से साफ सुथरे होने चाहिए ताकि हमें बीमारी का बचे सकूँ। और मारे शरीर दा ज़्यादा पानी रे जरूरत रहो सो तो हम ज़्यादा का ज़्यादा चीज पींदे रहना हो ताकि जो गर्मी रा असर हो से हमारे स्वास्थ्य पांदे ना पड़ो। हमें तंदुरुस्त रह सकूँ और जो भी हमारा काम काज हो से हमें सही ढंग का कर सकूँ। देखो ये जो हमारा कार्यक्रम सो इतने दा हमें गलबात भी करूँ और साथ ही साथ ही लोकगीत भी रहो सो। आज मारे कार्यक्रम दा जो गलबात होने से होने नशा जीवनारा सभी का बड़ा दुश्मन इस विषय रे बारे दा और साथ ही साथ ही तई गलबात करने हमा तकनीकी दा बदलदा भारत और नई ताजी खबरसार भी रहनी सो। तो को ना कार्यक्रम री शुरुआत एक लोकगीता साथी कर लो मैं तो आगड़ी करूँ मैं ये गलबात।

सारा रास्ता भी अपनाओ सो। आज के टाइम मारे सभी का बड़ी चिंता हो कि मारी जो नई पीढ़ी सो से बहुत तेजी का इतरे किनारे के बढ़िया करो सो। कई देखा शेखी दाई डे सो, कई दोस्ता रे दबाओ दा दोस्ता साथी साथी नशा करना शुरू करे दियो। कोई दिखावेरी तें के नशा शुरू करो, शुरुआत दा तो देखो ये मजाक ही लागो सो, पर बादा का जो इतरी लत लगी जाओ तो ये बहुत बुरी लागो और से इस था बचे नहीं सको सो। इतरी तें के हमा चाहिए कि हमें नई पीढ़ी के गलत संगति का बचाऊ और टीना के अच्छे संस्कार देऊ, अच्छे दोस्त रखने रे टीना के सीख देऊ तो से इथा बची सको। हमा सभी ये समझना चाहिए कि जो असली ताकत से नशा करने दी नहीं सो, बल्कि नशे का दूर रोने दा सो। ये तेरी तई खेल पढ़ाई योगा और अच्छे कामा दा टाइम लाए रही से सही रास्ते पंदे आगू बढ़ी सको। स्वस्थ शरीर और साफ दिमागी सफलता रे कुंजियो। सरकार और समाज भी नशे के खिलाफ कई जागरूकता अभियान चलाओ सो, पर सिर्फ कानून और अभियान ही काफ़ी नहीं हो। जब तई के हर एक मानू अपने आप नशे का दूर रहने का संकल्प न लो, तब तई के इस समस्या का हमें पूरे तरीके का खत्म नहीं कर सकूँ। मारा देखो जो जीवन हमा के अनमोल सो, बड़ी मुश्किल का मिलो सो मान जीवन, इसके नशे दा बर्बाद करना समझदारी नहीं हो सो। हमा अपने परिवार समाज अपने सपने और अपने आने वाले बढ़िया टाइम आरी तई के नशे का दूर रहना चाहिए। अपने आप भी नशे का दूर रहना और इस संकल्प लेना कि दूजे के भी नशे रे बारे दा जागरूक करे रहो, तीना नशे का दूर राखी सकी। ये तो थी गलबात। एबे कमला मेकटारी आवाज़ आता एक बढ़िया जा लोकगीत।

ही कुछ नुकसान भी असो जो मोबाइल और इंटरनेट असो इतरा गलत उपयोग टेमारे बर्बादे करो, और साथ ही जो साइबर अपराध असो आजकल के टाइम दा बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, इसी समस्या बढ़ाए दे असो। ए तेरी तई हमा तकनीकारा जो उपयोग असो से समझदारी और जिम्मेदारी साथी करना चाहिए। भारत रे नए छोटू मारे सभी का बड़ी ताकत हो, जे ये नए पीढ़ी तकनीकों का सही उपयोग करो तो शिक्षा नवाचार और देशों रे विकास री तई मारा देश भी शक्तिशाली देशों दा शामिल हो सको। तकनीक सिर्फ मशीना रा विकास ही नहीं हो बल्कि ये देशों री प्रगति रा प्रतीक भी हो। आज भारत अंतरिक्ष डिजिटल सेवा और विज्ञान रे क्षेत्र दा पूरी दुनिया दा अपने एक अलग ही पहचान बनाया करो। ये तो थी तकनीकों रे बारे दा जानकारी कि मारे देशों दा जो तकनीकों सो से दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी रोए। एबे बारे असो खबर सारो रे, मारी पहली खबर असो प्रदेशों दा कल 28 मई के पंचायती राज संस्था रे चुनाव रे दूजे चरण री तई मतदान होना। मतदान 2 थी 7 बजे का शुरू होना और 3:30 बजे तई चलना। मतदान एक ही मत का बाद एकदम बाद जो पंचायत प्रधान असो उप प्रधान असो और सरपंच असो तीनों री तई पड़े वोटारी गिनती होनी, जबकि जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य री तई मतदान रे जो गिनती से 31 मई के होने। 31 मई के ही प्रदेशों रे 4 नगर निगम सोलन मंडी पालमपुर और धर्मशाला री तई वह चुनाव रे मत रे जो गिनती असो से भी होने। पंचायती राज संस्था रे दूजे चरण री तई कल 1274 पंचायता दा वोटा पड़नी। राज्य दा पंचायती राज संस्था रे तीजे और आखिरी चरण रे जो चुनाव से 3 मई के 1187 पंचायता दा होने। प्रदेशों दा पिछले कुछ दड़े दा पड़ने वाली तेज गर्मी रे चलदे राज्य दा बौना दा आगरी जो घटना से लगातार बढ़ती लागी रही। राजधानी शिमला रे नेड़े बौना दा आगरी लगभग आधा दर्जन घटना दर्ज हुई, जबकि सोलन जिला दा भी कई जगह दा आग लागी। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कसौली साथी लगदा जो मनोन गांव तेती गिलबर्ट ट्रेल और अपर मॉल क्षेत्र दा जंगला दा आग लागी। आगो के सेना वायु सेना और कसौली और चंडीगढ़ रे कठे प्रयत्ना का इते पांदे काबू पाए गया। इते साथी अगली खबरों सो प्रदेशों दा भीषण गर्मी रा दौर चलाऊंदा, खास करी रे राज्य रे जो मैदानी जिले ऊना बिलासपुर हमीरपुर कांगड़ा सिरमौर सोलन और मंडी जिले दा माणू बड़ी तेज गर्मी रा सामना करया करो। ऊना जिला दा तापमान के लगभग 44 डिग्री पहुंचने का माठे छोटू बीमार हुआ करो। इसके देखते स्वास्थ्य विभाग एडवाइजरी जारी की हो और भीषण गर्मी का बचने री तई के एहतियाती उपाय करने के भी बोला उसो। बहुत ज़्यादा गर्मी रे कारण राज्य रे मैदानी क्षेत्र दा बाजारा का रौनक गायब हो। हालांकि शिमला मनाली और डलहौजी जिसे शहर दा गर्मी का बचने री तई पर्यटक बड़ी भीड़ उमड़िया करो। इस बीच मौसम विभाग ने बोला कि 28 मई का हिमाचल प्रदेश दा ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होना, इतरी वजह का 28 मई के राज्य रे 5 जिले चंबा कांगड़ा कुल्लू मंडी और शिमला जिले दा शुरू पड़ने अंधड़ आसमानी बिजली गिरने और 60 किलोमीटर प्रति घंटे री रफ्तारा का आंधी चलने रा ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। ये तो थे खबरसार। एवे सुन लो मैं एक बढ़िया जा लोकगीत।

कांडा चूटा कुमरौरा रे वा प्यारे अवई माना, ये था लोकगीत। गाने वाले थे पवन शर्मा। और इस लोकगीता साथ ही मारे आज के कार्यक्रम और वक्त भी हो लागा। एवं मुलाकात होने आने वाले शुक्र तो इनके मांगे दियो इजाजत। सभी सुनने वाले के राम राम।

महास्वी कार्यक्रम अभी आपने सुना। आकाशवाणी शिमला से अभी आप सुन रहे हैं हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम। लीजिए अब पेश है किन्नौरी कार्यक्रम।

Ne hace kino kinoring programu como paisi gadan kumari kinoring program de she sa se tekneo dok paisi kinya damte chae ga asha lande kinya se ki razi khusi snitich dang si dok program di ron chunitich paisi dok programu komo shari shari ki thanga ta kashi di to dok kait khas khas khobaren ning eke dam dam batali kashi tonyo काश तब ऐसी जो अम्स के किन्हीं अनु खास खास खबर सुनिया चकने हो परदेशो तरो में अनु जो गर्मी बहुत निक देन जो जंगली नो में भी मु घटना देयरो बदो दू राजधानी शिमलो ने रंग जंगली नो में भी मु जो लगभग आधा दर्जन घटनाएं दर्ज हाची शीत दंग सी सोलन जिलो को मोली कई जगह नो जंगल लेक चुमु खबर दू प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कसौलियों ने रंग मनोन देशंगो गिलबर्ट ट्रेल नंग अपर मालू काचंग जांगारू बीशित मेतंग सेना वायु सेना नंग आयत कसौली नंग चंडीगढ़ निष्की प्रशासनानु प्रयासानस काबुल अंशित जुबेरंग भारतीय वायु सेना हेलीकॉप्टरानस चंडीगढ़ सुखना लेकोस काशित तीव्रजस में काबुओ काशित मदे जुबेरंग पश्चिमी कमानू आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंगस जु जंगालू मेदेन प्रभावित सागानू दौरा लंशीत आई दो खेंता दो के परदेशो भीषण गर्मी वजस खासकर जु राज्यू मैदानी जिला नो हालिंगा ऊना बिलासपुर हमीरपुर कांगड़ा सिरमौर सोलन नंगमंडी जिलो मीनू भीषण गर्मियों सामना लानम पड़े दो ऊना जिलों को मो तापमान निशनी सौ पर डिग्री पर निकदेंस घाटोस छांगा टोशो जूतंग खेवाई स्वास्थ्य विभागस एडवाइजरी जारी लानशीत दंग सी दोक भीषण गर्मियों से बसेन नुतांगेस एहतियाती उपाय लानु बातंग लोशीत बहुत दी गर्मियों वजस राज्य मैदानी क्षेत्रों जो बाजारा नोट्स रौनक गायब हाचो हालांकि शिमला मनाली नंग डलहौजी देश के शहरानो रावंक्योज बसेन नुतांगेस पर्यटका नु भारी भीड़ बोदो जू मा जो मौसम विभाग सरिंगशित की निजो राय मईयोस यानी नासोम्स निपी जू हिमालय क्षेत्रों नो ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हाचो य जू वजस दोक नासोम्स निपी राजू गा जिला चंबा कांगड़ा कुल्लू मंडी नंग शिमला जिला नो शोरू लान नंग बिजिल बुन्नू नंग एके जो शुमनिजा किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तारस आंधी तूफान बुन्नू ऑरेंज अलर्ट जारी लानशीत आई खबर तोड़ने परदेशो नासोम निजो रे महिम्या पंचायती राज संस्थानों चुनावों जो दूसरे चरणों तांगेस मतदान हाचितया मतदान 30 बजे निपी शुरुआचस शुपोक्स 10 बजे तंग चले से या मतदानों युम्स पंचायतानों प्रधान नंग उपप्रधान आई तोक सरपंचों नु तांगेस शेषित वोटानु गिनती हाचितया तंग सी तोक जिला परिषद नंग पंचायत समिति सदस्यों नु तांगेस जु हाचिशित मतदानु गिनती से या निजो सकित मई म्या हाची दया होदो मैं ही दोक परदेशु पर नगर निगम सोलन मंडी पालमपुर नंग धर्मशाला तांगेस जु चुनावु मतगणना ली हाची दया पंचायती राज संस्थानु दूसरे चरणु चुनावु तांगेस नासोम ई हंजार निश्राऊ शुमनी सौ साप पंचायतानों वोट शेत से या परदेशों को मो पंचायती राज संस्थानों जो तीसरे नंग आखिरी चरणों मतदान निजो रह मई में या 1000 नंग राव पर निजो 30 पंचायतानों मतदान हाजित से या जो अम साजिशित जो पहले चरणों चुनावो शुमनी सौ रह प्रतिशतों से दी बोधी मतदाता अनस अनेकानु मताधिकारु प्रयोग लंशित जुताते की ने खास खास खबर काश्ता वैसी दोक गीथंग रोंची रोंचीच वैसई गीथंग।

चाहिँ किन पताइनियौँ कि जु हुनक्सु युग जु डिजिटल युग मध्ये जु विज्ञान तकनिकस मानव जीवन पुरा बदल जा शेषित कंप्यूटर इंटरनेट स्मार्टफोन नंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश के जु आधुनिक तकनीका नस जु काशानु कामा लानु तरीका बदले दो हुनाउ बेरंग शिक्षा व्यापार चिकित्सा बैंकिंग नंग मनोरंजन देश के लगभग जु से कामंगा डिजिटल माध्यमस हाचो मदे डिजिटल क्रांति हाचमिक देन जो मेन से किनु जीवन आसान नंग सुविधाजनक हाचो हदेसी दोक आइत जो डिजिटल युगो युवागोन नंग एके समाजुली न्यूंग अवसर नंग एके इत न्यूंग दिशा परे दो मदे बाईसी दोक जो डिजिटल युगु जो बहुत ही प्रभाव शिक्षो क्षेत्रो जो काशनु तालीमु काचिंग स्तागिंबो दो दू हालेगा ओम्स खेंता जू हुशी दिया छांगानू जानकारी उंच मुतांगेस सिर्फ जू किताबें नंग एके गुरुजी गंदोक्सी निर्वर नीम ग्यास तोस लेकिन हुना इंटरनेट माध्यमस दुनिया भरू जानकारी मिंटू कुमो हासिल लानम सोके दो ऑनलाइन कक्षाएं डिजिटल पुस्तकालय नंग शैक्षिक ऐप जू विद्यार्थियां तांगेस उपयोगी सिद्धा चो मदे देशो तोशी दे अच्छा गाली दोक हुंदेस खेंता दोक ऑनलाइन पढ़ाई माध्यमस दम ज्ञान हासिल लानो आय दंगची दोक प्रशिक्षण लाभ ली थो मदे वैसी दोक व्यापार नंग रोजगारु काचिंग स्लीजू डिजिटल तकनीकस कई न्यूंग अवसर केरो हुनाउ बेरंग ई कॉमर्स कंपनियां जो ऑनलाइन सेवाएं नंग डिजिटल भुगतान प्रणाली वाल तेजी से बढ़े दो मदे हालिंगा तोनिशों का शाह खेंदा थे ली चीज जोंगमु ग्याम तंगमा दो ऑनलाइन ऑर्डर लानम सोकेच दोक दो ऑर्डर लानची चीज खेंदा दोक सीधा म्यो देशों का संगी बोदो मदे दोक जो हजेस की सुविधा पर रहा युम्स मीनू सामान्य जोंगमु तांगेस बाजारो भी मुगोया मास आई दोक सामान्य क्यूशमुली गोया मास दोक आई खेंता दोक तेक तेक शेयर अनुता हुना दोक सामान ऑर्डर लन्ना इन निष्कांटो को मोई दोक पितंगान दाई बुसमदे दोक दो सामान्य नु भुगतान रुपया मानी मा दो ऑनलाइन ले लनम सोकेत काशा हाते नु रुपया शेन नु नीमा या थे ली बिल जमा लानू नीमा ऑनलाइन लानम सोकेस देरंग काशानु बैंक बीमु या दियारी लाइना नु डेन दोषमु गोया मास मदे से कामा काशान दोकी मो तोशसी मो फोनु को मोज लानम सोकेस दोगाई तोनिशों खेंता जू मी की मो तोशसी ऑनलाइन व्यापार लानो लाखों युवा पीढ़ी डिजिटल मार्केटिंग ग्राफिक डिजाइनिंग यानी जो थेतली संदेश जानकारी या विचारानु आकर्षक तस्वीर नंग डिजाइनानु जरियास मीन दोस्तंग पदो दोखनी जो ऐप डेवलपमेंट यानी खेंता एप्लीकेशन जुरिया मिक्सेया आई दोक कंटेंट राइटिंग देस की क्षेत्रानो जो रोजगार हासिल लानो मदे दोक आई जो सोशल मीडिया माध्यम असली मीनू मो प्रतिभा जंगमु मौका परे दो बैसी दोक खेंता जू इदंगे गेम डिजाइनर देश के कई कामंगा जो युवागा नु तांगे इसका मायू न्यूंग साधन हाजस मदे इत गाटोस व्यापारी ली आनु दुकान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नंग जोड़ दिया लाखों ग्राहक जुरियो मदे बैसी दो घने खेंता कृषि नंग स्वास्थ्य उकाचिंग सली जू डिजिटल तकनीक लाभदायक साबित हाचो किसान मोबाइल ऐप नंग इंटरनेट माध्यमस मौसम बियंग नंग बाजारु जानकारी हासिल लानो तंग सी दोक ऑनलाइन स्वास्थ्य सेवा अनु वजस दोक वार क्यो मी ली दोक विशेषज्ञ डॉक्टर अनु सलाह उंचम सोके दो मदे

हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे किन्नौरी कार्यक्रम। आइए अब सुनते हैं लोकगीत। शुरुआत करते हैं अतुल शर्मा के गाए हुए इस लोकगीत के साथ।

अभी आप सुन रहे थे लोकगीत, ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। 6 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला 103.7 MHz, मोबाइल ऐप और रेडियो की DTH सेवा पर भी सुना जा सकता है।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में कल 28 मई को पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे शुरू होगा और दोपहर बाद 3 बजे तक चलेगा। मतदान के तुरंत बाद पंचायतों में प्रधान, उप प्रधान और सरपंचों के लिए पड़े वोटों की गिनती होगी, जबकि जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए हुए मतदान की गिनती 31 मई को होगी। 31 मई को ही प्रदेश के 4 नगर निगमों सोलन, मंडी, पालमपुर और धर्मशाला के लिए हुए चुनाव की मतगणना भी होगी। पंचायती राज संस्थाओं के दूसरे चरण के चुनाव के लिए कल 1274 पंचायतों में वोट डाले जाएंगे। राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के तीसरे और आखिरी चरण में 30 मई को 1187 पंचायतों में मतदान होगा। इस बीच कल होने वाले दूसरे चरण के चुनाव के लिए आज उम्मीदवारों ने भीषण गर्मी के बावजूद राज्य के विभिन्न हिस्सों में घर घर जाकर वोट मांगे और अपनी जीत पक्की करने का प्रयास किया। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को विधानसभा या लोकसभा की तरह सत्ता का सेमीफाइनल बताना पूरी तरह गलत है। विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि पंचायत चुनाव व्यक्तिगत क्षमता, स्थानीय जन समर्थन और उम्मीदवारों की मेहनत के आधार पर लड़े और जीते जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पंचायत चुनावों के

0: ही दो चरण होने बाकी है और पूरी तस्वीर सामने आने के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी।
1: अधिकतर जो इसमें चुनावों में, चाहे वो पंचायत के प्रधान हैं, चाहे वो जिला परिषद के हैं, चाहे वो हमारे उप प्रधान है, मैक्सिमम प्रधान जो है वो किसी पार्टी लाइन पे जीत के नहीं आते हैं। अभी तो क्योंकि फर्स्ट फेज इस चुनावों का हुआ है, दो फेज अभी और इसके होने हैं अगले दो दिन के अंदर, उसके बाद इसमें स्थिति स्पष्ट होगी। मगर मैं आपको ये पूरी मजबूती के साथ कह सकता हूं कि जिस तरीके से नगर पंचायतों में, नगर निकायों में अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का रहा है, उसी तरीके से जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव का परिणाम भी आना है, चार नगर निगमों का, वहां पे भी कांग्रेस पार्टी का अच्छा प्रदर्शन रहेगा।
0: विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पंचायत, नगर निकाय और नगर निगम चुनावों में जो भी प्रतिनिधि जीत कर आएगा, सरकार उसके साथ मिलकर विकास कार्यों को आगे बढ़ाएगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि धर्मशाला में आयोजित आईपीएल मुकाबलों ने हिमाचल, खासकर धर्मशाला, कांगड़ा, मैकलोडगंज, पालमपुर और आसपास के क्षेत्रों की स्थानीय अर्थव्यवस्था को बड़ा प्रोत्साहन दिया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने छोटे पहाड़ी राज्य हिमाचल में क्रिकेट को नई पहचान देने के साथ साथ खेल पर्यटन को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का ऐतिहासिक कार्य किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से न केवल प्रदेश की आर्थिकी को बल मिलता है बल्कि राज्य की संस्कृति के प्रचार प्रसार को भी बढ़ावा मिलता है। प्रदेश में 1 जून से 15 जून तक हर व्यक्ति अपनी और अपने परिवार की गणना स्वयं कर सकेगा। स्व जनगणना के लिए डिजिटल तकनीक का सहारा लिया जाएगा। राज्य जनगणना कार्य निदेशालय के अनुसार स्व जनगणना से जनगणना का काम तेजी से और पारदर्शी ढंग से हो सकेगा। स्व जनगणना में डिजिटल तकनीक के प्रयोग से प्रदेशवासियों को अपनी गणना और जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। इसके बाद उन्हें स्व जनगणना आईडी नंबर मिलेगा। ये नवंबर जनगणना कर्मी के घर घर सर्वेक्षण करने के दौरान उन्हें बताना होगा। ऐसा करने से स्व जनगणना के दौरान पोर्टल पर अपलोड की गई जानकारी स्वतः ही जनगणना कर्मी के मोबाइल ऐप में प्रदर्शित हो जाएगी और इसकी पुष्टि भी हो जाएगी। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। खासकर राज्य के मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सिरमौर, सोलन और मंडी में लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। ऊना जिला में तापमान लगभग 44 डिग्री पहुंच जाने के चलते छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से हल्के रंग के कपड़े पहनने, शरीर में पानी की कमी न होने देने और 12 से 4 बजे के बीच अनावश्यक रूप से घर से न निकलने की सलाह दी है। सिरमौर से हमारे संवाददाता सतीश शर्मा के मुताबिक हीटवेव से अस्पतालों में हीट स्ट्रोक और उल्टी दस्त के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अत्यधिक गर्मी के कारण राज्य के मैदानी क्षेत्रों में बाजारों से रौनक गायब हो गई है। हालांकि शिमला, मनाली, डलहौजी जैसे शहरों में गर्मी से बचने के लिए पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि 28 मई से हिमालय क्षेत्र में ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके प्रभाव से 28 मई को राज्य के 5 जिलों चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में ओलावृष्टि, अंधड़, आसमानी बिजली गिरने और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी तूफान चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला 103.7 MHz पर भी प्रसारित किया जा रहा था। कृपया हमारी अगली घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लीजिए अब पेश है बिलासपुरी कार्यक्रम।

तेरे रस्ते च नैन बिछाई बैठूरी। सुभाष गुप्ता और ये आवाज़ च था ये लोक गीत। खास खास खबरां प्रदेशा च कल यानी 28 मई जो पंचायतां री वोटां पौनियां। ये वोटां सवेरे 7 बजे ते 3 बजे तक पौनियां। वोटां पौने ते इकदम बाद प्रधान उप प्रधान कने सरपंचा जो पौरियां वोटां री गिणती होनी, जबकि जिला परिषद कने पंचायत समिति रे सदस्यां री गिणती जो इसे 31 मई जो होनी। 31 मई जो ही सोलन मंडी पालमपुर कने धर्मशाला खातर हो रही वोटा री गिनती भी होनी। पंचायतां खातर आखरा जो दिन ना वोटा पाने रा से आ 30 मई। मारे प्रदेशा च कुछ दिना ते खूब गर्मी पड़कुरी, इसरे कारण वना च भी खूब आग लग्या करदी। खासकर सिमले कने सोलनी रे वना च खूब आग देखी गोरी। कसौली रे कन्ने लगदे मनोण गांव गिलबर्ट ट्रेल कने अपर माल इलाके रे जंगलां च भी खूब आग लगुरी। इत पर सेना वायु सेना कने कसौली कने चंडीगढ़ रे प्रशासन ने काबू पाई लित्या। इत दौरान हेलीकॉप्टरें सुखना झीला ते पानी लियाई लियाई कने आगे पर सट्टिया। इत दौरान पश्चिमी कमाना रे आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह होरी जंगलारी अग्गी ते प्रभावित इलाके रा दौरा भी कित्या। पूरे प्रदेशा च अजकल खूब तौंदी पड़कुरी, खासकर उन्ना बिलासपुर हमीरपुर कांगड़ा सिरमौर सोलन कने मंडी रे माणुआ जो खूब गर्मी रा सामना करना पोया दा। उन्ने च ता तापमान तकरीबन 44 डिग्री पुजी गुरा। इत ते छोटे न्याणे भी खूब बीमार होने लगुरे। हेल्थ महकमे बोलिया भई गर्मी ते बचने लई खूब कोशिशां करनी चाहीदियां। मौसम विभागे जानकारी दितुरी भई 28 मई ते पश्चिमी विक्षोभ जो आसे भी आरे प्रदेशा च आई जाना। तो जे छोटी जी गलबात भी तुहाने लानी भई जैविक खेती अपनाओ। आरे देशा च बड़े भारी माणू जो ऐसे खेती बाड़ी करदे। गलाने रा मतलब अभी उरे रे जो ज़्यादातर माणू है तिन्हारा पेशा जो आसे करसानी आ कने खेती बाड़ी करी कने से अपनी रोजी रोटी कमांदे।

असांजो पहिया विपदा, यशपाल उरी आवाज़ा च थाए लोकगीत। ताजी देखो पे तौंदी बड़पारी तसे तिरी तुहें अपनी अरी बड़पारी संभाल रखनी। ठंडिया ठंडिया चीज़ा जो ही असें अजकल खानियाँ, कने जे भारत आया हो तो एड़ा नहीं ठंडा ही बड़पारी पानी पी लिता। कोशिश करनी पे जो अहें पानी पीना से कड़ोलुए रा पानी हो, संजा जो भरी कने कड़ोलू रखो तो सवेरे जो ठंडा ठार मज़ेदार पानी जो असें अहां जो मिली जांदा। तो प्रोग्राम मारा टाइम जो अजी से भी हो गया, हूँ अहें मिलना तुहाने शुक्रवार जो। ताली तक दियो इजाजत, नमस्कार।

नमस्कार जी, तुआ सब सुनाले ब मेरे डिंपल देवी रे नमस्ते। आकाशवाणी शिमला रे युकुल भी कार्यक्रम मजे तुआ सब इरे स्वागत स। ताजी होर तुए राजी बाजी सब ठीक होने ता टंडे नरोग्य होने। हाँ डिंपल देवी तुआ संगे अगले आधे घंटे तई होनी। ताजी वाला आज के यू कार्यक्रम मजे आंगल करनी मारे अधिकारा था मारे कौमार बारे मजे तमारे और उपरू देश ग्रह के चलू दस इतके बारे मजे भी आंगल करनी ता इतके बारे मजे खोजना। ताजी एडी एडी खबरा था जानकारी संगे आ शुभली शुभली ता रमड़ी रमड़ी गिया भी सुननी ता त्यार मजा लौना। ताजी कार्यक्रम शुरुआत में सभी के पहल आंगल करनी मारे अधिकार ता मारे कर्तव्य बारे मजे मान होने नाते ता देश नागरिकार होने नाते मारे के कौम हूँ आम के अधिकार बेटे इतके बारे मजे। ताजी वाला जेबरे आए का

शर मणुस तिबरे आपकी अधिकार भी भेटे उस जो आप स्वतंत्र था शुभले रंगे जीवनेर सुविधा देस। लेकिन एता संगे संगे मारे किस कौम भी हूँस जे आप निभावना तेतरा ही जरूरी हूँस जेतरे त्या जरूरी हूँस। ताजी वाला अधिकार ता कौम एक ही सिकेर दुई पाशड़ीस। अगर आई केले अधिकार और गल करे ता कौम अब हेरू न शुणू करे तते भी समाज में संतुलन नहीं बनी सकता। ताजी वाला भारत में मानुर अधिकार और उल्लेख मारे संविधान में भी करूँ दस जे तब भारतीय संविधान बलस वाला एता में आप कई मौलिक अधिकार भी दिनेस जेडे की समानता अधिकार आज़ादी अधिकार पढ़ने अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार एडेडे वाला या अधिकार आप एक रंबड़ा था शुभला जीव जीवने मौका देस। समानता अधिकार आप यो सिखांस कि सब मानू कानून सामने बराबर हूँ चाहे त्या कोई गरीब होले चाहे त्या सेठ होले चाहे बेटड़ी होली चाहे मर्द होले सब बराबर हूँ। स्वतंत्रता अधिकार आप अपनी गला बाता बनेर तई अपने भाव विचार डाणेर तई ता अपनी पसंदार जीव जीवनेर तई आज़ादी देस। पर बालाजी जे खिमारे अधिकार हूँस ते खिमारे किस कौम भी हूँस किस मारे कर्तव्य भी हूँस मारे कर्तव्य था कौम आप सिखांस कि मारे देश था मारे समाज तई मारी के जिम्मेदारी त्या जिम्मेदारी आ निभावनी लागस। एडे वाला देश और कानून पालन करना पर्यावरण बचाव करना ता सार्वजनिक संपत्ति का सुबितर नुकसान नहीं पजेरना था और अधिकार भी समान करना इज्जत डाणी या सब जबर जरूरी हूँ सर। मारा पहला था सभी का जरूरी कौम से वाला अपने देश तई सम्मान था जरूरी डाणी आए अपने राष्ट्रीय झंडे व राष्ट्रीय गाना व था होर देश और एकता सम्मान लड़ी करूँ एतान भेटे आए अपने और ऊपर उर्बाता बढ़ना व साफ डाणा बूटे बाटे लाने पानी बचाना ता प्रदूषण व कम करना या सब एक कौम मारे कर्तव्य में हूँ स। ताजी भाड़ा पढ़ने अधिकार आम बेटा स पर रमड़ी शिक्षा लेनी ता होर तितका रमड़ा कौम ता रमड़ी जगह सो लौना सो मारा कौम हूँ स। अगर आए पढ़े लिखे होले था ते भी ही आए रमड़े माड़ेर बीचा में फर्क समझी सकस ता होर समाचार तई रमड़ा करी सकस। आज के वक्त में कई बेर आए अपने अधिकार और गलता करस पर अपने कौम भी सरस जेड़े वाला आए साफ सफाई गला करस पर केबरे आए आपू धूड़ा और पुरुष उठस आए जहाँ से कि आंब आदर था बेटे पर आए होराब आदर देना बिसरस। अगर मानू अपने कर्तव्य ईमानदारी संगे नवेरे ता समाज में कई एडी समस्या अपने आप खत्म हो सकस। एक जिम्मेदार मानू सोए उस जो अपने अधिकार संगे संगे अपने कौमा भी समझी सके त्या नवेरे। ताजी भाड़ा याने त नौजवाना में यो भावना अंदरे उजाणनी था हूणी जबर जरूरी स त्या अपने देश जिम्मेदार मणु बनी सकस त्या बहुत सिन भेटे यो लड़ी सिखाओ कि अधिकारा संगे संगे मारे कर्तव्य पालन करना भी जबर जरूरी हूँ। मारे देश रमड़े रमड़े नेते सदा आप यो सिखाओ कि आए अपने कौम अब कर्तव्य अब प्राथमिकता देनी जेबे आए अपने कौम अब करस वाला तते ता निभांस तेबे अपने आप मारे अधिकार रमड़े रहस। ताजी अंत में अधिकार आप ताकत दीस ता होर कर्तव्य आंब जिम्मेदार बनास। अगर आए दुईर बीचा में संतुलन बनाई डाए तते भी आए एक शुभला समाज था पाके राष्ट्र निर्माण करी सकस। ताजी एजा आए सब ये मिली करे ओ संकल्प लेना कि आए अपने अधिकार रमड़े रंगे बरतने ता कर्तव्य ईमानदारी संगे निभाने। ताजी यो थी मारी पहली जानकारी मारे अधिकार ता कर्तव्य बारे मंजे ताजी एवे सुनत हुए एक शुभ ली देगी।

अगर अहें त्यौहारार गल करें तो कुलूर दशहरा, फागली, बिठ, बिरशू वाला पीपल मेला, कायिका भी लागस, शारनू शानू भावगे वाला तो होरा एडे धार्मिक तीथा पेंदे लोग अपनी जो पारंपरिक वेशभूषा उस वाला ते तमे हेरस। खासकर जो ग्रह रमणूस वाला ग्रह में जाचा उस ता कुलूर दशहरे दिहाड़ी ते खेते उबकते सारी सौ रंग बिरंगी कुल भी संस्कृति करे भरी दी उस। मर्द चोला टोपा बनी करे ता बेटड़ी पट्टू लाई करे जाचा बेस था कुलवी नाटी थल्ला लड़ी ते ता नाचस वाला। ची चौ शव देवी देवते दशहरे में जस ता लोग का अपना आशीर्वाद देस। कुलवी टोपी के लिए बनने चीज न थी बल्कि एक ताजा साइस। यो कुलू था हिमाचलर लोकर एक पहचान स। आज के उन नवे वक्त में बड़ा जे खे पश्चिमी पहनावा ज़्यादा बड़ा लगा स। देखे आज कुल भी वेशभूषा आज भी अपनी पहचान बनाई डाई स। लोका आधुनिक जिकड़े संगे कुल भी टोपी बनस था ते ता पसंद भी करस। ता एता संगे आजकल आए ता हेर बिस वाला टसू टसी जो शोर।

सँ रङ्ग बिरङ्गी कुलबी संस्कृति करे भरि दिउँस। मर्द चोला टोपा बनी करे त बेटड़ी पट्टू लाई करे जाचा बेचस। था कुड़ुई नाटी थ लालड़ी तेता नाचस वाला। ची चौ शव देवी देवते दशहरे में जस ता लोकाब अपना आशीर्वाद देस। कुलुई टोपी के लिए बनने चीज न थी बल्कि एक इताजा साइस। यो कुड़ू था हिमाचलर लोकर एक पहचान स। आज के उन नौ वक्त में बड़ा जे खेपश्चमी पहनावा ज्यादा बर्द लगा स। देखे आज कुल भी वेशभूषा आज भी अपनी पहचान बनाई डाई स। लोका आधुनिक जिकड़े संगे कुल भी टोपी बनस था तेता पसंद भी करस। ता एता संगे आजकल आए ता हेर बिस वाला टसू टसी जो शोरु शोरियूस त्या अपने जिकड़े संगे कुल भी टोपी बनस। वो एक शोभली गल स। यो आमरी हास कि लोका आज भी अपनी संस्कृति था परंपरा संगे जुड़ी देस। शोभले लोको कुल भी शाल भी सारी दुनिया में प्रसिद्ध स। एता जी आई टैग बेटास वाला शाल हाथे करे बुनी दियूस जो कि बरिक्की रेक कौमूस। कुल भी शाल उन्ने करे बुनी दियूस ता अपने शोभले डिजाइनर तई जणीस। यो किला एक कापड़ा ना थी बल्कि कुलूर कला था होर मेहनतर एक प्रतीक स। आज पर्यटन बढ़ने करे तेता संगे संगे कुल भी वेशभूषा लोकर आकर्षण जगह बनी सीखी स। कई घूमनाले कुल भी टोपी थ शाल लौस तेता पसंद करस किसुकी यो हिमाचली संस्कृति र याद दिलास। तजी भला का सुविला केर वेशभूषा देखली पहचानूस। यो आंब म्हारी जड़ा था परंपरा संगे जोड़ी डांस। कुल भी वेशभूषा आंब सादगी मेहनत था होर सांस्कृतिक गर्वर संदेश भी देस। ताजी अंत में हाँ यो ये बहना चाहस कि आए सभी अपनी पारंपरिक वेशभूषा था होर जो संस्कृति वाला यो संजोई करे डाणी यो बचाई करे डाणी। नवी चीज अब अपनाना रंबड़ी गलस पर अपनी पहचान परंपरा व बिसरना रंबड़ा नहीं हुंदा। एजा आए सभी अपनी संस्कृति पेंदे गर्व करना था होर एज नाली जो नवी पीढ़ी से वाला त्या तई पजेनर प्रयास करना। ताजी ओती म्हारी दूजी जानकारी कुलवी वेशभूषा पेंदे ताजी ए बे सुना तुए एक होर शोभली दे गी।

प्रतिशत को ज़्यादा मतदाते अपने मताधिकार प्रयोग करूँ। तजी याती आज की किस खास खबर, एवे सुनतुए एक होर शुभ ली दे कुल्लवी गीत।

ताजी ओ शुणु तू है कृष्णा ठाकुर था धर्मेंद्र शर्मार आवाज़ा में एक शुभ ली देगी। कार्यक्रम रे खत्म होने रा एबे वक्त भी आवा होई। मुंबई डिंपल देवी बिद्या इजाजत, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कुलवी कार्यक्रम। इसके साथ ही हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम अब समाप्त होते हैं। आइए अब आपको अंग्रेजी समाचारों के लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, today approved the continuation of the scheme to modernize the public distribution system, PDS, including ration, transport, dealer support and technology upgrades till March 2031. The umbrella scheme, called the Scheme for Assistance in Ration Transport and Handling Income with Automation and PDS, Sarthak PDS, has been cleared in the 16th Finance Commission cycle award period, with an outlay of 25,530 crore rupees as central share. Briefing media in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Aswani Vaishnav said the scheme will provide assistance to state agencies for intra-state movement of food grains, will support fair price shops, and help in modernization of public distribution system.
2: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं।
3: थ्री मेजर रिफॉर्म्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोग्राम टुडे। फर्स्ट, द गवर्नमेंट विल सपोर्ट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर्ड इन मूविंग फूड ग्रेन्स फ्रॉम लार्ज एफसीआई वेयरहाउसेस इन द स्टेट्स टू फेयर प्राइस शॉप्स अक्रॉस डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स एंड डिविजन्स। सेकंड, देयर वाज अ नीड टू इंक्रीज द रेम्युनरेशन ऑफ फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एंड ए डिसीजन हैज बीन टेकन इन दिस रिगार्ड एज वेल। थर्ड, एफर्ट्स विल बी मेड टू मॉडर्नाइज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन system through the use of technology.
2: Public distribution system ko hum kaise modernize kar sakte?
1: The minister said the scheme will work towards fulfilling the government's commitment to 81.35 crore persons covered under the National Food Security Act. He said the scheme is not a replacement of the existing PDS scheme. Home Minister Amit Shah has hailed the approval of Sarthak PDS Phase 2 by the Union Cabinet. The Assam Legislative Assembly today adopted the Uniform Civil Code Bill, making Assam the first state in the Northeast and the third state in the country to adopt such a legislation. The bill, introduced during the first session of the 16th Assam Legislative Assembly on Monday, was passed by the House today.

स्वागत आप सभी का 103.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ। 7:10 हो चुके हैं। किसान और बागवान भाइयों के लिए लीजिए पेश है कृषि जगत कार्यक्रम।

0: कार्यक्रम कृषि जगत सुनने वाले सभी किसान बागवान श्रोताओ को हमारा
1: नमस्कार।
0: किसान बागवान श्रोताओ, हाजिर हैं हम आपका दैनिक जानकारी और मनोरंजन भरा कार्यक्रम कृषि जगत लेकर, जिसमें इस अंक को लेकर मैं हूं रविंदर विशिष्ट।
1: और मैं हूं शिवरंजन।
0: जी शिव जी, कैसे हैं आप?
1: रविंदर जी मेरे हाल चाल एकदम बढ़िया है, आप सुनाए कैसे हैं आप?
0: जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूं, और उम्मीद करता हूं कि हमारे किसान बागवान श्रोता भी कुशल मंगल होंगे और अपना कृषि बागवानी कार्य सुचारू रूप से कर रहे होंगे।
1: जी
0: शिव जी, जैसा कि हम और आप सभी जानते हैं कि गर्मियों का मौसम अपने चरम पर है, तो ऐसे में हम चाहेंगे कि हमारे किसान बागवान जो श्रोता हैं वो अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपने पशुओं की भी सुरक्षा करते हुए अपना कृषि बागवानी कार्य सुचारू रूप से करते रहें।
1: जी।
0: और अधिक से अधिक पानी पिएं और अपने पशुओं को भी ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाएं।
1: जी तो रविंदर जी, अब हम अपने किसान और बागवान भाई बहनों को बता देते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में हम उनके लिए क्या कुछ खास जानकारियां लेकर के आए हैं।
0: जी
1: किसान भाइयों, आज काम की बातों के अंतर्गत जिस विषय पर हम आपको जानकारी देंगे वो है गुठलीदार फलों के रोग, कीट व उनका उपचार आप किस तरह से कर सकते हैं। करवाएंगे मनोरंजन लोकगीत से और सुनवाएंगे आपको एक जानकारी पूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण भी। विषय रहेगा फूलों की खेती एक लाभकारी व्यवसाय। बातचीत में भाग लेंगी उमावती और उनसे जानकारी हासिल करेंगे सुरेश चंद। और किसान भाइयों, कार्यक्रम के अंत में देंगे जानकारी आपको कल के आकर्षण की भी।
0: जी तो किसान बागवान श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। बात हो रही है गुठलीदार

0: फलों के रोग कीट और उपचारों की बात यदि करें हम किसान बागवान श्रोता हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में गुठलीदार और गिरीदार फलों में विशेषकर पलम, आड़ू, बादाम, चेरी, खुमानी, अखरोट आदि उगाए जाते हैं। इन फलों की खेती लगभग 22,473 हेक्टेयर भूमि पर की जाती है। बागवानी में विविधता लाने के लिए इन फलों की ओर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। इन फलों में से आड़ू जैसे फलों के डिब्बे में परिरक्षण और संसाधन से बागवानी उद्योग को बढ़ावा दिया जा सकता है।
1: जी किसान भाइयों, जहां तक बात करें इसकी जलवायु की, तो इन फलों के लिए विभिन्न प्रकार की जलवायु चाहिए होती है। सभी शीतोष्ण फलों में आड़ू को सबसे गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, निचले और मध्य क्षेत्रों में समुद्र तल से 1000 से 2000 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्र इसके उत्पादन के लिए उपयुक्त माने गए हैं। आड़ू के फूलों की कलियां फटने के लिए 6.5 डिग्री सेल्सियस नीचे का तापमान हानिकारक होता है।
0: जी अब बात कर लेते हैं किसान बागवान श्रोता गुठलीदार फलों में लगने वाले कुछ एक मुख्य कीट और उनके समाधान की। कीटों में यदि हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं कीटों की। कीटों की यदि हम बात करें तो उसमें सबसे पहला नाम आता है पीच लीफ कर्ल एफिड, यानी कि आड़ू का पत्ता मरोड़ा तेला। ये आड़ू का सबसे नुकसानदायक कीड़ा है। ये आड़ू के साथ साथ बादाम, प्लम, आलूचे और खुमानी को भी हानि पहुंचाता है। खिलती कलियों के रस चूसने के कारण पत्ते मुड़े हुए निकलते हैं और प्रकोपित पेड़ों पर फूलों की कलियां भी कमजोर होती हैं, जिससे फल कम लगते हैं और गिर भी जाते हैं। फूल आने से पहले और फूल आने पर सबसे अधिक नुकसान इन फलों का होता है।
1: बिल्कुल जी किसान भाइयों, इस कीट के उपचार के लिए आपने क्या करना है वो हम आपको बता देते हैं। किसान भाइयों, आपने फूल खिलने से 7 से 10 दिन पहले यानी कि गुलाबी कली की अवस्था में मिथाइल डेमेटोन 0.025% का 200 मिलीलीटर, मेटासिस्टॉक्स 25 ईसी या डाइमिथोएट 0.03% का घोल बनाकर के आपने छिड़काव 4 से 8 लीटर प्रति पौधा कर देना है। यदि पहले छिड़काव नहीं किया हो या प्रकोप अधिक हो तो फूलों की पंखुड़ियां झड़ने पर फिर से आपने छिड़काव कर देना है। किसान भाइयों, इस बात का ध्यान आपने रखना है कि पूरे पेड़ पर अच्छी तरह और विशेषकर कलियों पर आपने छिड़काव अच्छी तरह से कर लेना है।
0: जी किसान भगवान श्रोताओं, बात कर लेते हैं एक और रोग की, ब्लॉसम थ्रिप्स की। इसके लक्षणों की अगर हम बात करें तो सेब के साथ साथ ही ये कीट पलम, आड़ू, खुमानी, चेरी और बादाम पर भी आक्रमण करता है। इसके निदान के लिए जिन कीटनाशी दवाओं का छिड़काव आड़ू के पत्ता मरोड़ तेले पर नष्ट करने के लिए किया जाता है, उसी छिड़काव के प्रयोग से थ्रिप्स पर भी आप नियंत्रण पा सकते हैं।
1: जी किसान भाइयों, अब बात करते हैं पीच फ्रूट फ्लाई कीट की भी। ये भी आड़ू की फल मक्खी कीट में आता है। फल मक्खी खुमानी, पलम और आड़ू को नुकसान पहुंचाती है। ये पक रहे फलों में अंडे देती है और इसके शिशु फल के गुद्दे को खा जाती है। शीघ्र ही फल सड़ने लगते हैं और खाने के काबिल भी नहीं रहते हैं। प्रभावित फलों से निकलकर पौधे के तौलिए में 2 से 7 सेंटीमीटर की गहराई में प्यूपा में बदल जाती है। इसकी रोकथाम के लिए किसान भाइयों, आपने क्या करना है कि फल तोड़ने में आपने बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है। पेड़ों के नीचे गिरे फलों को नष्ट कर देना है। जहां पर मक्खी का प्रकोप अधिक हो वहां शीघ्र पकने वाली किस्में जैसे कि वर्ल्ड्स अर्लीएस्ट और अर्ली व्हाइट जाइंट किस्म आपने लगानी है।
0: जी अब बात कर लेते हैं किसान बागवान श्रोता प्लम स्केल की। ये कीड़ा प्लम और आड़ू को क्षति पहुंचाता है। इस कीड़े की मादा का शरीर गोल भूरे रंग का होता है। ये अधिक संख्या में नई बढ़ती शाखाओं पर पाई जाती हैं। इनसे शहद की तरह मीठा पदार्थ निकलता है जो कि मक्खियों और चींटियों को आकर्षित करता है। अप्रैल या मई के महीनों में इनके अंडों से निकलने वाले शिशु पत्तियों से चिपक कर उनका रस चूसते हैं। मादा टहनियों से रस चूसती है। इसके आक्रमण से कम फल लगते हैं या फल छोटे आकार के रह जाते हैं।
1: जी
0: ये तो बात हुई इनके लक्षणों की, अब बात कर लेते हैं निदान की। इसके निदान के लिए किसान बागवान श्रोता फल तोड़ने के बाद मिथाइल डेमेटोन 0.025% प्रति 200 मिलीलीटर मेटासिस्टॉक्स 25 ईसी प्रति 200 मिलीलीटर पानी का छिड़काव आप कर सकते हैं।
1: बिल्कुल जी किसान भाइयों, बात करते हैं प्लम फ्रूट मौत यानी कि प्लम फल पतंगा कीट के बारे में भी। किसान भाइयों, शिमला और मंडी जिलों के कुछ इलाकों में प्लम और खुमानी की 85 किस्मों में इसका प्रकोप देखा गया है। कीट की सुंडी विकसित हो रहे हैं, फल में घुसकर फल के गुद्दे को खाती है। अंत में किसान भाइयों सड़कर के फल गिर जाता है। किसान भाइयों, इसके लिए आपने क्या करना है कि गिरे हुए फलों को एकत्र करके आपने उन्हें नष्ट कर देना है।
0: बात कर लेते हैं किसान बागवान श्रोताओं छेदक कीट यानी बोरर की। इसके लक्षणों की अगर हम बात करें तो ये कीट प्लम, आड़ू, खुमानी, बादाम और चेरी की शाखाओं और तनों में छेद करते हैं। ग्रस्त पौधे कमजोर हो जाते हैं और अधिक प्रकोपित होने पर मर भी जाते हैं।

0: पौधे के ऊपरी भागों में छेदक कीड़ों का पत्ता, बुरादे कीड़ों की बिष्ठा की गोलियों, शिखर की टहनियों से सूखने और सूखी छाल से लग जाता है। फ्लैट हेटेड बोरर यानी कि चपटे सिर वाला छेदक अक्सर तने और टहनियों के उस भाग को नुकसान पहुंचाता है जहां सीधी धूप पड़ती हो।
1: किसान भाइयों, इसकी रोकथाम के लिए आपने क्या करना है कि प्रभावित शाखाओं और टहनियों की सूखी छाल को किसी चाकू से खुरच कर उस पर पेस्ट लगा देना है। साथ ही सूरज की तेज किरणों से तने या टहनियों को बचाने के लिए मार्च से अक्टूबर तक सूखी घास या बोरियों के टुकड़ों से आपने उसे बांध लेना है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं पत्ते और फल खाने वाले बीटल यानी भृंग कीट की भी। किसान भाइयों, बहुत से भृंग पत्तों और फलों को खाकर क्षति पहुंचाते हैं।
0: अब बात कर लेते हैं किसान बागवान श्रोताओं छाल खाने वाली सुंडियों की। मध्यवर्ती और निचले पहाड़ी क्षेत्रों में गुठलीदार फलों पर इनका प्रकोप बढ़ता जा रहा है। सुंडी अपनी लार और बुरादे से बने जाले के नीचे तने के छाल को खाती है और पौधा कुछ ही समय के बाद कमजोर होने लगता है। इसके निदान के लिए किसान बागवान श्रोताओं मार्च और सितंबर अक्टूबर में सुंडियों की सुरंगों को लकड़ी या तार से साफ करें और पौधे पर किए गए छेदों को सेब तना छेदक कीट के लिए उपचारित करें।
1: जी, अब बात करते हैं किसान भाइयों दीमक कीट की। किसान भाइयों, गर्म स्थानों पर ये जड़ों और तनों के जो भाग जमीन के नजदीक होते हैं उनको ये बहुत नुकसान पहुंचाती है, जिससे पौधे कमजोर होकर सूख जाते हैं और उन पर बहुत कम फल लगने लगते हैं। छेदक कीट से प्रकोपित पौधों पर दीमक का अधिक आक्रमण होता है। किसान भाइयों, इस कीट की रोकथाम के लिए आपने हमेशा अच्छी तरह गली सड़ी खाद ही डालनी है। साथ ही बागीचे के आसपास से दीमक की बामी को नष्ट कर देना है और सूखी छाल और बुरादे को आपने निकाल देना है।
0: बात कर लेते हैं सूत्रकृमि यानी कि निमाटोड की। सबसे पहले जिसमें हम बात करेंगे जड़ गांठ सूत्रकृमि की। इनके प्रकोप से जड़ों पर गांठें बन जाती हैं, जिससे जड़ों के ऊपर खुराक नहीं जा पाती। प्रकोपित पौधे के पत्ते पीले हो जाते हैं और पौधे छोटे रह जाते हैं। इसके निदान के लिए किसान बागवान श्रोताओं पौधशाला में दानेदार दवा कार्बोफ्यूरान या फ्यूरान 3G 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आप डाल सकते हैं।
1: किसान भाइयों, ये तो हमने बात की कीटों की, अब बात कर लेते हैं कुछ एक रोगों की भी। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे बैक्टीरियन गमोसिस की यानी कि गोंदित रोग की। इस रोग के मुख्य लक्षण तने और टहनियों की छाल और उसके अंदरूनी भाग और फलों से धब्बे के रूप में गोंद का निकलना होता है। किसान भाइयों, इस बीमारी की रोकथाम के लिए आपने गोंद रिसने वाले या खुले घाव को सुसुप्त अवस्था टूटने पर साफ करना है और उन पर मशोबरा पेस्ट लगा देना है। एक महीने बाद या बरसात से पहले पुनः ये पेस्ट आपने लगा लेना है।
0: बात कर लेते हैं ब्राउन रॉट और ब्लॉसम ब्लाइट की यानी कि भूरा विगलन और कली झुलसा रोग की। इसके लक्षणों की यदि हम बात करें तो फलों के ऊपर भूरे दायरे वाले धब्बे पड़ते हैं जो धीरे धीरे राख की तरह ऊपरी परत से भर जाते हैं। भूरा विगलन रोग फफूंद फूलों को भी संक्रमित करता है जिससे कलियां मुरझा जाती हैं। इसके निदान के लिए किसान बागवान श्रोताओं पौधे पर कैप्टॉन 600 ग्राम फल तोड़ने से लगभग 3 सप्ताह पहले आप इसका छिड़काव समय रहते कर लें।
1: जी,
0: तो ये तो बात हुई किसान बागवान श्रोताओं जानकारी की। अब निश्चित रूप से आप सभी को इंतजार होगा मनोरंजन का, तो आइए हम और आप सुनते हैं कृतिका तनवर की आवाज में ये लोकगीत।

0: किसान भाइयों, अभी आपने सुना ये लोकगीत। किसान भाइयों, मनोरंजन के बाद अब कार्यक्रम में समय हो चला है जानकारी पूर्ण बातचीत सुनवाने का। तो किसान भाइयों, आइए सुनते हैं एक जानकारी पूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण। विषय रहेगा फूलों की खेती एक लाभकारी व्यवसाय। बातचीत में भाग ले रही हैं उमावती और उनसे जानकारी हासिल कर रहे हैं सुरेश चंद। आइए सुनते हैं।
1: जी किसान भाइयों और बहनों नमस्कार, आज हम आपके लिए फूलों की खेती लाभकारी व्यवसाय इस विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। और इस जानकारी को देने के लिए हमारे इस समय स्टूडियो में उपस्थित हैं उमावती, जो कि एक सफल किसान हैं और फूलों की खेती करती हैं। उमावती जी, आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद जी।
1: उमा जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आप फूलों की खेती करती हैं, आपका परिवार फूलों की खेती करता है, आप कितने समय से फूलों की खेती कर रही हैं?
2: मैं 10 सालों से फूलों की खेती करती आ रही हूँ और इसमें मेरा सहयोग देते हैं मेरे फैमिली मेंबर, मम्मी पापा, भाई भाभी, हम सभी मिलकर इस खेती को करते हैं।
1: जी बिल्कुल। तो उमा जी, ये आप हमें बताएंगे कि इसकी खेती आप किस तरह से करते हैं?
2: सबसे पहले हमें इसकी खेती करने के लिए नर्सरी की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए हमें पहले नर्सरी देनी पड़ती है। मैं यहाँ बात करूंगी गेंदा फूल की, जिसकी किस्म है लड्डू गेंदा और पूसा नारंगी। सबसे पहले हमें नर्सरी को तैयार करने के लिए मिट्टी का एक बेड बनाना है। उस बेड में हमें मिट्टी और गोबर की भुरभुरी खाद डालनी है, उसे मिक्स करना है। उसके बाद हमने उसमें बीज डाल देना है। बीज को हम 1.5 इंच गहरा डालेंगे, उसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे। जैसे ही हमने बीज डाल दिया, मिट्टी डाल दी, उसके ऊपर हमने सूखे घास या जो हमारे पास जूट की बोरी होती है उसे उसे ढक देना है और समय समय पर उसकी सिंचाई करनी है। इस बात का भी एक हमें विशेष ध्यान रखना है कि हम नर्सरी उस जगह पर डालें जहां पर धूप अच्छे से आती हो, क्योंकि नर्सरी डालने के लिए धूप की अधिक आवश्यकता होती है।
1: जी बिल्कुल। उमा जी, आपने बिल्कुल सही बात कही कि ये नर्सरी आपने उस जगह पर लगानी है जहां पर धूप ठीक से आती हो। और आपने ये भी जानकारी दी कि नर्सरी तैयार करने के लिए जो है मिट्टी का एक बेड कैसे बनाना है, और इसके अलावा आपने गोबर की जो भुरभुरी खाद है उसे डालना है, ये जानकारी आपने दी। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि नर्सरी कितने दिन में तैयार हो जाती है?
2: देखिए, जो हमने नर्सरी डाली है उसे तैयार होने में लगभग 40 या 45 दिन का समय लग जाता है। 40 या 45 दिन से ज्यादा हम नर्सरी को नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यदि हम नर्सरी को ज्यादा समय देंगे तो इसका पौधा बहुत बड़ा हो जाएगा।
1: जी बिल्कुल, आपने सही जानकारी दी कि नर्सरी 40 या 45 दिन के अंदर ही तैयार होती है। और नर्सरी में जो पौधे हैं आपने कितने समय तक रखने हैं और

0: कितने समय के बाद आपने इनको रोपित करना है। तो उमा जी, एक बात ये भी हम जानना चाहेंगे आपसे, हम अपने किसान भाइयों को भी ये जानकारी देना चाहेंगे कि आप एक सफल फूलों की खेती करती हैं, तो इस खेती के लिए आप बीज कहाँ से लेती हैं?
1: यदि मैं बात गुलदाउदी की करूँ तो इसे हम खेत में एक बार लगाएंगे और यह अगले वर्ष खुद ही उग जाती है, परंतु हमें लास्ट में इसकी कटाई जरूर करनी है। और गेंदे का बीज हम खुद तैयार कर सकते हैं।
0: अच्छा, जैसे आपने कहा कि गेंदे का बीज आप हम खुद तैयार कर सकते हैं, तो क्या आप भी अपने घर में तैयार करते हैं गेंदे का बीज?
1: जी, हम अपना जो गेंदे का फूल बीज है उसे घर में ही तैयार करते हैं। बीज को तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले अच्छे और स्वस्थ फूलों का चयन करना होगा।
0: अच्छा,
1: जिन फूलों का साइज अच्छा होगा, जिनका कलर अच्छा होगा, उन फूलों को हम बीज के लिए रखेंगे। जिन फूलों को हमने बीज के लिए रखा है, उन फूलों को हम प्लास्टिक के लिफाफे से ढक देंगे।
0: जी बिल्कुल, आपने सही बात कही कि जिन फूलों को आपने बीज के लिए रखा है किसान भाइयों, उन फूलों को प्लास्टिक के लिफाफे से ढक देना है। क्यों ढकना है प्लास्टिक के लिफाफे से? यहाँ आपने बात की कि बीज के फूलों को प्लास्टिक के लिफाफे से ढक देना है, उन्हें हम क्यों ढकेंगे, क्यों जरूरी होता है, ये भी बताएं।
1: हम इन फूलों को प्लास्टिक के लिफाफे से इसलिए ढकेंगे ताकि जो हमारा बीज का फूल है वो बिल्कुल सेफ रहे, इसे किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचे।
0: जी बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही बात की कि ये भी ध्यान रखना है कि फूल तैयार कब हो रहा है, और अगर त्योहारों के बीच फूल तैयार होगा तो ये अच्छे से बिक सकता है, इसकी अच्छी मांग होती है। तो ये ध्यान रखना है कि दशहरा या जैसा कि आपने कहा दिवाली, ऐसे मौकों पर अगर फूल मार्केट में जाता है, बाजार में जाता है, तो उसे ठीक मूल्य मिल सकता है। तो दशहरे और दिवाली के दौरान फूल की कितनी मांग होती है, इस पर भी आप बताएं।
1: दिवाली और दशहरे में इनकी अधिक मांग रहती है, क्योंकि जो फूलों का व्यवसाय है हम इन त्योहारों को देखकर ही करते हैं।
0: जी बिल्कुल, दिवाली और दशहरे में इसकी मांग रहती है, ये बात आपने सही कही। इसके अलावा जो अन्य उत्सव होते हैं उनका भी ध्यान रखा जा सकता है, उनके हिसाब से भी जो है फूलों को उगाया जा सकता है। आप इन फूलों को कैसे और कहाँ बेचते हैं, आप की बात करें जो आप उगाते हैं ना, हम ये जानते हैं आप शिमला के आसपास कहीं रहते हैं, आपका गाँव कहाँ है?
1: मेरा गाँव घैणी में है।
0: अच्छा, तो घैणी के आसपास आप कोई मार्केट पाते हैं या आपको कहीं दूर ले जाना पड़ता है?
1: नहीं, हमारा जो फूल तैयार होता है उसे हमें शिमला की मंडियों में या हम बाजार में इसे बेच देते हैं।
0: जी बिल्कुल ठीक,
1: इन फूलों को हम चंडीगढ़, शिमला, दिल्ली जैसी मंडियों में भी बेच सकते हैं। हम अपने फूलों को दिवाली दशहरे के दौरान इनकी मालाएं और बुकेट बनाकर इसे बेच सकते हैं। यहाँ हम बात करेंगे गुलदाउदी की, तो हम गुलदाउदी के बुकेट बनाते हैं और उसे 150 या 200 रुपए तक इसे बेच सकते हैं, या इसका हम पेयर भी बना सकते हैं, या इसे हम सिंगल भी बेच सकते हैं।
0: जी ये भी बिल्कुल सही कहा आपने कि आप दोनों तरह से फूलों की बिक्री कर सकते हैं, आप पेयर बना सकते हैं, सिंगल बेच सकते हैं। एक आपसे ये जानना चाहेंगे उमा जी कि क्या आप इन फूलों को स्वयं निकालते हैं या किसी को श्रम देकर ये काम करवाते हैं?
1: देखिए, हमने 1 बीघा में फूलों की खेती की होती है तो इतने फूल इकट्ठे करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसके लिए हम मजदूरी देकर इस काम को करवाते हैं, क्योंकि फूल को निकालने में समय लगता है और इसकी मालाएं बनाने में भी समय लगता है। इसमें जो सहयोग रहता है वो हमारे घर के जो सदस्य है उनका भी रहता है, क्योंकि इनकी मालाएं बनाने में अधिक समय लग जाता है।
0: जी बिल्कुल, उमा जी आप ये भी बताएं कि शिमला की जो मंडिया है या बाजार तक आप इसे कैसे ले जाते हैं और इसकी पैकिंग आप कैसे करते हैं फूलों की अगर बात करें तो?
1: जी, इसकी पैकिंग के लिए हम पेटियों का इस्तेमाल करते हैं। जो हमारी मालाएं बनी होती हैं उसे हम पेटियों में तह में लगाकर शिमला लाते हैं।
0: जी बिल्कुल, और आपको माला के रेट कितने तक मिल जाते हैं, इस पर भी आप बताएं हमारे किसान भाइयों को।
1: माला के रेट हमें बहुत अच्छे मिलते हैं, क्योंकि दिवाली और दशहरे में इसकी बहुत मांग रहती है। अगर हम एक माला का रेट आपको बताएं तो हम 80 या 100 रुपए के बीच एक माला को बेच सकते हैं। इसके जो बुके हैं वो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, तो उसके भी हमें बहुत अच्छे दाम मिलते हैं। जो हमारी गुलदावती है उसके बुके बनाकर हम अच्छा दाम प्राप्त करते हैं।
0: जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि ये जो है इनकी मालाएं बनाई जा सकती है, बुके बनाए जा सकते हैं और उस तरीके से फूलों को बेचा जा सकता है। तो एक बात हम ये कहना चाहेंगे कि यदि हम आय की बात करें तो कितनी आय जो है फूलों की खेती से हो जाती है, आप अपनी बात बताएं कि आप कितना जो है सालाना जो है व्यवसाय आप फूलों का करते हैं।
1: यदि मैं आय की बात करूं तो 1 बीघा खेत में मैं 70,000 और 80,000 के बीच आय प्राप्त कर लेती हूँ।
0: जी बिल्कुल, आपके पास सिंचाई का भी कोई साधन है फूलों की खेती के लिए?
1: जी, हमने टैंक बना रखे हैं, उसके माध्यम से हम स्प्रिंकलर के द्वारा सिंचाई करते हैं।
0: तो टैंक के लिए क्या कोई प्राकृतिक स्रोत है या कोई सरकारी योजना है जिससे पानी आता है?
1: प्राकृतिक स्रोत है, वहाँ से ही पानी आता है और हम अपने उस टैंक में उसे स्टोर करके रखते हैं।

0: और अगर सिंचाई की बात करें तो कौन सी ऐसी किस्म है जिसके लिए सिंचाई की ज्यादा जरूरत पड़ती है?
1: लड्डू गेंदा है, हमारी गुलदाउदी है, जैसे गुलाब है, इसके लिए भी सिंचाई की अधिक जरूरत पड़ती है।
0: जी बिल्कुल। और इसके अलावा हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि आपने क्या, जैसे पॉलीग्रीन हाउस होते हैं उसको बनाने का भी प्रयास किया, कुछ लोग जो है खुले में खेती करते हैं, कुछ लोग पॉलीग्रीन हाउस में जो है खेती करते हैं, तो आप किस तरीके की खेती करते हैं? खुले में खेती करते हैं, आपने भी ग्रीन हाउस बनाए हैं?
1: नहीं नहीं हमने जो है वो खुले में खेती करते हैं हम।
0: जी
1: पॉली हाउस में भी हम लगा सकते हैं, बट अभी हमने इस तरह का कोई पॉली हाउस नहीं लगाया है।
0: जी,
1: जी।
0: तो आप क्या मानते हैं कि खुले में जो खेती है वो ठीक होती है या पॉली हाउस में होती है? आपके कोई ऐसे कोई जानकार हैं जो पॉली ग्रीन हाउस में खेती करते हैं?
1: दोनों जगह अच्छी खेती हो जाती है। अगर हम पॉली हाउस की बात करें तो पॉली हाउस में भी अच्छी खेती हो सकती है और ओपन में भी हम अच्छी खेती कर सकते हैं।
0: जी बिल्कुल। एक उमा जी ये जानना चाहेंगे कि आपने फूलों की खेती के लिए कोई प्रशिक्षण भी लिया है आपने, कहीं आप जो है कहीं ट्रेनिंग में भी गए कभी?
1: नहीं, मैंने कोई प्रशिक्षण नहीं लिया है, हमने खुद ही खेती की है।
0: अच्छा, पारंपरिक तरीके से खेती करते हैं। पहले भी क्या आपके जो घर के लोग हैं पहले भी खेती कई साल से खेती करते रहे हैं फूलों की?
1: जी, पहले से लेकर हम फूलों की खेती करते आ रहे हैं। जैसे हमारे घर में मेरे पापा खेती करते हैं तो उनको देख देख के हमने भी खेती का काम करना शुरू किया है।
0: उमा जी एक बात और बताएं आपकी, आप फूलों की खेती करते हैं, आपका एक ये व्यवसाय है, पैतृक व्यवसाय है घर में, इसके अलावा आप और भी कृषि कार्य करते हैं?
1: जी, फूलों की खेती के साथ साथ हमें सब्जी उत्पादन का कार्य भी करती हूँ। जैसे गोभी, मटर, आलू, टमाटर, अदरक आदि मैं सब्जियां अपने खेत में उगाती हूँ।
0: जी बिल्कुल। तो एक बात और जानना चाहूंगा मैं कि एक बड़ी समस्या हो गई है ये जंगली जानवरों की, तो आपके क्षेत्र में भी जंगली जानवरों की समस्या है, और क्या फूलों की खेती में भी जो है जंगली जानवर जो है वो नुकसानदेह होते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं?
1: जी देखिए, अगर हम बात करें जंगली जानवरों की, तो जंगली जानवरों का आतंक इतना है कि हमें खेती करना बहुत मुश्किल हो रहा है, परंतु हमने अपने खेत में फेंसिंग कर रखी है तो इससे हमारी जो खेती है वो बच जाती है। साथ में हमें इसकी देखरेख भी करनी पड़ती है कि कहीं बंदर या कोई अन्य जानवर हमारी फसल को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं।
0: आपके क्षेत्र में बंदरों के अलावा जो है और कौन से जो पशु पक्षी नुकसान पहुंचाते हैं खेतीबाड़ी को?
1: इसके अलावा जो सबसे बड़ी समस्या देखने को आ रही है वो है सुअर, क्योंकि सुअर इतना आतंक फैला देते हैं कि जो हमारा खेत है उसे पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं, जिससे जो हमारी जैसे सब्जियां हैं या मैं बात करूं फूलों की, तो उसे वो पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं।
0: जी बिल्कुल। तो आपने जो फेंसिंग की बात की कि आपने फेंसिंग कर रखी है, तो ये किस तरह की फेंसिंग है? ये सामान्य साधारण फेंसिंग है, परंपरागत फेंसिंग है, या कोई सोलर फेंसिंग वगैरह भी आपने कर रखी है?
1: ये हमारी एक सोलर फेंसिंग है।
0: अच्छा, सोलर फेंसिंग की आपने।
1: जी
0: ठीक है। तो एक बात और बताएं उमा जी की, फूलों की खेती से आपने ये मुनाफे की बात की कि काफी मुनाफा इससे होता है, और हालांकि आप परंपरागत तरीके से कर रहे हैं खेती, तो बहुत ज्यादा तकनीक को अपनाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप पारंपरिक तरीके से भी खेती करते हैं तब भी आप फूलों की खेती से मुनाफा कमा सकते हैं, आपने बात कही, लेकिन आप इसमें जो है किन किन चुनौतियों का सामना करती हैं इस खेती में, ये भी आप बात बताएं, कितना आसान है फूलों की खेती करना?
1: देखिए, फूलों की खेती करना कोई कठिन कार्य नहीं है, बस इसमें चुनौतियों का सामना यही है कि इसमें हमारे जो जंगली जानवर है उनसे हमें अपनी खेती किस तरह से बचानी है, बस इस तरह की चुनौतियां सामने आती है।
0: और सिंचाई का प्रबंध भी जो है वो भी एक चुनौती है।
1: समय समय पर हम इसकी सिंचाई भी करते रहते हैं।
0: जी, जैसे कई बार सूखे जैसी स्थिति बन जाती है तो उसमें जो है ये सिर्फ आप आसमान पर आधारित नहीं हो सकते, सिर्फ बारिश पर आधारित नहीं हो सकते, सिंचाई के लिए आपको सिंचाई के साधन भी जुटाने होते हैं। जैसे कि आपने भी कहा कि आपने टैंक बनाए हैं और उससे आपने जो है पानी आपने संचित किया है, तो इस तरह की तकनीक जरूरी है। उमा जी एक बात बताएं कि आप युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश देती हैं कि युवा पीढ़ी को जो है फूलों की खेती को अपनाना चाहिए, और उन्हें जो है इसमें किस तरह के तौर तरीकों को अपनाए जाने की जरूरत है, अपनाने की जरूरत है?
1: मैं युवा पीढ़ी को संदेश देना चाहूंगी कि आजकल देखिए सभी पढ़े लिखे हैं, सभी नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। मैं इन्हें एक मैसेज देना चाहूंगी कि आपके पास देखो खेत है, अपनी जमीन है, उस जमीन में आप फूलों की खेती कर सकते हैं और उसे अधिक से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगी, जितना हम 10 या 1 साल में कमाते हैं दिवाली या दशहरे के त्योहारों के बीच, फूलों की खेती से हम 2 दिन में 70,000 और 80,000 के बीच या 1,00,000 के बीच इनकम अर्जित कर सकते हैं।
0: जी, तो किसान भाई और बहनों, फूलों की खेती लाभकारी व्यवसाय, इस विषय पर हमने बातचीत की उमावती जी से, जो कि एक सफल किसान हैं, एक सफल महिला किसान हैं। उमावती जी, आपने हमारे किसान और बागवान भाई बहनों के लिए फूलों की खेती पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद जी।
2: किसान बागवान श्रोताओं, अभी आपने सुना एक जानकारीपूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण, जिसका विषय था फूलों की खेती एक लाभकारी व्यवसाय। इस

0: जानकारीपूर्ण बातचीत में भाग ले रहे थे उमावती और उनसे अधिक जानकारी हासिल कर रहे थे सुरेश चंद।
1: किसान भाइयों, अब कार्यक्रम में समय हो चला है लोकगीत सुनवाने का, तो आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में ये लोकगीत।
0: जी

0: किसान बागवान श्रोताओं, अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में ये मीठा सा मधुर सा लोकगीत। अब समय हो चला है कार्यक्रम को यहीं समेटने का, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कृषि जगत के कल के अंक के मुख्य आकर्षणों की।
1: किसान भाइयों, कल काम की बातों के अंतर्गत जिस विषय पर हम आपको जानकारी देंगे वो है पॉली हाउस में बीज रहित खीरे का उत्पादन आप किस तरह से कर सकते हैं। साथ ही करवाएंगे आपका मनोरंजन लोकगीत से और सुनवाएंगे आपको एक जानकारी पूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण भी। विषय रहेगा ब्लूबेरी की खेती।
0: जी, तो इसी के साथ किसान बागवान श्रोताओं, आज्ञा दीजिए हमें कार्यक्रम को आज यहीं समेटने की। अगले कार्यक्रम में नए विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी और ढेर सारे मनोरंजन के साथ फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।
1: नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता दीपक।

अभी आपने सुना कृषि जगत कार्यक्रम 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं आकाशवाणी FM शिमला के साथ। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप और रेडियो की डीटीएच सेवा पर भी सुना जा सकता है।
1: चुनाव सिर्फ एक शब्द नहीं, ये है सच्चे लोकतंत्र की नींव, और मतदान है एक जागरूक नागरिक की पहचान, जिसे इस्तेमाल कर वो तय करते हैं अपने क्षेत्र, राज्य और देश की दशा व दिशा।
2: तो आइए अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आगामी पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर भाग लें और गांव के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।
1: आपका एक एक वोट तय करेगा पंचायत का भविष्य। तो निर्धारित तिथि को अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर सोच समझ कर और बिना किसी प्रभाव के मतदान जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी ही नहीं अधिकार है।
2: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने पर लगातार कार्य कर रही है सरकार। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के दूसरे चरण का चुनाव कल, सभी तैयारियां पूरी। पंचायत चुनावों में कांग्रेस और भाजपा ने किए अपनी अपनी जीत के दावे। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, पंचायती राज चुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल कहना पूरी तरह गलत। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी, ऊना में पारा 44 डिग्री के पार, कल वर्षा और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार शिक्षा क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण की दिशा में लगातार कार्य कर रही है और इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री आज शिमला जिला के नेरवा में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के साथ संवाद कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान विद्यार्थियों के सवालों के जवाब में कहा कि हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि राज्य अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी CBSE स्कूल खोले जाएंगे ताकि गांव के बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों को परीक्षाओं के लिए तैयार करते हैं, लेकिन विधायक बनने की परीक्षा के लिए कोई तैयारी नहीं करवाता। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि भविष्य में बादल फटने की घटनाएं केवल हिमाचल तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में इन घटनाओं के बढ़ने की संभावना है। उन्होंने कहा कि ये खुलासा केंद्र सरकार द्वारा करवाए गए एक अध्ययन में हुआ है। मुख्यमंत्री शिमला में नगर निगम के पूर्व उप महापौर टिकेंद्र पंवर द्वारा संपादित पुस्तक सिटी लिमिट्स

0: द क्राइसिस ऑफ अर्बनाइजेशन के मौके पर बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए विकास को आगे बढ़ा रही है।
1: हमारे पास भगवान ने सब चीजें दी, प्राकृतिक सौंदर्य दिया है, पानी दिया है, हवा दी। हमारी 90% लैंड पहाड़ों से गिरी है, 90% हमारी पॉपुलेशन गांव में है, अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा हो रहा है और 2040 तक हिमाचल प्रदेश की 50% पॉपुलेशन अर्बनाइजेशन में रहनी शुरू कर। अब एक जो हमारी अर्बन है, अब सिटी बिगड़ चुकी है और जो सिटी बनाने जा रहे हैं उसको हमने कैसे सोचा? एक तो बिगड़ी सिटी जिसको आपने और हमने पूर्वजों ने बना दिया।
0: प्रदेश में कल 28 मई को पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान होगा। मतदान के लिए चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतदान सुबह 7 बजे शुरू होगा और दोपहर बाद 3 बजे तक चलेगा। मतदान के तुरंत बाद पंचायतों में प्रधान, उप प्रधान और सरपंचों के लिए पड़े वोटों की गिनती होगी, जबकि जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए हुए मतदान की गिनती 31 मई को होगी। 31 मई को ही प्रदेश के 4 नगर निगमों सोलन, मंडी, पालमपुर और धर्मशाला के लिए हुए चुनाव की मतगणना भी होगी। पंचायती राज संस्थाओं के दूसरे चरण के चुनाव के लिए कल 1274 पंचायतों में वोट डाले जाएंगे। राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के तीसरे और आखिरी चरण में 30 मई को 1187 पंचायतों में मतदान होगा। इस बीच कल होने वाले दूसरे चरण के चुनाव के लिए आज उम्मीदवारों ने भीषण गर्मी के बावजूद राज्य के विभिन्न हिस्सों में घर घर जाकर वोट मांगे और अपनी जीत पक्की करने का प्रयास किया। प्रदेश में बीते रोज हुए पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के पहले चरण के नतीजे घोषित होने के बाद अब प्रदेश के दोनों प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस अपनी अपनी जीत के दावे करने में जुट गए हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज मंडी में दावा किया कि पंचायत चुनावों में भाजपा को ऐतिहासिक जीत मिली है, जबकि कांग्रेस की करारी हार हुई है। जयराम ठाकुर ने दावा किया कि पंचायत चुनाव के पहले चरण में प्रदेश की लगभग 75% पंचायतों में भाजपा समर्थित प्रधान, उप प्रधान और सरपंच चुने गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने अब इस सच्चाई को अच्छी तरह से समझ लिया है कि यदि गांव और क्षेत्र का वास्तविक विकास करना है तो भाजपा के साथ ही आगे बढ़ना होगा। जयराम ठाकुर ने भाजपा को जनादेश देने के लिए मतदाताओं का आभार भी जताया। दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने भी पंचायत चुनावों में पार्टी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में राज्य की जनता ने कांग्रेस के पक्ष में जनादेश दिया है। विनय कुमार ने ये भी कहा कि प्रदेश के लोगों ने भाजपा को पूरी तरह से नकार दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे जनहित के कार्यों के चलते जिस तरह से पंचायत चुनाव में कांग्रेस को समर्थन मिला है, उसी तरह अगले साल विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस फिर से जीत कर सत्ता में लौटेगी। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को विधानसभा या लोकसभा की तरह सत्ता का सेमीफाइनल बताना पूरी तरह गलत है। विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि पंचायत चुनाव व्यक्तिगत क्षमता, स्थानीय जनसमर्थन और उम्मीदवारों की मेहनत के आधार पर लड़े और जीते जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पंचायत चुनावों के अभी 2 चरण होने बाकी हैं और पूरी तस्वीर सामने आने के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी।
2: जो इसमें चुनावों में चाहे वो पंचायत के प्रधान हैं, चाहे वो जिला परिषद के हैं, चाहे वो हमारे उप प्रधान है, मैक्सिमम प्रधान जो है वो किसी पार्टी लाइन पे जीत के नहीं आते हैं। अभी तो क्योंकि फर्स्ट फेज इस चुनावों का हुआ है, 2 फेज अभी और इसके होने हैं अगले 2 दिन के अंदर, उसके बाद इसमें स्थिति स्पष्ट होगी। मगर मैं आपको ये पूरी मजबूती के साथ कह सकता हूं कि जिस तरीके से नगर पंचायतों में, नगर निकायों में अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का रहा है, उसी तरीके से जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव का परिणाम भी आना है 4 नगर निगमों का, वहां पे भी कांग्रेस पार्टी का अच्छा प्रदर्शन रहेगा।
0: प्रदेश में 1 जून से 15 जून तक हर व्यक्ति अपनी और अपने परिवार की गणना स्वयं कर सकेगा। स्वगणना के लिए डिजिटल तकनीक का सहारा लिया जाएगा। राज्य जनगणना कार्य निदेशालय के अनुसार स्वगणना से जनगणना का काम तेजी से और पारदर्शी ढंग से हो सकेगा। स्वगणना में डिजिटल तकनीक के प्रयोग से

देशवासियों को अपनी गणना और जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। इसके बाद उन्हें स्वगणना आईडी नंबर मिलेगा। ये नंबर जनगणना कर्मी के घर घर सर्वेक्षण करने के दौरान उन्हें बताना होगा। ऐसा करने से स्वगणना के दौरान पोर्टल पर अपलोड की गई जानकारी स्वतः ही जनगणना कर्मी के मोबाइल ऐप में प्रदर्शित हो जाएगी और इसकी पुष्टि भी हो जाएगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि धर्मशाला में आयोजित आईपीएल मुकाबलों ने हिमाचल, खासकर धर्मशाला, कांगड़ा, मैकलोडगंज, पालमपुर और आसपास के क्षेत्रों की स्थानीय अर्थव्यवस्था को बड़ा प्रोत्साहन दिया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने छोटे पहाड़ी राज्य हिमाचल में क्रिकेट को नई पहचान देने के साथ साथ खेल पर्यटन को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का ऐतिहासिक कार्य किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से न केवल प्रदेश की आर्थिकी को बल मिलता है बल्कि राज्य की संस्कृति के प्रचार प्रसार को भी बढ़ावा मिलता है। राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार ने आज भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल से

0: ही नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का ऐतिहासिक कार्य किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से न केवल प्रदेश की आर्थिकी को बल मिलता है बल्कि राज्य की संस्कृति के प्रचार प्रसार को भी बढ़ावा मिलता है। राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार ने आज भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल से समीरपुर स्थित उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने इस मौके पर प्रोफेसर धूमल को मोदी युग में भारत का सशक्तिकरण नामक पुस्तक भी भेंट की। सिकंदर कुमार ने इस मौके पर कहा कि प्रोफेसर धूमल का राजनीतिक जीवन संगठन, सुशासन और जनसेवा का प्रेरणादायक उदाहरण रहा है। सिकंदर कुमार ने कहा कि प्रदेश के विकास, भाजपा संगठन के विस्तार और आमजन के हितों की रक्षा में प्रोफेसर धूमल का योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। इस मौके पर संगरोह पंचायत के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों ने भी प्रोफेसर धूमल से शिष्टाचार भेंट की। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। खासकर राज्य के मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सिरमौर, सोलन और मंडी में लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। ऊना जिला में तापमान के 44 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाने के चलते छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से हल्के रंग के कपड़े पहनने, शरीर में पानी की कमी न होने देने और 12 से 4 बजे के बीच अनावश्यक रूप से घर से न निकलने की सलाह दी है। सिरमौर से हमारे संवाददाता सतीश शर्मा के मुताबिक हीटवेव से अस्पतालों में हीट स्ट्रोक और उल्टी दस्त के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अत्यधिक गर्मी के कारण राज्य के मैदानी क्षेत्रों में बाजारों से रौनक गायब हो गई है। हालांकि शिमला, मनाली और डलहौजी जैसे शहरों में गर्मी से बचने के लिए पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि 28 मई से हिमालय क्षेत्र में ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके प्रभाव से 28 मई को राज्य के 5 जिलों चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में ओलावृष्टि, अंधड़, आसमानी बिजली गिरने और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी तूफान चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने पर लगातार कार्य कर रही है सरकार। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के दूसरे चरण का चुनाव कल, सभी तैयारियां पूरी। पंचायत चुनावों में कांग्रेस और भाजपा ने किए अपनी अपनी जीत के दावे। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, पंचायती राज चुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल कहना पूरी तरह गलत। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी, ऊना में पारा 44 डिग्री के पार, कल वर्षा और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला 103.7 MHz पर भी प्रसारित किया जा रहा था। कृपया हमारी अगली घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। आइए सुनते हैं देश गान।

0: स्वागत आप सभी का 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला पर।
1: शुभवाणी लाभवाणी जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी। माटी की महक है जहां, खेतों खलियानों की वही आवाज घाटियों में गूंजती है। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एफएम शिमला।

सभी सुनने वालों को रेखा ठाकुर का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, तपती गर्मी और दिन भर की भाग दौड़ के बाद अब वक्त है सुकून की कुछ ठंडी फुहारों का। सुन रहे हैं आप 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी FM शिमला। उम्मीद है कि आप सभी इस गर्मी के मौसम में अपना ख्याल रख रहे होंगे, खूब पानी पी रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आइए चलिए हमारे साथ इस खुशनुमा शाम में एक बेहतरीन सफर पर, जहां है बेहतरीन गाने, दिलचस्प बातें और ढेर सारी मस्ती। तो बने रहिए हमारे साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी FM शिमला के साथ। और ये कार्यक्रम का आगाज करने से पहले आप सभी से यही कहेंगे कि सूरज की तपिश अब ढलने लगी है, शाम की ठंडी हवा चलने लगी है। छोड़िए दिन भर की सारी थकान जनाब, क्योंकि संगीत की महफिल अब सजने लगी है।

तो आइए आगाज करते हैं आज के सुहाने से सफर का। हम और आप मिलकर FM शिमला के साथ भूले बिसरे गीत कार्यक्रम लेकर हाजिर हो चुके हैं हम आप सभी के लिए। गीत लेकर आए हैं कुछ ऐसे जिन्हें कभी हम बहुत सुना करते थे, बहुत गुनगुनाया करते थे, लेकिन यादों की धुंधली इस परछाई में शायद कहीं हम उन्हें भूलने लगे हैं। लेकिन आपकी यादों को हम भूलने नहीं देंगे, उन्हें ताज़ा फिर से करने के लिए लेकर आए हैं कुछ बेहतरीन नगमे। उसमें सबसे पहले जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं ना, जानते हैं हम कि आप सभी गुनगुना उठेंगे और आपके चेहरे की एक प्यारी सी मुस्कान ज़रूर लौट आएगी। और दोस्तों, ये वो गीत है जिसे हमने तो बहुत सुना और हमने उसे गुनगुनाया भी बहुत, लेकिन क्या हम अपने आने वाली पीढ़ी को उस गीत को सुनवा पाए हैं? क्या रिश्तों की कदर उन्हें बता पाए हैं? अगर नहीं तो आइए आज इसकी शुरुआत कर ही देते हैं। तो लीजिए सुनिए एक प्यारा सा गीत, FM शिमला के साथ आपकी यादों को ताज़ा भी करेगी और आपके आने वाली पीढ़ी के लिए भी शायद कुछ नई यादें बनाएगा ये गीत। शब्बीर कुमार, चंद्रा रानी मुखर्जी और उत्तरा केलकर की आवाज़ों में घर घर की कहानी फिल्म का ये नगमा।

0: जी बिल्कुल जानते हैं हम कि ये गीत आपने भी बहुत दिनों बाद सुना होगा और आपके चेहरे पे भी एक प्यारी सी मुस्कान आई ही होगी कि ये गीत कभी आप ही गुनगुनाया करते थे। बिल्कुल सही, ये दोस्तों वो दौर था जब हर तरह के गीत बनते थे। रिश्तों के ताने बाने को इतनी खूबसूरती से पिरोया जाता था कि सीधे दिल में उतर जाया करते थे। और हम भी उम्मीद करते हैं कि गीतों के इन माध्यम से हम भी आपकी मीठी मीठी यादों को फिर से तरोताज़ा कर पाए होंगे।
1: गांव की पहचान होती है उसकी मजबूत पंचायत से, और पंचायत मजबूत बनती है आपके एक वोट से।
2: क्योंकि ईमानदारी और बिना किसी के प्रभाव में आए दिए गए आपके वोट ही तय होते हैं गांव, और बनती है सड़क, पानी, स्वच्छता और रोजगार संबंधी नीतियाँ।
1: इसीलिए 26 मई, 28 मई और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपनी भागीदारी निभाएं।
2: अपने परिवार और गांव वालों को भी जागरूक बनाएं और 100% मतदान के संकल्प को हासिल करने का लक्ष्य बनाएं।
1: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।

0: चुनाव सिर्फ एक शब्द नहीं, ये है सच्चे लोकतंत्र की नींव, और मतदान है एक जागरूक नागरिक की पहचान, जिसे इस्तेमाल कर वो तय करते हैं अपने क्षेत्र, राज्य और देश की दशा व दिशा।
1: तो आइए अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आगामी पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर भाग लें और गांव के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।
0: आपका एक एक वोट तय करेगा पंचायत का भविष्य। तो निर्धारित तिथि को अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर सोच समझ कर और बिना किसी प्रभाव के मतदान जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी ही नहीं अधिकार है।
1: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: न झटको जुल्फ से पा

0: आपका गांव है आपका गर्व, इसको विकसित बनाने के लिए आइए मिलके मनाएं लोकतंत्र का पर्व।
1: हो चुकी है देवभूमि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा। ये मतदान 3 चरणों में 26, 28 और 30 मई को होगा। ऐसे में आए एक सच्चा नागरिक बनकर मिलकर निभाएं जिम्मेदारी और भारी संख्या में मतदान देकर दिखाएं अपनी भागीदारी।
0: आपका हर एक कीमती वोट आपके गांव की दशा और दिशा तय करेगा, तो अपने मताधिकार का प्रयोग करना ना भूलें। राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: एक और प्यारा सा गीत आप सभी के नाम लता मंगेशकर की आवाज में, आइए सुनते हैं बरखा फिल्म का नगमा। गीत के बोल राजेंद्र कृष्ण के और संगीत चित्रगुप्त का। भूले बिसरे गीत आप सुन रहे हैं हमारे साथ एफएम शिमला पर।

0: हमारा गांव है हमारी पहचान, हमारा गांव है हमारा अभिमान। आइए मिलकर दें इसके विकास में अपना योगदान।
1: हम सब ने ठाना है कि 100% मतदान के लक्ष्य को पाना है।
0: पंचायत चुनाव आ रहे हैं, जहां आपका हर ईमानदारी से दिया गया वोट तय करता है गांव की दशा और दिशा, साथ ही बनता है गांव के विकास का आधार।
1: तो 26, 28 और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और अपने परिवार और आस पास के हर वोटर को मतदान के लिए प्रेरित करे।
0: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।

0: हिमाचल के युवाओं, अब सिर्फ सोशल मीडिया पर ओपिनियन देने का नहीं, वोट देने का भी वक्त आ गया है।
1: इस पंचायत इलेक्शन में 50 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने मत का अधिकार इस्तेमाल करेंगे और हजारों फर्स्ट टाइम वोटर्स भी बनेंगे इस बदलाव का हिस्सा। 26 मई, 28 मई और 30 मई, याद रखिए ये तारीखें।
0: आपकी एक वोट आपके गाँव की सोच, विकास और लीडरशिप को तय करेगी। तो निकलिए घर से और बनिए जिम्मेदार नागरिक। पंचायत चुनाव 2026, वोट जरूर करें।

मिलते ही नजर आप मेरे दिल में आ गए। अफसोस है कि आप भी मुश्किल में आ गए। मिलते ही नजर होए

0: नजर आए, मिलते ही नजर आप मेरे दिल में आ गए।
1: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम सुन रहे थे आप और बेहद ही खूबसूरत नगमों का आनंद आपने लिया न्यू दिल्ली फिल्म के इस गीत के साथ जिसे आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में। फिलहाल कार्यक्रम में अभी बस इतना ही। सुन रहे हैं आप 103.7 MHz आकाशवाणी FM शिमला। फिल्म संगीत लेकर जल्द ही हाजिर हो रहे हैं आप सभी के लिए, बने रहिए FM शिमला के साथ।
2: हिमाचल में फिर से सज गया है लोकतंत्र का महापर्व, पंचायत चुनाव 2026।
3: 26, 28 और 30 मई को 3 चरणों में होने जा रहे हैं पंचायत इलेक्शंस, जहां आपकी एक वोट तय करेगी आपके गांव का कल।
2: सड़क, पानी, सफाई, रोजगार और गांव के विकास से जुड़े फैसलों में आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है।
3: इस बार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और चुनिएगा ईमानदार, योग्य और जिम्मेदार प्रतिनिधि। हिमाचल पंचायत इलेक्शंस 2026, मजबूत पंचायत, मजबूत हिमाचल।
4: बड़ा कठिन है प्रश्न ये भैया, आए बारंबार, इस उम्र में पूछे बीवी क्या करते हो प्यार, मुझसे क्या करते हो प्यार। अरे पूछे मेरी बीवी, डू यू लव मी,
5: तो क्या कहा आपने?
4: अरे बरसों से तो कहता आया आई लव यू, हर दिन हर पल यही कहूँ मैं आई लव।
1: जी हाँ, कुछ ऐसे ही बेहतरीन नगमे लेकर आए हैं आप सभी के लिए। और कर्मा फिल्म का गीत पेश है दिलीप कुमार, मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में।

0: हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु वचनबद्ध है। आइए सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का संदेश।
1: नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाने का महत्वपूर्ण अवसर है। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने सुंदर पहाड़, साफ पानी और शुद्ध हवा का अनमोल उपहार दिया है। आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति की रक्षा में अपना योगदान दें। स्वस्थ पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए प्रकृति से प्रेम करें और हिमाचल को हरियाली और स्वच्छता का आदर्श बनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनहित में जारी।
3: बेवजह हुआ इश्क तुमसे, बेवजह हुआ इश्क तुमसे, तो बेपरवाह हुए हम जमाने से। बेजान था कब से ये शहर हमारा, ये रौनके है तेरे आ जाने से। विनोद राठौड़, अलका याग्निक को आइए सुनते हैं प्रेम ग्रंथ फिल्म में। गीत के बोल आनंद बख्शी के, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: गांव की पहचान होती है उसकी मजबूत पंचायत से, और पंचायत मजबूत बनती है आपके एक वोट से।
1: क्योंकि ईमानदारी और बिना किसी के प्रभाव में आए दिए गए आपके वोट ही तय होते हैं गांव, और बनती है सड़क, पानी, स्वच्छता और रोजगार संबंधी नीतियाँ।
0: इसीलिए 26 मई, 28 मई और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपनी भागीदारी निभाएं।
1: अपने परिवार और गांव वालों को भी जागरूक बनाएं और 100% मतदान के संकल्प को हासिल करने का लक्ष्य बनाएं।
0: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
2: फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं एफएम शिमला के साथ, एक से एक बेहतरीन नगमे पेश कर रहे हैं आप सभी के लिए। तो आइए आशा भोसले, शब्बीर कुमार, कुमार सानू को एक साथ सुनते हैं घायल फिल्म के इस गीत में।

0: गीतों का ये सिलसिला FM शिमला पर लगातार बना रहेगा रात्रि 11 बजे तक। लेकिन फिलहाल इसी गीत के साथ फिल्म संगीत में अभी बस इतना ही। 9:15 पे हम आपसे फिर मिलेंगे। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब आपको सुनवाते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या। रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे News@9। आप यूं ही बने रहिए FM शिमला के साथ, सुनते रहिए।
1: केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक PDS योजना के विस्तार को मंजूरी दी। योजना पर 25,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। कहा, यह प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को बढ़ावा देती है। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित। UCC लागू करने वाला 3रा राज्य बना। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। और भारत 2027 एशियाई रिले और 2028 एशियाई इंडोर चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
2: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में जो FCI का बड़ा गोडाउन होता है वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स हैं उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश के प्रत्येक जरूरतमंद लोगों को समय पर अनाज पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में इस प्रणाली को और अधिक आधुनिक तथा प्रभावी बनाने का निर्णय लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक PDS योजना के विस्तार की मंजूरी का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदान

0: अतः सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत SIR करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने SIR को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में SIR की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे। असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया है। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था।
2: असम में समान नागरिक संहिता विधेयक का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानूनी व्यवस्था स्थापित करना है। संवैधानिक संरक्षण और पारंपरिक रीति रिवाजों को सुरक्षित रखने के लिए अनुसूचित जनजातियों को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है। वहीं विभिन्न धर्मों पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर समानता और लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक समान कानूनी ढांचा लागू करने का प्रावधान किया गया है। विवाह संबंधी प्रावधानों के तहत विधेयक में एक विवाह की व्यवस्था अनिवार्य की गई है तथा वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और वधु की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता पारित होने पर असम की जनता को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि समान नागरिक संहिता भाजपा का स्थापना दिवस से ही संकल्प रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी के और लू के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का विशेष ध्यान

0: रखने की अपील की है। एक रिपोर्ट।
1: आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों के साथ मौजूदा लू की स्थिति पर चर्चा की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि उन विशेष कदमों पर चर्चा हुई जिन्हें प्रत्येक मंत्रालय और विभाग अपने अपने कार्यक्षेत्र में उठा सकते हैं।
2: प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में मौसम की जो हीट वेव की परिस्थिति है उसका भी सभी मंत्रियों के साथ चर्चा की और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्र के प्रति आह्वान है उसी आह्वान के तहत सभी से अपने अपने मंत्रालय में सुविधा पहुंचाने की किस तरह की सुविधाएं की जा सकती है उसके ऊपर भी चर्चा हुई।
1: आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर विक्रम ने लोगों को लू से बचने के लिए खुद को हाइड्रेटेड रखना और ORS जैसे इलेक्ट्रोलाइट युक्त तरल पदार्थों का सेवन करना और दिन के समय तपती धूप में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी।

0: तरल पदार्थों का सेवन करना और दिन के समय तपती धूप में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उधर राजस्थान में भी राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: दिन और रात के बढ़ते तापमान से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में जनजीवन पर असर पड़ा है। दिन के समय गांवों और शहरों में सड़कों और बाजारों में लोगों की आवाजाही सीमित हो गई है। विभिन्न जिलों में प्रशासन की ओर से गर्मी से निपटने के लिए कई स्तरों पर इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही विभिन्न संस्थाएं भी ठंडे पेय का वितरण कर लोगों को राहत पहुँचाने के जतन में जुटी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करने की भी अपील की है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज सभी न्यायाधीशों से अपील की कि वे भीषण गर्मी को देखते हुए मामलों की सुनवाई ऑनलाइन करें। न्यायालय ने कहा कि वह इस संबंध में न्यायिक निर्देश जारी नहीं कर सकता। न्यायालय दिल्ली में बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए सभी अदालतों में ऑनलाइन कार्यवाही करने के निर्देश देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर सरकार द्वारा पूर्व प्रभावी 28% GST को बरकरार रखते हुए इसे वैध बताया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म केवल मध्यस्थ नहीं है बल्कि उन्हें आपूर्तिकर्ता माना जाना चाहिए और उन पर वस्तु तथा सेवा कर GST लागू होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upssconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in के माध्यम से 5 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश की उन्नति के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास बेहद आवश्यक है। आज गांगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने शिक्षा को सशक्तिकरण का मार्ग बताया और विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने विचारों, नवाचारों और आपसी विश्वास के जरिए राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। और खेलों में म्यूनिख में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 43 हिट लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने जूनियर और सीनियर दोनों वर्ग में विश्व रिकॉर्ड कायम किया। फाइनल में ईशा ने पूर्व विश्व चैंपियन मिरोस्लावा मिंचेवा और कोरिया की शीर्ष खिलाड़ी जीन यांग को हराकर पहला स्थान हासिल किया। डेरिन वेनेकैंप दूसरे और मिरोस्लावा मिंचेवा तीसरे स्थान पर रहीं। उधर न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 4 विकेट पर 211 रन बना लिए हैं। वैभव सूर्यवंशी ने 97 रन की पारी खेली। भारत ने

0: इंडोर चैंपियनशिप 2027 और एशियन रिले 2028 की मेजबानी के अधिकार हासिल कर लिए हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष आदिल सुमरेवाला ने आज इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 का आयोजन भुवनेश्वर में, जबकि चंडीगढ़ एशियन रिले 2028 की मेजबानी करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार को मंजूरी दी। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित, यूसीसी लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। और भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने आईएसएसएफ विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Centre approves extension of Sarthak PDS scheme to modernise public distribution system with outlay of over 25,500 crore rupees. Severe heat wave conditions to continue over central and northwest India during next 2 to 3 days. Prime Minister Narendra Modi urges citizens to take care of vulnerable people amid soaring mercury. Supreme Court upholds legality of Election Commission's SIR drive, says exercise advances free and fair elections. Assam Assembly passes Uniform Civil Code Bill, becoming third state in the country to adopt the legislation. Indian shooter Isha Singh breaks world record in women's 25-meter pistol event, clinching gold at ISSF World Cup in Munich. And India to host 2027 Asian Relays and 2028 Asian Indoor Championships. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, today approved the continuation of the scheme to modernise the public distribution system, PDS, including ration transport, dealer support and technology upgrades till March 2031. The umbrella scheme, called Scheme for Assistance in Ration Transport and Handling Income with Automation in PDS, Sarthak PDS, has been cleared in the 16th Finance Commission cycle award period with an outlay of 25,530 crore rupees as central share. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav made the announcement regarding the Cabinet's decision while briefing media in New Delhi.
2: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं।
3: थ्री मेजर रिफॉर्म्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोग्राम टुडे। फर्स्ट, द गवर्नमेंट विल सपोर्ट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर्ड इन मूविंग फूड ग्रेन्स फ्रॉम लार्ज एफसीआई वेयरहाउसेस इन द स्टेट्स टू फेयर प्राइस शॉप्स अक्रॉस डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स एंड डिविजन्स। सेकंड, देयर वाज अ नीड टू इंक्रीज द रेम्युनरेशन ऑफ फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एंड ए डिसीजन हैज बीन टेकन इन दिस रिगार्ड एज वेल। थर्ड, एफर्ट्स विल बी मेड टू मॉडर्नाइज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी।
2: पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं?
1: The minister said the scheme will work towards fulfilling the government's commitment to 81.35 crore persons covered under the National Food Security Act. Prime Minister Narendra Modi has said the government is committed to ensure that food grains reach every needy person in the country on time through PDS. In a social media post, the Prime Minister said the CCEA's decision will make the delivery, logistics and transportation arrangements under the PDS more transparent and efficient, while also speeding up the resolution of complaints. Home Minister Amit Shah also hailed the approval of Sarthak PDS Phase 2 by the Union Cabinet. Normal life has been severely affected due to the intense heat waves sweeping several parts of the country, including central and northwest India. People are facing difficulties as temperatures continue to remain abnormally high during both day and night. In Rajasthan, Sri Ganganagar recorded a maximum temperature of 48.2 degrees Celsius today, while several cities including Jaisalmer, Bikaner and Chur

एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम आप सभी का 103.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ। तो जनाब, हम तो हाजिर हो चुके हैं, आप ही जल्दी से आइए और बनाइए हमारे साथ इस सफर को और भी सुहाना। क्योंकि हम हाजिर हो चुके हैं लेकर प्रोग्राम एक फिल्म से, और आज की हमारी फिल्म कौन सी है दोस्तों? कुछ फिल्में सिर्फ देखी नहीं जाती है बल्कि दिल में बस जाती है। 80 के दशक की भी एक ऐसी ही खूबसूरत प्रेम कहानी है, जहां पहाड़ों की वादियों में पनपता मासूम प्यार, बिछड़ने का दर्द और त्याग की मिसाल, मधुर संगीत में सजी कहानी आज भी लोगों के दिलों को छू जाती है। आज बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जो सिनेमा थिएटर में तो रिलीज नहीं हुई थी, लेकिन बावजूद उसके भी उस फिल्म ने 2 करोड़ रुपए कमाए थे। कुछ समझ पाए आप? नहीं तो चलिए हम बताते हैं। हम बात कर रहे हैं 1989 में रिलीज हुई लाल दुपट्टा मलमल का फिल्म की। जी हाँ, टी सीरीज के बैनर तले बनी गुलशन कुमार की पहली फिल्म। ये एक बेहद अनोखी म्यूजिकल हिट फिल्म थी जिसने बिना सिनेमाघरों में रिलीज हुए भी लगभग 2 करोड़ रुपए कमा लिए थे। बात करते हैं पहले इस फिल्म के गानों की। इस फिल्म और इसके गानों से जुड़ी कुछ सबसे दिलचस्प और रोचक जानकारियां आपको बताते हैं। जी हाँ, बिना रिलीज के सुपर डुपर हिट रही थी। आमतौर पर फिल्मों से गाने बनते हैं, लेकिन यहाँ पे गानों के साथ जो है वो फिल्म बनी थी। इस फिल्म के साथ कुछ अलग ही हुआ। सबसे पहले 1988 से 1989 में गुलशन कुमार ने इसका म्यूजिकल एल्बम जो है वो रिलीज़ किया था। एल्बम इतना ज़बरदस्त हिट हुआ कि फिल्म की पटकथा इन गानों के आधार पर ही तैयार की गई थी। लेकिन ये फिल्म थिएटर में रिलीज़ नहीं हुई थी, ये फिल्म सीधे वीडियो डायरेक्ट टू वीडियो के रूप में रिलीज़ की गई थी। इसके बावजूद ये उस दौर की सबसे बड़ी म्यूजिकल हिट्स फिल्मों में से एक बनी थी। इस फिल्म के बजट और कमाई की बात करें ना, तो आपको बताएं कि फिल्म को महज 75 लाख के रुपए के जो है बजट में बनाया गया था, जिसने बिना सिनेमाघरों में लगे भी 2 करोड़ रुपये की शानदार कमाई कर ली थी। फिल्म में साहिल चड्डा और बेवरली जो है वो मुख्य भूमिका में नजर आई थी। साहिल चड्डा शालू के नाम से और बेवरली शब्बो के नाम से इसमें जो है वो नजर आए थे।

गीत संगीत के साथ दोस्तों फिल्म की जो है कहानी वो भी आपको बता ही देते हैं। खूबसूरत पहाड़ियों के बीच बस एक गांव में शालू और शब्बो रहते हैं। दोनों एक दूसरे से बेहद प्रेम करते हैं। उनका सच्चा प्यार मासूम और एक दूसरे के प्रति समर्पण से भरा होता है। गांव के लोग भी उनके प्रेम के बारे में जानते हैं और दोनों एक साथ अपना भविष्य देखने भी लगते हैं। लेकिन उनकी खुशियों को जल्द ही नज़र लग जाती है। गांव का दबंग उन्हें बदनाम जो है वो करने की कोशिश करता है। बनवारी शब्बो को पाना चाहता है। जब उसे पता चलता है कि शब्बो शालू से प्यार करती है तो वो दोनों के बीच दुश्मनी पैदा करने की

0: भी कोशिश करता है। कई बार शालू को धमकाता है और शबू पर दबाव डालता है कि वो एक दूजे से दूर रहे। और इसी बीच एक दिन बनवारी शब्बो के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश भी करता है और अपनी इज्जत बचाने के लिए शब्बो उसका विरोध करती है। संघर्ष के दौरान बनवारी की मौत हो जाती है। शब्बो डर जाती है क्योंकि उसे लगता है कि अब उसे सजा मिल सकती है और उसका जीवन बर्बाद भी हो सकता है।
1: चुनाव सिर्फ एक शब्द नहीं, ये है सच्चे लोकतंत्र की नींव, और मतदान है एक जागरूक नागरिक की पहचान, जिसे इस्तेमाल कर वो तय करते हैं अपने क्षेत्र, राज्य और देश की दशा व दिशा।
2: तो आइए अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आगामी पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर भाग लें और गांव के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।
1: आपका एक एक वोट तय करेगा पंचायत का भविष्य। तो निर्धारित तिथि को अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर सोच समझ कर और बिना किसी प्रभाव के मतदान जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी ही नहीं अधिकार है।
2: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: कहानी में अब शब्बो को बचाने के लिए शालू एक बड़ा त्याग करता है। वो हत्या का आरोप अपने ऊपर ले लेता है और पुलिस के सामने अपराध स्वीकार कर लेता है, जो कि उसने कभी किया ही नहीं था। इसके बाद उसे जेल भी भेज दिया जाता है और शालू जानता है कि उसने कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन वो अपने प्यार की रक्षा के लिए ये बलिदान दे देता है। यहाँ पीछे शालू के जेल जाने के बाद शब्बो की जिंदगी कठिन हो जाती है। समाज के ताने, अकेलापन, शालू की याद उसे हर पल सताती है। दूसरी ओर कुछ स्वार्थी लोग उसकी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश भी करते हैं, फिर भी शब्बो अपने प्यार और विश्वास को नहीं छोड़ती।

0: दोस्तों दूसरी ओर जेल में शालू भी शब्बू की याद के सहारे जीता है। दोनों एक दूसरे के दूर होते हुए भी दिल से जुड़े रहते हैं। समय बीतने के साथ सच भी सामने आने लगता है कि शालू निर्दोष है और उसने केवल शब्बू को बचाने के लिए अपने ऊपर इल्जाम लिया था। होता वही है जो होना चाहिए। अंत में सच्चाई और प्रेम की जीत होती है, गलत फहमियाँ दूर होती है, न्याय मिलता है। शालू शब्बू का प्यार हर परीक्षा में सफल साबित होता है।
1: हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु वचनबद्ध है। आइए सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का संदेश।
2: नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाने का महत्वपूर्ण अवसर है। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने सुंदर पहाड़, साफ पानी और शुद्ध हवा का अनमोल उपहार दिया है। आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति की रक्षा में अपना योगदान दे। स्वस्थ पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए प्रकृति से प्रेम करें और हिमाचल को हरियाली और स्वच्छता का आदर्श बनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।
3: हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनहित में जारी।
0: बहुत सी कठिनाइयाँ, दुख, दर्द और परीक्षाओं के बाद शालू और शब्बू एक हो जाते हैं और यहाँ फिल्मी ये संदेश भी देती है कि सच्चा प्रेम त्याग, विश्वास और समर्पण से मजबूत बनता है और अंत में सत्य की जीत जो है वो विजय होती है। दोस्तों फिल्म की लोकप्रियता में इसके मधुर गीतों का भी बड़ा योगदान रहा, जिनकी वजह से ये आज भी याद की जाती है। इस फिल्म के बारे में जितनी बातें कहें ना दोस्तों कम है। फिल्म का शानदार संगीत जो है वो इसके गाने क्या करते थे जी, बिल्कुल, और हवा में उड़ता जाए, लाल दुपट्टा मलमल का और सुनी सुनी अखियों में जैसे गीतों ने से मशहूर कर दिया।

और एक बढ़िया बात आपको बताएं कि फिल्म की भारी सफलता को देखते हुए इसका जो है उसी साल सीक्वल भी बनाया गया था कि फिर लहराया लाल दुपट्टा, जो कि रिलीज हुई थी और सीक्वल में लीड एक्टर्स का पुनर्जन्म जो है वो दिखाया गया था।

जी हाँ, फिल्म के बारे में क्या ही कहें, बस अंत में यही कहेंगे कि मोहब्बत अगर सच्ची हो तो हर इम्तिहान पार कर जाती है, दूरियां चाहे कितनी भी हो दिलों को करीब ले आती है। लाल दुपट्टा मलमल का फिल्म, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है दोस्तों, बल्कि प्यार, त्याग और विश्वास की एक अमर दास्तां है। तो आप भी समय निकाल कर इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा। फिलहाल इसी के साथ एक फिल्म से कार्यक्रम में अभी बस इतना ही। फिल्म संगीत लेकर हाजिर हैं आप सभी के लिए, जिसका आगाज़ हम करने जा रहे हैं यशवंत फिल्म के इस खूबसूरत से नगमे के साथ।

दिल की आवाज़ भी सुन कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ। जी हाँ, आपके दिल की आवाज़ गीतों के माध्यम से आपके अपनों तक हम ज़रूर पहुंचाएंगे। अलका याग्निक, उदित नारायण की आवाज़ों में गीत आप सुन रहे हैं राजा फिल्म से। आइए, कार्यक्रम का अगला गीत भी हम आपके लिए पेश करने जा रहे हैं। आइए सुनते हैं हम और आप मिलकर इस गीत को। उदित नारायण, शब्बीर कुमार और सारिका कपूर की आवाज़ों में आन फिल्म का ये नगमा।

दिल की आवाज़ भी सुन रहे हैं आप इस वक्त आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ, और आपकी दिल की आवाज़ हम आपके अपनों तक पहुंचा रहे हैं इन गीतों के माध्यम से। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का ये गीत मनप्रीत कौर और साथियों की आवाज़ों में, लीजिए सुनिए।

अनुराधा पौडवाल, मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ों में आई मिलन की रात फिल्म के गीत के साथ दिल की आवाज़ भी सुन कार्यक्रम में बस इतना ही। सुन रहे हैं आप 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी FM शिमला। फिल्म संगीत आपने काफ़ी सुना, चलिए अब रुख करते हैं गज़लों की ओर और सुनवाते हैं कुछ खूबसूरत गज़लें। गज़लों से सजा गुलदस्ता लेकर हाजिर हैं आपके साथ, आप सभी के लिए। तो आइए आगाज़ करने जा रहे हैं गुलाम अली की आवाज़ में कार्यक्रम की पहली गज़ल के साथ।

गुलाम अली की आवाज़ में आप सुन रहे हैं गज़ल। आइए अगली गज़ल पेश करने जा रहे हैं आप सभी के लिए पंकज उदास की आवाज़ में। बने रहिए FM शिमला के साथ, सुनते रहिए।

चंदन दास की आवाज में गजलों में बस इतना ही। सुन रहे हैं आप 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला। अब चलते चलते आप पहुंचे उस पड़ाव पर जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ सदाबहार नगमे, गीत कुछ ऐसे जो हर बार सुनो तो मन को भा जाए, दिल को एक सुकून दे के जाए। तो आइए कार्यक्रम का आगाज हम करने जा रहे हैं शालीमार फिल्म के इस गीत के साथ। किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में आइए सुनते हैं।

लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों को भी आपने सुना रोटी कपड़ा और मकान। सुन रहे हैं आप सदाबहार नगमे 103.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ। संगीत फिल्म का गीत पेश करने जा रहे हैं अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाज़ों में, आइए सुनते हैं।

चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अगला गीत पेश करते हैं आप सभी के लिए द ग्रेट गैम्बलर फिल्म से अमिताभ बच्चन, आशा भोसले और शरद कुमार की आवाजों में। गीत के बोल आनंद बख्शी के और संगीत राहुल देव वर्मन का। सुन रहे हैं आप 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी FM शिमला।

0: Amore mio, dove sei tu? Ti sto cercando, dai soro mio.
1: Amore mio, dove sei tu? Ehi, क्या गा रही है?
2: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
1: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
2: गा के

0: रात्रि के 11 बजने को हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। बने रहिए एफएम शिमला के साथ, सुनते रहिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में आज 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं जैसे कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्रों को तेजी से पूरा करने को कहा। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपये लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत SIR कराने का अधिकार रखता है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष वैष्णवी।
1: भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस निर्णय को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया।
3: सर्वोच्च न्यायालय ने SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत स्वीकार कर दिया है। राजनीतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है।
1: असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का तीसरा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है। राष्ट्रपति ने ईद उज जुहा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि यह पर्व समर्पण, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी और लू के मद्देनजर जरूरतमंद, वरिष्ठजन और बच्चों का विशेष ध्यान रखने की अपील

इसी खूबसूरत नगमे के साथ सदाबहार नगमे कार्यक्रम में बस इतना ही, और आज के सुहाने से सफर में भी बस इतना ही। चलते चलते बस आपसे यही कहेंगे दोस्तों, खुश रहा कीजिए, अपना ख्याल रखिए, और आपसे फिर जल्द ही मुलाकात होगी एक नए सफर में, सिर्फ और सिर्फ 103.7 MHz आकाशवाणी FM।

की है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: World Isha earned 43 points from a possible 50 in the final to surpass the previous record of 42 points held by South Korea's Kim Ye-ji and claimed the gold medal. And that is the end of this news bulletin.
1: एक सौ 103.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी एफएम शिमला से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। अब हमारी आज की सभा यहीं समाप्त होती है। कल प्रातः 5:55 पर आपसे फिर भेंट होगी। दीजिए अनुमति। जय हिंद।